श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, जिसमें नॉनस्टॉप भजनों का आप आनंद ले रहे हैं। सुबह के 5:48 हो चुके हैं और अब इस कार्यक्रम का ये आखिरी भजन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 मई 2026। सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब आपको बता दें आज आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात ज्योति आनंद, इसमें आपके साथ होंगी। सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर रेनू भट्ट के साथ। सुबह 8:05 पर आप सुनेंगे, क्षमा कीजिए, सुबह 8 आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर ज्योति आनंद, इसमें आपके साथ होंगे। सुबह 9 का समय रहेगा दिल के तराने गाने नए पुराने, जिसमें आपके साथ होंगी रेनू भट्ट। इस कार्यक्रम में आप नॉनस्टॉप लेटेस्ट बॉलीवुड नंबर्स सुन सकते हैं। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आवर, निहारिका भुवानिया इसमें आपके साथ होंगी। सुबह 11:05 पर बॉलीवुड ट्रेल्स में आप सुनेंगे बॉलीवुड अपडेट्स और साथ ही गीत बबीता रावत इसमें आपके साथ होंगे। दोपहर 12:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक प्लेट कूल का समय रहेगा, निहारिका आपके साथ होंगी। दोपहर 1:05 पर आप सुन पाएंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग्स, जिसमें आप अपने गीतों की फरमाइश भेज सकते हैं। इस कार्यक्रम में बबीता रावत आपके साथ रहेंगी। दोपहर 2 का समय रहेगा कार्यक्रम आशियाना का, इसमें मुनीश जौली आपके साथ होंगे। दोपहर 3 आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर श्वेता शर्मा के साथ। इस कार्यक्रम का आज विषय रहेगा अस्थमा एलर्जी और इन्फेक्शंस। शाम 4 आप सुनेंगे मनीष जौली के साथ कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम हमारे सैनिक भाइयों के लिए होता है। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे श्वेता शर्मा के साथ सिटी लाइट्स, जिसमें आप शहर की सभी जानकारी और गीतों का आनंद ले सकते हैं। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे अमरीन खान के साथ मैसेज मसाला मिक्स, और शाम 7:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक हिट्स एंड मेमोरीज कार्यक्रम का आप आनंद लेंगे रघु के साथ। रात्रि 8 आप सुनेंगे कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती अमरीन खान के साथ,

इसमें आप नॉन स्टॉप डांस हिट सुन सकते हैं। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी याद आती रही रेशमा फारूकी के साथ। रात्रि 10:05 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक ऑल दैट जैज रघु के साथ, और रात्रि 11:05 पर गजलों का कार्यक्रम रहेगा रेशमा फारूकी के साथ, जिसका नाम है रंगे महफिल। तो ये थी आज आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सुबह के 6 बजने वाले हैं, आपसे कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ तत्व, चिकित्सा उत्पाद, विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
1: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्वार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने नौवीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से 40 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए देशव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत करेंगे। ये पहल नए चार श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछले

सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद के शपथ लेने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरल, माहे, दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर। अब वक्त है स्पॉन्सर प्रोग्राम सत्य वचन का।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय SR मीडिया Academy।
3: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव, आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि जब मुश्किलें हम पर आन पड़ती हैं और हमारा मन घबराने लगता है और हमको कुछ नहीं सूझता, तब एक मधुर आवाज धीरे से हमें सुनाई देती है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मुझ पर भरोसा रख। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर हम मनुष्यों से बे इंतहा मोहब्बत करता है और इसीलिए वो हमारी चिंता करता है और हमेशा उसको रहती है हमारी परवाह और हमारी प्रार्थनाओं का भी वो जवाब देता है।

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि विश्वास करने पर ही हम ईश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में होते देख सकते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर होगा तो तुम ईश्वर के एक से बढ़कर एक आश्चर्य कर्म को, जो असंभव सा प्रतीत होता है, अपनी नजरों से संभव होता देख पाओगे।

जी लेते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों से निराशा के बादलों को हटाकर खुशियों की बारिश कर देते हैं। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला और करुणामय है।

दोस्तों, परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह में आगे बढ़ते रहिए और प्रभु की आशीषों से अपने जीवनों को भरते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको बता देते हैं हमारा वो नंबर, जिन पर आप हमें मैसेज या फोन करके प्रभु के प्रेम के बारे में और जान सकते हैं। आप हमें 9693644242, जी हाँ 9693644242, और हमारा दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए 7678438471, जी हाँ 7678438471। आप इन नंबरों पर फोन या मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना।

तरह ही कल यानी शुक्रवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

Hey listeners, good morning and welcome. आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात ज्योति के साथ. समय मिला लीजिए 6:26. आपका भी समय अच्छा चल रहा है, मेरा भी अच्छा चल रहा है क्योंकि अभी इस मोमेंट पे हम मिल रहे हैं और वेल छल्ला की लग रहा है. तुसी असी सारे लोग की ना हम कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं. एवरी टाइम एवरी मोमेंट लाइफ में ना सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है. ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इससे कंपेरिजन, उससे कंपेरिजन. तो बस उससे थोड़ा सा ब्रेक लेना है और अपनी जिंदगी को हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ाना है. आज सुप्रभात में ज्योति आपके साथ है और आपके मैसेजेस ऑलरेडी आना शुरू भी हो चुके हैं. आप हमारे साथ हर जगह से जुड़े हुए हैं और लाइफ में हम सब कुछ ना कुछ तो ढूंढते ही हैं. तो बस छोटी छोटी खुशियां हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनके साथ चलकर हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं. एक बात है कि जो थोड़े से खुश नहीं हो सकता ना, वो किसी भी चीज से खुश नहीं हो सकता. तो इसलिए छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे मोमेंट्स में हमें वो खुशियां ढूंढनी है. अगर हम वेट करेंगे कि कोई बड़ी चीज आएगी तो हम खुश होंगे, तो भाई जब वो आएगी ना तब भी खुशी नहीं मिलेगी. आजमा के देख लो. और एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, करिए मसले हल, चल हुन चंगे बनिए, मुकदी एथे गल, चलो हुन चंगे बनिए. तो इसलिए मतलब लेट गो, जाने दो, किसी पे गुस्सा आया जाने दो, किसी की कोई बात बुरी लगी जाने दो. बस छोटी छोटी बातों में यूं ही खुशियां ढूंढते रहें और अपनी जिंदगी को यूं ही आगे बढ़ाते रहें. थर्सडे लवली मॉर्निंग में आज ज्योति आपके साथ है. 7 मई हो चुकी है. अरे साल का मतलब आधा टाइम ऑलमोस्ट गुजर गया है. कहीं पता लगा वक्त का? कुछ भी नहीं पता लगा और लाइफ का कुछ भी पता नहीं लगता. इसलिए बस यूं ही हंसते मुस्कराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ अपनी मंजिल को मत भूलिएगा.

एक बहुत ही फेमस और महान फिलोसोफर ने कहा, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस यू सी इज नॉट फाउंड इन सीकिंग मोर बट इन डेवलपिंग द कैपेसिटी टू एंजॉय लेस। लेस इज मोर। कम में खुश रहना, ये कैपेसिटी बनाना, ये क्षमता उजागर करना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम पीछे भागते रहेंगे कि बहुत चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो हैप्पीनेस मिलेगी, तो देयर इज नो एंड टू इट। उसका कोई अंत नहीं है, इट्स अ लूप। आप क्या कहते हैं इस बारे में? सो लेस इज मोर, व्हाट आई बिलीव। और ऐसा भी है, भी ऐसा।

और अगर कभी कुछ कम पड़ जाए ना, तो यादों की अलमारी से कुछ कुछ निकाल लीजिए, उस अलमारी को खोलिए, आपको बहुत सारी ऐसी यादें मिलेंगी जो आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आएंगी।

कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना जो हम कहते हैं ये मेरी है, इसको कोई नहीं लेगा, और हमें हमारी चीज़ कितनी ज़्यादा प्यारी होती है। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें और बातें हैं और तजुर्बे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी से जुड़े हैं, आपने उन्हें एक्सपेरिमेंट किया है, आपने उनसे एक्सपीरियंस लिया है, आपको एक्सपोजर मिला है। सो वो सारी चीज़ें ना आपकी हैं, उन्हें संभाल कर सहेज कर रखिए। चाहे किसी चीज़ से आपको मन मुताबिक आउटपुट या रिजल्ट्स ना मिले हों, आपके मन की बात ना पूरी हुई हो, मगर उसके बावजूद वो सब आपके हैं। आपकी सक्सेस, आपकी फेलियर, आपके एक्सपीरियंसेस, आपका टाइम, आपके लेसन्स जो आपने सीखे हैं, आपकी खुशियाँ, आपकी उदासियाँ, वो सब आपकी हैं। और उनमें जब आप झांकेंगे ना, तो उनमें से कुछ ना कुछ ऐसा निकल कर आएगा, कहेंगे आप कहेंगे अरे ये मैंने किया और इससे बेहतर मैं कर सकती थी, या फिर ये जो मैंने किया ये मैं उम्मीद ही नहीं कर रही कि ये मैंने किया है, अरे। तो इस तरह के बहुत सारे सरप्राइजेज और इनसाइट्स आपको मिलेंगे अपने बारे में जो आप खुद नहीं जानते होंगे। तो अपनी वो जो भी चीज़ें हैं वो संभाल कर रखिए, चाहे वो कोई ना कोई फेलियर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई ना कोई ऐसी निराशा ही क्यों ना हो जब आपकी उम्मीदें टूटी हों, मगर वो सब आपका है और आपको वो कुछ ना कुछ ऐसा देता है जो कोई और नहीं दे सकता है। एक और सीक्रेट आपको बताने वाली हूँ इस गाने के बाद, बस यूं ही मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए सुप्रभात कार्यक्रम ज्योति के साथ। वो जानना है सीक्रेट लाइफ का, क्योंकि सबके अलग अलग हैं तो जो मैंने अपनाया है वो आपको बताऊंगी।

हमारी मन की डोरी किन किन के साथ बंधी है, डॉली के साथ बंधी है। गुड मॉर्निंग लिखती हैं और पूछती हैं कैसी हैं, कैसी हूँ मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो। और हमारे साथ जुड़े हैं योग करते हुए देहरादून से आलोक पवार और मिनी जुड़े हैं। या ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है कि एक्सरसाइज करो, योग करो, साथ ही साथ FM रेनबो भी सुनो। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं मसूरी टहरी गढ़वाल उत्तराखंड से विनोद सिंह जी जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। और मैं आपको एक सीक्रेट बता रही थी जो सबका अलग अलग हो सकता है, वो ये है कि हम अपने आप को जब भी कोई परेशानी आती है या फिर हम किसी उलझन में होते हैं या किसी बात से परेशान हो जाते हैं, तो कितनी जल्दी अपने आप को हम वापस उसी पोजीशन में लेकर आते हैं, उस सम स्थिति जिसे कहते हैं ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि हाउ फास्ट यू रीसेट योर सेल्फ। आई मीन दिस इज़ द स्किल, रीसेट योर सेल्फ फास्ट। अपने आप को वापस उसी कंडीशन में जल्द से जल्द ले आए जिसमें आप एक हैप्पी मूड में थे, एक शांत मूड में थे, मगर किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आप परेशान हो गए और आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया और उसके बाद आपको लगा कि बस अब कुछ करना मुश्किल है। सो दिस इज़ द सीक्रेट एंड दिस इज़ द मंत्रा एंड दिस इज़ द स्किल आई थिंक जो हम सबको डेवलप करनी चाहिए कि अपने आप को रीसेट कर लें जल्द से जल्द। नहीं तो कितने कितने दिन हम उस चीज़ को सोचते रहते हैं, बोझ की तरह ढोते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। जस्ट लीव इट एंड मूव फॉरवर्ड। सो रीसेट योरसेल्फ फास्ट।

0: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आती तो है कभी कभी, बहुत तेज हिचकी आती है और कंट्रोल नहीं होती है, और उसे हम कहते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है ऐसा मानते हैं, मतलब ऐसा मानने में अच्छा लगता है ना। चलिए, अगर आपको भी हिचकी आ रही है तो आप समझ जाइए आपको कौन याद कर रहा है। कोई ना कोई तो स्पेशल आपके लाइफ में होगा ही, जिसको सोचकर, जिसके बारे में सोचकर आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि लाइफ में ये मुस्कुराहट, ये स्माइल बहुत ज़रूरी है। और एक और बात है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि ज़रूरी नहीं है जिस रास्ते पर सब चल रहे हैं, जो रास्ता दूसरों ने बनाया है वो आपके लिए सही है, वो आपके लिए फिट है। आपका अपना रास्ता भी

हो सकता है आप अपने उस रास्ते को डिस्कवर करेंगे ना, तो आपको उस पर चल कर ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो सरप्राइजेज से भरा हुआ होगा, आपको पता ही नहीं कि उस पर क्या है. सो यू कैन ऑलवेज ऑलवेज डिस्कवर योर ओन पाथ, योर ओन रूट. तो इसीलिए मेक योर ओन रोड, चाहे उस पर कितने भी गड्ढे हों, चाहे उस पर कितनी भी मुश्किलें हों, कितने भी कंकड़ हों, कुछ भी मुश्किलें हों, मगर ये चॉइस हमारे पास हमेशा होती है कि हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं और उस रास्ते पर ना चलें जिस पर सब चल रहे हैं या जो एक बना बनाया रास्ता है. तो इस बात के बहुत सारे गहरे मतलब हैं. हर कोई अपने अपने हिसाब से समझेगा, अपने अपने तजुर्बे से समझेगा कि इस बात का क्या मतलब है. मगर येस, वी कैन ऑलवेज मेक आवर ओन रोड, आवर ओन पाथ, our own route, and I think that is the best part, that is the unique part, जो मुझे लगता है. आपके मैसेजेस हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हैं, मैं आप लोगों का नाम ज़रूर शामिल करूँगी. अनिल शर्मा जी सरिता विहार से जुड़े हैं हमारे साथ और लिखते हैं कि मैं मुश्किलों से, गमों से लड़ना जानता हूँ और उनसे जीतना बखूबी जानता हूँ. आई थिंक दैट इज़ दी कैपेबिलिटी एंड दैट इज़ दी स्किल दैट यू हैव. और लाइफ में कोई भी मुसीबत आ जाए, उसे डील करना, उसे पार पाना हर इंसान को आना चाहिए. और उसके बाद फिर हमें कोई मुश्किल मुश्किल लगेगी नहीं, बल्कि अच्छा लगेगा कि आओ मुश्किल, ताकि हम कुछ नया सीख पाएं. हमारे साथ जुड़े हैं राजकुमार संतानी जी महाराष्ट्र से. गुड मॉर्निंग लिखते हैं, शो बातें सब उन्हें अच्छा लग रहा है. और हमारे साथ और कौन जुड़ा है, नाम नहीं लिखा है. हाँ, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स परेशान कर रहे हैं. तो उनसे अपना वे आउट निकालिए, किस तरह से डील करना है, क्योंकि वो परेशानियां आपकी हैं, वो सिचुएशंस आपके हैं, तो उनको आप ही सॉल्व कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग, हमारे साथ जुड़े हैं गणेश कुमार जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से. गुड मॉर्निंग लिखते हैं, थैंक यू सो मच शो सुनने के लिए. और हमारे साथ जुड़े हैं राधे श्याम जी और कासगंज से लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं गुड हूँ, अच्छा लग रहा है शो. एंड चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. 6:56 हो चुके हैं और 7:05 से आपके साथ रेणु भर जुड़ेंगी लेकर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर. और मैं मिलूंगी आपसे 8 लेकर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सेकेंड आवर. और तब तक बस यूं ही आकाशवाणी रेनबो सुनते रहें और फील गुड करते रहें. और आपसे फिर जुड़ते हैं कार्यक्रम सुप्रभात में. अभी के लिए विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे 8:00.

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी दुर्लभ तत्व चिकित्सा उत्पाद विनियमन सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
1: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों पर आधारित हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा सुरक्षा व्यापार स्वास्थ्य विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार निवेश रक्षा ऊर्जा विकास सहयोग स्वास्थ्य क्षमता निर्माण संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए नए फार्मूले के आधार पर किए जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक शक्ति पार्टी रामविलास से 2 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। इसके साथ ही समाचार

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रेणु भट्ट और लेकर आई हूँ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। ढेर सारी ऐसी बातें जो आपको जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले बेहद खूबसूरत ट्रैक। इस गाने के बाद लौट कर आएंगे तो ढेर सारी बातें करेंगे।

आपको पता है तीखे शब्दों की या तीखे बोलों की प्रॉब्लम क्या है? वैसे तो वो अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है, उनकी खास बात यह है कि अगर वो आप उन्हें किसी को बोल देते हैं तो वो ताउम्र वहीं पर रहते हैं, उस व्यक्ति के दिमाग में रहते हैं, छप जाते हैं, उसके दिल में छप जाते हैं और फिर वो चीजें जो हैं वहां से खराब होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बोलते वक्त बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर निकालना चाहिए, खर्च करना चाहिए, कहाँ पर क्या बोलना है, सही समय पर सही इंसान को सही बात बोलना, ये कॉम्बिनेशन ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जो हो नहीं पाता है। जहाँ पर व्यक्ति इस कॉम्बिनेशन को प्राप्त कर लेता है ना, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत सॉर्ट हो जाती है। आप देखिए कई लोग हैं जिनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन कई लोगों को आप अवॉइड करते होंगे। खैर, और इन बात को हम यहीं पर छोड़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आज के दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने आज के दिन को इतिहास में खास बनाया। 1907 में मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक ट्राम जो है वो आज शुरू हुई थी, और 1976 में अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल को अपने आविष्कार का पेटेंट मिला था, जिसे उन्होंने टेलीफोन यानी कि दूरभाष का नाम दिया था। तो ये तो कुछ ऐसी बातें थी जिसने आज के दिन को इतिहास में खास बनाया था। कई चीज़ें होती इतिहास में जो हम आगे जब बढ़ते हैं पढ़ते हैं तो जानकर हमें बहुत अच्छा लगता है।

0: आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों को चलिए सेलिब्रेट करते हैं और आपको कुछ बताते हैं और कुछ यादें ताजा करते हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों को आपसे साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस विशेष स्मृतियों के सफर की श्रृंखला में, यानी आकाशवाणी 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। श्रोताओं, आपने पिछले अंकों में जाना किस प्रकार से प्रसारण की नींव जो बॉम्बे में पड़ी वो कलकत्ता पहुंची और आगे दक्षिण भारत में ब्रॉडकास्टिंग की नींव कहां से पड़ी? जी हां, मद्रास रेडियो क्लब से। श्रोताओं, रेडियो की गूंज जल्द ही भारत के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगी थी। 31 जुलाई 1924 में सीवी कृष्णमूर्ति चेट्टी द्वारा स्थापित मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब से दक्षिण भारत में प्रसारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत हुई और इंग्लैंड से लाए गए रेडियो उपकरण ने इस पहल को साकार किया। शुरुआत में 40 वोल्ट के ट्रांसमीटर से प्रसारण किया गया, जिसे बाद में 200 वोल्ट के अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर से बदल दिया गया। हर शाम लगभग 2.5 घंटे तक संगीत और वार्ताओं का प्रसारण किया जाता था, जो उस समय के श्रोताओं के लिए एक नया और अनोखा अनुभव था। इसी पहल ने दक्षिण भारत में ब्रॉडकास्टिंग की नींव रखी। हालांकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण 1927 में इस सेवा को बंद करना पड़ा, लेकिन रेडियो का सफर यहाँ थमा नहीं। तो आगे इस रेडियो के सफर ने कहाँ तक अपनी यात्रा जारी रखी और किस प्रकार से ये आगे बढ़ता रहा, जानेंगे आकाशवाणी 90 के अगले अंक में। तब तक मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: और इन्हीं अंकों के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना जरूरी है, कुछ ऐसी यादें जो हो सकता है आपको पता ना हो और आपके लिए जरूरी है। तो बस आपको एक ही काम करना है, बहुत ही छोटा सा काम करना है, हमारे साथ यूं ही बने रहना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में आपके साथ हूं मैं रेणु भट्ट।

संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी वैज्ञानिक और समृद्ध भाषाओं में से एक माना जाता है, एक हम कहेंगे बल्कि कि जिसे देववाणी या फिर सुर भारती भी कहा जाता है। ये भारत की शास्त्रीय भाषा है और भारत की अति प्राचीन वैदिक भाषा के रूप में यदि आज संस्कृत को विश्व की सभी भाषाओं की जननी माना जाता है और भारत की अति प्राचीन धर्म संस्कृति को यदि विश्व भर में बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तो उसमें महान भारतीय संस्कृतज्ञ और विद्वान पंडित डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे के अमूल्य योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज इनकी जयंती है और आज के दिन हम इन्हें याद कर रहे हैं और हम इनकी बात करें तो इन्होंने अध्यापन किया और शोध कार्य किया और जैसा आपको बताया कि विश्व भर में संस्कृत के को प्रसिद्ध किया। 1906 में उन्होंने संस्कृत में अलंकार साहित्य के इतिहास पर अपना शोध कार्य पूर्ण किया और इस उपलब्धि के लिए डॉक्टर काणे को वीएन मॉडलिंग स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस समय तक डॉक्टर काणे समूचे महाराष्ट्र में संस्कृत विद्वान के रूप में प्रसिद्धि पा चुके थे। ज्ञान के वो अद्भुत भंडार थे। उनका हिंदी, संस्कृत भाषा के अतिरिक्त जर्मनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू, फारसी और कई भाषाओं पर समान अधिकार था। वे हिंदू धर्म और

संस्कृति के अटूट रक्षक थे और उन्होंने मानवता और सत्यता के आधार पर कट्टर ब्राह्मण होते हुए भी हरिजनों के उद्धार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। एक ओर जहां वे भारतीय भाषा धर्म संस्कृति के जीवंत कोष थे, वहीं दूसरी ओर अनेक विषयों पर अपनी वाक्पटुता से वो ऐसा वातावरण बना देते थे कि सब व्यक्ति सब कुछ भूलकर बस उन्हीं को देखता और सुनता रहता था। आज इनकी जयंती और हमने ये आपको सभी को ये भी बता दें कि इन्हें भारत रत्न की से भी सम्मानित किया गया है और आज इनकी जयंती वाले दिन हम इन्हें नमन करते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हुए हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

भारत रत्न सम्मान से सम्मानित डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे की बात की थी हमने इस गीत से पहले, जिनका जन्म 7 मई 1880 को रत्नागिरी जिले महाराष्ट्र में हुआ था। उनके कुछ मुख्य रचनाएं आपके साथ साझा करें, धर्मशास्त्र का इतिहास, संस्कृत काव्य शास्त्र का इतिहास, भारतीय रीति रिवाज और कई ग्रंथ उन्होंने लिखे। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया, अंतरजातीय और विधवा विवाह को समर्थन दिया। धर्मशास्त्र का इतिहास जो उन्होंने लिखा, 5 भागों में प्रकाशित बड़े आकार के 6500 पृष्ठों का भारतीय धर्मशास्त्र का विश्वकोश है। ये ग्रंथ इस बात का प्रमाण है कि डॉ. काणे ने अथक लगन और परिश्रम से इस ग्रंथ का निर्माण किया। इन्हें हम नमन करते हैं। और एक और नाम हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है, वह है अल्लूरी सीताराम राजू। भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले वीर क्रांतिकारी शहीदों में से एक। उन्हें औपचारिक शिक्षा बहुत कम मिल पाई थी। अपने एक संबंधी के संपर्क पर आने से वो आध्यात्म की ओर आकृष्ट हुए। 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने वो साधु बन गए। सन 1920 में अल्लूरी सीताराम पर महात्मा गांधी के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने आदिवासियों को मद्यपान छोड़ने और अपने जितने भी विवाद हैं वो पंचायतों में हल करने की सलाह दी। किंतु जब एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का गांधी जी का स्वप्न साकार नहीं हुआ तो सीताराम राजू ने अपने अनुयायी आदिवासियों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के प्रयत्न आरंभ कर दिए। सीताराम राजू ने लोगों के मन से अंग्रेज शासन के डर को निकाल फेंका और उन्हें असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हम नमन करते हैं और हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़े और आप सभी के साथ हम साझा करना चाहेंगे बहुत सारी ऐसी बातें जो आप सभी के लिए जरूरी है। बस इसके लिए आपको एक काम करना है, आपको यूं ही हमारे साथ बने रहना है।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: मंगल भवन मंगलहारी
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉ.

कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

वेलकम बैक, आप सुन रहे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर रेणु भट्ट के साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर। और आप सभी को बता दें कि आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज है सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस, जो भारत में हर साल 7 मई को मनाया जाता है। सीमा सड़क संगठन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण और उसकी व्यवस्था का कार्य करता है। और हम आप सभी को बता दें कि देश का प्रतिष्ठित, बहुमुखी, पारदर्शी, ख्याति प्राप्त और आधुनिक निर्माण संगठन है। इसकी स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 7 मई सन 1960 को की थी, और उस समय आज़ादी के बाद लंबी सीमा की सुरक्षा एवं देश के सुदूरवर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना की जो निर्माण करना था, एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। इसके लिए कार्यकुशल और समर्पित कार्यबल के रूप में सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई। इसके गठन से अब तक ये संगठन सीमा क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण और इसके रखरखाव का कार्य करता है, ताकि सेना की रणनीतिक जरूरतें पूरी हों। समर्पित, प्रतिबद्ध और किफायती से बुनियादी ढांचे का विकास करते हुए सशस्त्र बलों को उनकी सामरिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है, और आधुनिक और अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करता है, उसके अनुरूप ढालता है और विकास में नेतृत्व हासिल करता है। सूचना प्रौद्योगिकी के आधिकारिक प्रयोग द्वारा सही समय पर सटीक और प्रभावी फैसला लेने का वातावरण भी तैयार करता है। और इसके साथ साथ एक और बहुत ही खास दिन है आज। आज है विश्व एथलेटिक दिवस। क्यों मनाया जाता है? इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये स्कूल और कॉलेजों में मनाया जाता है। इसका ज्यादातर जो इसकी गतिविधियों का आयोजन होता है स्कूल और कॉलेज में होता है। क्यों? क्योंकि इस दिन युवाओं में इस बात की जागरूकता लाई जाती है कि खेलों का महत्व बहुत ज्यादा है हम सभी के जीवन में, और ना सिर्फ युवाओं को बल्कि सभी लोगों को बताया जाता है कि कितना जरूरी है हमारे जीवन में खेलों को, फिटनेस को प्रमोट करना और इन सभी के बारे में जागरूकता फैलाना और हमें शिक्षित करने के लिए आज का दिन अस्तित्व में आया। और समूचे विश्व में स्कूलों में एथलेटिक्स को नंबर 1 खेल के रूप में स्थापित करना भी इसका उद्देश्य है, इसलिए ये दिन अस्तित्व में आया। तो आप जरूर इन बातों को अपने आसपास के लोगों को स्प्रेड करें, उन्हें बताएं, और इस बात का ध्यान रखें कि फिटनेस सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए नहीं है, फिटनेस हम सभी के लिए। हम सभी को फिट होना बहुत जरूरी है, फिजिकली भी और मेंटली भी। जितना जरूरी है शारीरिक तौर पर फिट होना, उतना ही जरूरी है मानसिक तौर पर भी फिट होना। तो ये ना समझे कि फिट होना सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है या फिर हमारे जवानों के लिए है या फिर पुलिस के लिए, नहीं, हम सभी को फिट होना है। और उसके लिए आपको कई चीजें हैं जिसका त्याग आपको करना होगा, और इन त्यागों को ना हम त्याग नहीं पाते, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है सेक्रीफाइस करना। किस तरह से आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं और खुद को भी फिट बना सकते हैं और अपने आसपास के सभी लोगों को फिट बनाते हैं, ये देखने वाली बात है। ये बातें आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी इन दोनों दिवस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन, और अभी आप सेलिब्रेट करें रेखा भारद्वाज की आवाज में बेहद खूबसूरत ट्रैक आप सभी के लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो हमें अपने आप को फिट बनाना है, अपने पूरे समाज को फिट बनाना है, अपनी पूरी पीढ़ी को, जनरेशन को फिट बनाना है, ताकि आगे आने वाले जितने, और अगर आप लंबी कानूनी प्रक्रिया के बिना उन्हें निपटाने का आसान तरीका ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। दिल्ली में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने वाली है, जिसमें वाहन चालकों को चालानों का निपटारा करने का मौका मिलने वाला है। और हम आपको बता दें कि ये कहां कहां पर लगेगी। दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह आयोजित की जाएगी। इसमें कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउस एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और 30,000 कोर्ट शामिल है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये लगने वाली है। और हम आप सभी को बता दें कि इसके लिए पहले पंजीकरण करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और पंजीकरण 4 मई से शुरू हो चुके हैं, जो आज 7 मई तक चलने वाले हैं। आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और वहां पर जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं। और ये भी बता दें आपको कि केवल 50,000 चालानों के लिए ही टोकन जारी किए जाएंगे, तो स्लॉट बुक करें, अपने चालान को आप डाउनलोड का प्रिंट अपने पास रखें, और टोकन वाला अमाउंट जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी आपको अपने साथ रखना होगा। तो ये कुछ बातें आप जरूर ध्यान में रखें। और हम ये भी बता दें कि इग्नू ने जून टर्म एंड परीक्षा के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। जो भी छात्र ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रमों के असाइनमेंट जो थे जमा करने वाले थे, वो आप 31 मई तक जमा कर सकते हैं। आप ज्यादा जानकारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं। और मैं रेणु भाई टीसी के साथ ले लेती हूँ आप सभी से अनुमति। आप बने रहें आकाश।

वाणी के एफएम रेनबो चैनल पर अब से कुछ ही देर में यानी कि ठीक 8 बजे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे घंटे में ज्योति आएंगे आपसे मिलने, और उसके एक घंटे बाद यानी कि दिल के तुराने काने नए पुराने लेकर मैं ही आऊंगी आपसे मिलने। 9 बजे का समय रहेगा और 10 बजे का समय है मैचलेस म्यूजिक आर का, और आपके साथ रहने वाली है निहारिका। तो आप जरूर इन सभी कार्यक्रमों में आप हमारे साथ बने रहे। अभी फिलहाल मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से इजाजत, कुछ देर बाद फिर मिलूंगी आपसे।

हे लिसनर्स, वेलकम बैक आकाशवाणी रेनबो के साथ। अब है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में ज्योति आपके साथ। 8:05 बोलने वाली थी पर बोलते बोलते 6 हो गए और फॉर एवर एंड एवर आप हमारे दिल में हैं, हम आपके दिल में हैं। तभी इसी मोमेंट पे हम सब जुड़े हुए हैं 102.6 की मैजिकल फ्रीक्वेंसी के साथ और आप हमें सुन रहे हैं पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में, कहीं पर भी, कैसे भी। ये जो हाथ में हमारे मोबाइल है ना, बड़े काम की चीज़ है यार। और इसमें जब हमारा वो ऐप होता है ना, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, उसके माध्यम से आप हमारे साथ कभी भी कैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। बस यूं ही सुनते रहिए और बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन आज के गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपका कर रही है इंतजार।

फिलहाल तो दिल्ली NCR का मौसम ऐसा हो रखा है कि जिससे हमें प्यार हो जाए, और बीच बीच में जो ये बारिशें आ जाती हैं और बादल आ जाते हैं, ये बड़ा सुकून सा दे जाती हैं। और हालांकि हम जानते हैं आगे आगे गर्मी प्रचंड रूप धारण कर लेगी, मगर उससे पहले बीच बीच में जो ये मौसम अच्छा हो रहा है ना, इसकी मेमोरीज जो हमारे दिमाग में रह जाएंगी ना, और ये होप रह जाएगी यार फिर से अच्छा हो जाए, मतलब दो दिन के बाद फिर से अच्छा हो जाए, तो मतलब वो दिन काटना, दिन गुजारना अच्छा हो जाता है, और कहीं बाहर जाना हो तो भी आसानी हो जाती है। आज 7 मई 2026 को अगर दिल्ली के मौसम की बात करें तो मौसम साफ रहेगा, थोड़ा सा धूप वाला है, और दिन चढ़ने के साथ साथ गर्मी बढ़ेगी। अभी फिलहाल टेम्परेचर की अगर बात करूं तो 27 डिग्री और दोपहर तक 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तेज धूप निकलेगी थोड़ी देर के बाद, अभी तो बहुत अच्छी है, और हवा में हल्की हल्की सी ठंडक है जब मैं बाहर होकर आई हूं, मगर दोपहर बाद आसमान में आंशिक रूप से बादल भी छा सकते हैं, कहीं कहीं कहीं कहीं तेज धूप, कहीं कहीं बादल, कहीं कहीं बौछारें, और पिछले दिनों तो कहीं कहीं ओले भी पड़ गए। मई चल रहा है भाई, मई की बात हो रही है, और हवा में जो हवा की गति है वो 7 से 12 किलोमीटर घंटा है, और इसमें जो ह्यूमिडिटी है वो भी तो दर्ज हो ही रही है, वो भी फील हो रही है, 51% के आसपास दर्ज की गई है, और हवा थोड़ी सी खराब है, पुअर श्रेणी में कह सकते हैं, जैसे खराब श्रेणी में AQI 153 दर्ज किया गया है। और अगर आने वाले दिनों की बात करूं, कल 8 मई को 36 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचेगा, और शनिवार और रविवार को गर्मी और बढ़ेगी, पारा और बढ़ेगा, मगर बीच बीच में बारिश का अलर्ट भी है। सो ये दोनों चीजें चलती रहेंगी, साथ साथ एंजॉय करते रहते हैं इस फ्यूजन को। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ज्योति के साथ 8:13।

वेलकम बैक लिसनर्स, आकाशवाणी रेनबो के साथ आप जुड़े हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। अब आपको एक बड़ी काम की खबर बताती हूँ। आज है 7 मई और 9 मई को लगेगी नेशनल लोक अदालत। आपसी सहमति से कितनी सारी चीज़ें सुलझ सकती हैं ना, बस ये उसी के लिए है। और जब आप लोक अदालत में जाते हैं, नेशनल लोक अदालत में, तो आपसी सहमति से आप बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जिनका निपटारा किया जाता है। तो 9 मई 2026 को पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने वाला है और ये सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक सभी जिला न्यायालय परिसर में संचालित होगी। और वर्चुअल अदालतों के माध्यम से भी जो बहुत लंबे टाइम से यातायात के चालान हैं उनका भी निपटारा किया जाएगा, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये जितने भी आपके कोई भी डिस्प्यूट्स हैं या फिर आपके कोई पेंडिंग चालान्स हैं, वो सभी जो हैं यहाँ पर आप उनको सॉर्ट कर सकते हैं। कोई भी आपकी और डिस्प्यूट्स हैं किसी भी तरह के, वो भी यहाँ पे सॉर्ट किए जाते हैं। सो इससे आपका टाइम बचता है, पैसे बचते हैं और आपसी सहमति से आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। वैसे तो इस नौबत ही ना आए, इसकी पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि इसकी नौबत ही ना आए, मगर इतनी भागा दौड़ी भरी ज़िंदगी है, इतने हमारे माइंड जो है ना एकदम गर्म रहते हैं, टेम्पर हम लूज़ कर देते हैं टेम्परेचर की तरह, जैसे मौसम अपनी मनमानी करता है वैसे हमारा दिमाग भी करता है। बट वी नीड टू कूल इट डाउन और अपने आप को काम रखने की ज़रूरत है। तो इसीलिए राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई को लगने वाली है। तो आपके भी अगर कोई पेंडिंग चालान्स हैं, कोई डिस्प्यूट्स हैं, वो आप जाकर यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और बताऊंगी बड़ी काम की खबर कि अगर आपने प्रेशन हॉर्न बजाया तो आपके ऊपर सीधा चालान कटेगा, वो भी बड़ा तगड़े वाला। तो उसके बारे में बात करेंगे इस सॉन्ग के बाद। बस सुनते रहे यूं ही गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर ज्योति के साथ।

जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं और पीछे से कोई भी बस या कोई ऐसी बड़ी गाड़ी अचानक से इतना तेज हॉर्न बजाकर हमारा ध्यान भंग कर देती है या हमें डिस्टर्ब कर देती है, एक्चुअली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे या फिर जो टू व्हीलर चला रहे होते हैं, उनका तो बैलेंस ज़रूर बिगड़ता है। ये प्रेशर हॉर्न अगर आपने अब बजाया तो आपका सीधा 10,000 का चालान कटेगा। प्रेशर हॉर्न बजाकर धौंस जमाने वाले जितने भी बस चालक हैं, अब बस उनकी ना मतलब खैर नहीं है। प्रशासन ने नॉइस पोल्यूशन फैलाने वाली इन बसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और अब तक 254 बसों के चालान काट दिए जा चुके हैं। और मगर इतनी करने के बाद भी ना, मतलब प्रशासन की तरफ इतनी सख्ती के बावजूद, कई सारी स्कूल बसेस, जी हाँ, प्राइवेट बसेस की तो बात छोड़िए, स्कूल बसेस के भी ड्राइवर्स भी अभी भी ऐसा करते हैं। और सड़कों पर या तो ओवर स्पीडिंग हो रही होती है या फिर प्रेशर हॉर्न के साथ जो है वो आसपास वाले लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर अब आपने ऐसा किया, इन रूल्स को अगर आपने तोड़ा, तो आपको फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के जो हादसे, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हादसे भी करवा देती हैं। काफ़ी सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि डिसबैलेंस हो जाता है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो वाहन है उसके हॉर्न की जो ध्वनि है वो 40-45 डेसिबल के बीच ही होनी चाहिए। और अगर किसी भी बस में मल्टी टोन या प्रेशर हॉर्न मिलता है तो उसे केंद्रीय मोटर वाहन नियम 119 के तहत सीधे जुर्माना देना होगा 10,000 का, और बस को सीज भी किया जा सकता है। और अगर आपने बार बार इस चीज़ का उल्लंघन किया तो फिर जो आपका लाइसेंस है और परमिट है उसको रद्द करने की तैयारी भी हो सकती है। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, और प्राइवेट बसेस को भी रखना चाहिए और स्कूल बसेस को खासकर रखना चाहिए, उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और आप सड़क पे ओवर स्पीडिंग भी ना करें और साथ ही साथ ये प्रेशर हॉर्न ना बजाएं।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर विद ज्योति. और बहुत सारे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं या कुछ की होने वाली हैं, और ऐसे में आप घूमने जाएंगे ज़रूर. तो जब भी अपनी फैमिली के साथ जाएं तो सबकी ज़िम्मेदारी बनती है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं. हालांकि आजकल तो जो बच्चे हैं ना वो ज़्यादा स्मार्ट हैं और ज़्यादा अलर्ट हैं. वो बड़ों को बताते हैं कि हमें डूज एंड डोंट्स क्या हैं, हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है. तो घूमने तो आप जाएंगे ज़रूर और अपनी बुकिंग्स भी टाइम रहते करवा लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेन्स हो या बाय फ्लाइट आप जाएं, इतनी बुकिंग्स आएंगी कि आपको पहले से ही प्री एडवांस आपको करना है बुक. इसके अलावा अगर आप किसी वाटर स्पोर्ट में जाते हैं, पानी वाली जगह जाते हैं, सो किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले मेक श्योर कि आपकी लाइफ जैकेट जो है वो आप ज़रूर पहने और उसके लॉक्स आप ज़रूर चेक करें. इसके अलावा ये तो हो गई घूमने जाने की बात. अगर आप कहीं जा रहे हैं और अगर आप रोड पर भी चल रहे हैं, आम जनता की बात कर रही हूँ, तो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं जहाँ पर जो सड़क पर जानवर होते हैं ना, उनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं. जैसे आगे जानवर है और एक पर्सन ने अपनी व्हीकल को ब्रेक लगाया, उसके जो पीछे व्हीकल था उसने देखा नहीं और उसने टक्कर मार दी. तो ऐसे में कभी कभी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो जाते हैं, लाइफ का नुकसान हो जाता है. सो सड़क पर भी अपने आप को काम रखें और अलर्ट होकर, पूरे अवेयर होकर अपने वाहन को चलाएं, क्योंकि इन जानवरों का हम मतलब कहां से कब कौन आ जाएगा उसका कुछ नहीं कर सकते हैं. हाँ, प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा सकते हैं, तो सभी को अपनी भागीदारी इसमें निभानी है. तो कहीं भी जा रहे हैं आप, घूमने जा रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है. साथ ही साथ जो सड़क पर चलते हैं उनके लिए एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट हॉन्क अननेसेसरी. मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, हॉन्किंग इतनी ज़रूरी नहीं है, तो अननेसेसरी ना करें. साथ की जो पैसेंजर्स हैं उन्हें दिक्कत होती है. और एक और बात, स्पिट

ना करें, क्योंकि जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से आप या तो कुछ भी लिक्विड आप थ्रो कर रहे हैं या स्पिट कर रहे हैं, तो अगेन आपके लेफ्ट राइट चलने वालों को दिक्कत हो सकती है, और कभी कभी आप भी उस पोजीशन पर, यानी कि आप भी उस लेफ्ट राइट पोजीशन पर हो सकते हैं। सही बोला ना मैंने? तो इसीलिए वही काम करें जो खुद के लिए हम चाहते हैं, और इसी तरह से तो बदलाव आएगा। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा इस खूबसूरत से गाने के बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि ईवी स्टेशंस, चार्जिंग स्टेशंस काफ़ी सारी जगहों पर चिन्हित कर जो है वो बनाए जाएंगे, ताकि आप ईवी व्हीकल अगर आपका है तो आप सड़क पर निकले तो उसको चार्ज करने की टेंशन आपको ना हो। वो जानना है तो बने रहिए मेरे साथ 8:40 बाय द स्टूडियो क्लॉक। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में, ज्योति आपके साथ।

अपनी सिटी को ग्रीन और सस्टेनेबल सिटी के रूप में अगर आप विकसित करना चाहते हैं और अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, प्रदूषण कम करना चाहते हैं तो ईवी व्हीकल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी सारे लोग कर भी रहे हैं मगर अक्सर घरों पर चार्ज करते हैं। तो इसीलिए प्रशासन ने, प्राधिकरण ने, नोएडा प्राधिकरण ने एक इनिशिएटिव लिया है और अब शहर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। तो पहले चरण के तहत 81 जगहों पर 81 स्थानों को चिन्हित किया गया है और सड़क के किनारे आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो मिलेंगे और इसके लिए पूरा सर्वे पूरा हो चुका है और जल्द ही में आगे कार्रवाई की जाएगी। तो इससे ऑब्वियसली जो ईवी व्हीकल्स हैं उनके इस्तेमाल में, उनकी खरीद में जो है वो बढ़ोतरी होगी, प्रोत्साहन मिलेगा, प्रदूषण में भी कमी आएगी। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छा कदम है इस दिशा में और आपकी सिटी जो है वो ज़्यादा ग्रीन और पोल्यूशन फ्री बनेगी।

जैसे नोएडा प्राधिकरण ने पोल्यूशन को कम करने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशंस को लगाने की पहल की है, उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं, वैसे ही कुछ तारीफ तो दिल्ली सरकार की भी करनी पड़ेगी। और दिल्ली की सीएम ने बुधवार को एक नया इनिशिएटिव लिया है। दिल्ली में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से निपटने के लिए बुधवार को एक नई पहल हुई है, जिसमें 13 हीट वेव रिस्पॉन्स वैन को हरी झंडी दिखाई गई है। और इस योजना में क्या होगा कि 13 जिलों के लिए 13 वैन रवाना किए गए हैं, और ये हीट वेव से जो मतलब आम जनता लड़ती है ना, मतलब परेशान होती है, उस आम जनता की सहायता करेगी। तो इसमें क्या क्या होगा, एक वैन को एक जिले का जिम्मा सौंपा गया है, और इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, इसमें वाटर कूलर होगा, इसमें प्राथमिक चिकित्सा के सारे जो है वो जरूरी चीजें होंगी, ORS का घोल आपको मिलेगा, इसमें कैप्स मिलेंगे, छोटे हैंड टॉवल्स मिल सकते हैं जिनको आप सर पर रख सकते हैं, और अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि बीमार है तो उसको फर्स्ट एड दिया जा सकेगा और उसे उसके बाद अस्पताल लेके जाया जा सकेगा। तो 13 वैन 13 जिलों के लिए रवाना की गई हैं, ये पहल की गई है, क्योंकि ऑब्वियसली आने वाले टाइम में जो है वो गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा, लू बढ़ेगी, तो दिक्कत तो होगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज की भी कमी होती है, सुविधाओं की भी कमी होती है, तो बस ये एक और पहल है, तो इसकी तारीफ तो हमें करनी ही होगी, हमारे दिल को ये बात छू गई है। आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR 852 बाय द स्टूडियो क्लॉक, और इस गाने के बाद आपको बताती हूँ पूरे दिन में आप कौन कौन से शोज सुन पाएंगे।

8:57 बाय द स्टूडियो क्लॉक और बस मेरे जाने का समय नजदीक 9 बजे आपके साथ होंगी रेणु भट्ट लेकर दिल के तराने गाने नए पुराने 10:05 से निहारिका आपके साथ होंगी लेकर मैचलेस म्यूजिक आवर 11:05 से बबीता आपके साथ जुड़ेंगी लेकर बॉलीवुड ट्रेल्स और 12:05 से फिर से निहारिका आपके साथ होंगी लेकर प्ले इट कूल। इसके अलावा भी कार्यक्रम बहुत खास है आज के दिन में 1:05 से बबीता आपके साथ मेरा वाला सॉन्ग के साथ और 2 बजे मुनीश चौली आपके साथ होंगे लेकर आशियाना जिसमें आज का जो विषय है वो है आकाशवाणी 90 साल बेमिसाल और अतिथि हैं शुभ्रा मजुमदार। 3 बजे श्वेता के साथ आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर और आज का जो टॉपिक है वो है अस्थमा एलर्जी एंड इन्फेक्शंस क्योंकि आजकल मौसम ऐसा चल रहा है तो बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं और एक्सपर्ट इसमें रहेंगे डॉक्टर एस के छाबरा जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली से। और 4 बजे मुनीश चौली फिर आपके साथ जुड़ेंगे लेकर खास कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स जिसमें आज के खास गेस्ट हैं श्री एस के यादव जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी से। और 5:05 से श्वेता शर्मा आपके साथ हाजिर हो जाएंगी लेकर सिटी की सारी हलचल विद सिटी लाइट्स। फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ विदा और मिलूंगी आपसे फिर इन्हीं एयरवेज पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एंजॉइंग आकाशवाणी रेनबो।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं दिल के तराने गाने नए पुराने रेणु भट्ट के साथ। I say,

ऑलराइट, और अब हम आपको दे देते हैं ट्रैफिक अपडेट। अगर आप रंगपुरी में हैं तो आपको थोड़ा ट्रैफिक मिल रहा है, 13 मिनट का डिले है। मेहरौली बदरपुर रोड पर भी आपको दिए गए 11 मिनट का डिले मिल रहा होगा। करियप्पा मार्ग पर भी आपको थोड़ा ट्रैफिक मिल रहा होगा, और अगर आप हैं सरदार पटेल मार्ग पर को थोड़ा हल्का फुल्का आपको ट्रैफिक मिल रहा है। द्वारका फ्लाईओवर पर हैं तो भी आपको 13 मिनट का डिले है, और विकास मार्ग पर 14 मिनट का डिले आपको इस समय पर मिलेगा अगर आप उस रोड पर हैं। अगर आपको कहीं ट्रैफिक नहीं मिल रहा दिल्ली की सड़कों पर तो आप ये बात हमें ज़रूर बताएं। आपको करना है हमें व्हाट्सएप, आप हमें व्हाट्सएप करेंगे 9868107070 पर, 9868107070 पर आपको हमें व्हाट्सएप करना है और बताना है दिल्ली की सड़कों का हाल।

ऑलराइट, अब हम आपको बता देते हैं वो प्रोग्राम जो आप हमारे आज दिन भर सुन सकते हैं, जो फोन इन प्रोग्राम है या कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो आपको सुनने जरूरी है। 2 बजे के समय आशियाना का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आकाशवाणी 90 साल बेमिसाल, और हमारी अतिथि रहेंगे शुभ्रा मजूमदार और आपके साथ रहेंगे मुनीश जौली। और 3 बजे के समय हमारे रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम का आज का विषय है अस्थमा एलर्जी एंड इन्फेक्शंस। हमारे एक्सपर्ट रहेंगे डॉक्टर एस के छापरा, फॉर्मर डायरेक्टर पटेल ट्रस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली से। आप इन कार्यक्रमों के अलावा 4 बजे संदेश टू सोल्जर भी सुन सकते हैं। मुनीश चौली के साथ हमारे आज गेस्ट रहने वाले हैं श्री एस के यादव, रिटायर ऑफिसर इंडियन आर्मी से। आप जरूर इन तमाम कार्यक्रमों में हमारे साथ बने रहें। अभी फिलहाल आप सुनेंगे बेहद खूबसूरत ट्रैक जो रेट्रो का है, पुराना है, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की बेहद खूबसूरत आवाज में आप सभी के लिए। दिल के तराने, गाने नए पुराने में।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

दिल के तराने गाने नए पुराने में, चलिए आपको क्विक हम वेदर अपडेट दे देते हैं। और अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की ओर आज नजर डालें तो 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस। करंट टेम्परेचर की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस। पूरा दिन आपको सूरज देवता के दर्शन होने वाले, यानी कि अच्छी खासी आपको गर्मी रहेगी मिलेगी। और अगर AQI पे नजर डालें हम तो इट्स 108 और आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेकर चलने की जरूरत है। बाकी जितनी भी चीजें आपको सभी पता है किस तरह से आपको अपना ध्यान रखना है, अपने अपनों का ध्यान रखना आप जरूर रखें, खुद भी स्वस्थ रहें और अपने अपनों को भी स्वस्थ रखें। और हमेशा सुनते रहें आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। अभी आप सुन रहे हैं दिल के तराने गाने नए पुराने रेणु भट्ट के साथ।

आपसे मिलने का दिल होता है तो हम आ ही जाते हैं आप तक, और आपको यूं ही हमारे साथ बने रहना फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से, और कई तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हुए, आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी दोस्ती को और ज्यादा गहरी और अनमोल करते रहें, क्योंकि एंटरटेनमेंट का सिलसिला यहां पर खत्म होने वाला बिल्कुल नहीं है। मेरे जाने का समय हो गया, लेकिन मेरे जाने के बाद कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर, मैं आपको बता देती हूं। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि ठीक 10:05 पर आप सुनेंगे मैचलेस म्यूजिक आर निहारिका के साथ। 11:05 के समय है बॉलीवुड ट्रेल्स का, बबीता रावत रहेंगे आपके साथ और निहारिका ही लेकर आएंगे प्ले इट कूल। समय रहेगा 12:05। तो अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत, आप बने रहिए आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर। गुड बाय एंड टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। इन हमलों में 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
1: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछले सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री के पद की शपथ लेने की संभावना है। केरलम के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे भी मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 14 बिंदुओं वाला ये मसौदा 30 दिन की बातचीत का रास्ता खोल सकता है, ताकि एक व्यापक समझौते तक पहुंचा जा सके। ईरान ने कहा है कि वह इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को नियंत्रण में बताया, लेकिन चेतावनी दी कि बातचीत असफल होने पर सैन्य कार्रवाई फिर शुरू हो सकती है। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतावली और एक डच युद्ध पोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इन द वॉइस ऑफ किशोर कुमार साहब फ्रॉम द फिल्म गोलमाल आने वाला पल जाने वाला है. गुलजार साहब हु इज द लिरिसिस्ट फॉर दिस ट्रैक वन अ फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट लिरिसिस्ट इन द 1980 अवार्ड सेगमेंट फॉर दिस सॉन्ग. एंड नो डाउट यू नो द प्रेजेंट मोमेंट इट इज गॉन बिफोर वी इवन नो इट. सो आने वाला पल डेफिनेटली जाने वाला है. एंड ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर अराउंड तीसहजारी मेट्रो स्टेशन देर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ट्रैफिक देर. सो यू माइट वॉन्ट टू अवॉइड that road and take an alternative route to wherever it is that you're headed. A lot of traffic noticed around Aruna Asaf Ali Government Hospital as well, and that entire area is actually experiencing a lot of delays at the moment. So just a word of caution, you might want to take alternative routes to wherever it is that you're headed to. And up next, Bruce Springsteen with Human Touch, and 10:21 a.m. by the studio clock. So if you're driving anywhere, drive very safe, and if you're working, well, we hope that you're having a good time listening to all the music as well. Stay tuned.

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

इन द वॉइस ऑफ किशोर कुमार साहब द सॉन्ग पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही फ्रॉम द 1970 फिल्म जॉनी मेरा नाम विच बाय द वे वॉज द हाइएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म इन द ईयर ऑफ 1970 एंड इट बैग्ड अ नंबर ऑफ अवार्ड्स इंक्लूडिंग रिसीविंग द बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल फॉर हिज ट्रिपल रोल्स दैट इज ऑफ अ स्टूअर्ड ऑफ एन एसोसिएट ऑफ क्रिमिनल्स एंड अ पुलिस ऑफिसर दैट अवार्ड वेंट टू आईएस जौहर साहब हु इज ऑल्सो बीन वेरी वेल रिसीव्ड फॉर अ लॉट ऑफ हिज other comic roles but among the international audiences he is known for his role in the film Lawrence of Arabia and this film was directed by Vijay Anand the lead role was played by his brother Dev Anand Saab and Vijay Anand also won the best filmfare award for the screenplay of this film so a number of awards right there and a lot many accolades and it was loved by audiences alike as well and up next on our playlist is a lovely track called You Win Again by Johnny Cash, reminding us that whatever efforts we make, it may bear result in the future, if not now, but definitely and for sure.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। इन हमलों में 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था।
1: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि देश के खिलाफ आतंकवाद के हर स्वरूप का मुकाबला डटकर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे दुश्मनों को ये संदेश देता है कि वे दुनिया में कहीं भी छिपे हों, वे हमसे बच नहीं सकते। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। राज्यपाल के चेन्नई से तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है, वे इस समय चेन्नई में हैं। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 14 बिंदुओं वाला ये मसौदा 30 दिन की बातचीत का रास्ता खोल सकता है, ताकि एक व्यापक समझौते तक पहुंचा जा सके। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ। प्रोग्राम शुरू हो चुका है बॉलीवुड रेल, जहाँ हम आपको बताएंगे बॉलीवुड जगत के बारे में और बॉलीवुड जगत से जुड़े हुए लोगों के बारे में। तो सुनते रहिए और साथ ही साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि भाई बॉलीवुड सरताज जो आपको बनना है तो सुननी पड़ेंगी हमारी बातें बहुत ध्यान से, और ध्यान से जब सुनेंगे तो बन जाएंगे आप जवाब देकर बॉलीवुड सरताज। और बहुत सारी बातें, क्या हो रहा है बॉलीवुड में, कौन सी फिल्में आने वाली है, सब होगी यहीं पर। सुनते रहिए, मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ दिल से दिल तक।

सर गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी, क्योंकि बॉलीवुड की जब बातें होती हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलीवुड जगत में किन किन का है आज बर्थडे। तो चलिए बताते चले कि आज कौन मना रहा है बॉलीवुड में अपना बर्थडे। अमायरा दस्तूर, जी हाँ अमायरा दस्तूर का है आज बर्थडे। और आप इन्हें कैसे जानते हैं? जी हाँ हम बताते हैं आपको। दस्तूर ने अपने करियर जो है मॉडलिंग से स्टार्ट किया था और उसके बाद मनीष तिवारी की रोमांटिक ड्रामा इश्क, जी हाँ इसक, इश्क नहीं इसक, हाँ जी इसक से प्रतीक बब्बर के अपोजिट इन्होंने काम किया। उसके बाद दस्तूर ने बहुत सारी तमिल फिल्मों में और तेलुगु फिल्मों में और हिंदी फिल्मों में, पंजाबी फिल्मों में काम किया है। और अगर बात कहें तो अनेगन मिस्टर एक्स 2025 में आई थी और इसमें इनके जो को एक्टर थे वो थे इमरान हाशमी। इनके साथ इन्होंने काम किया कलाकांडी, प्रसन्नम और जोगी, बगीरा जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। इसके अलावा तांडव सीरीज में भी इन्होंने काम किया है। तो इन्हें कहते हैं हम हैप्पी वाला बर्थडे, और अमायरा दस्तूर का आज है बर्थडे।

0: अभी आप सुन रहे थे मिस्टर एक्स मूवी से गाना हमारा दस्तूर और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म से अंकित तिवारी की आवाज में इस प्यारे के सॉन्ग के साथ अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RKL Life, इससे बेहतर कुछ नहीं। अपने परिवार

0: सरकार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबीता रावत, आपके साथ प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स। और वहां जहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं और आने वाले समय में भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली है, क्योंकि हॉलीवुड की तर्ज पर कुछ ऐसी फिल्में बनने वाली हैं जिसमें सुपर हीरो, सुपर नेचुरल पावर, साइंस फिक्शन जैसी फिल्में होंगी। कौन कौन सी फिल्में हैं वो हम बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सलमान खान की। जी हाँ, सलमान खान को इन दिनों सुपर हीरो के रूप में देखने का बहुत इंतजार हो रहा है सभी को। और अब जब सुपर हीरो की बात आती है तो फिर VFX की बात भी आ जाती है। जी हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जो सुपर हीरो पर बेस्ड मूवीज हैं हॉलीवुड में, उसमें सुपर डुपर VFX का इफेक्ट डाला गया है। और अब जब सुपर हीरो के तौर पर सलमान खान काम करने वाले हैं तो उनकी भी फिल्म में VFX इफेक्ट कैसे छूट सकता है। जी हाँ, जबरदस्त VFX इफेक्ट देख सकते हैं आप उनकी मूवी में आने वाले समय में। और कौन से टाइप के आपको VFX इफेक्ट देखने को मिलेंगे आपको बता दे, द एवेंजर्स, द बैटमैन, द लास्ट ऑफ अस और मूनलाइट जैसी हॉलीवुड फिल्म को जिसने संभाला है वही कंपनी VFX इफेक्ट्स डालेगी सलमान खान की सुपर हीरो वाली मूवी में। और काम की बात बताएं आपको, काम की बात यह है कि इस फिल्म में उनके साथ जो आपको एक्ट्रेस देखने वाले हैं वो बहुत सी फिल्मों में उनके साथ दिखाई दी हैं, ऐसा सुनने में आया है। बजरंगी भाईजान, बॉडीगार्ड, क्योंकि और मैं और मिसेस खन्ना जैसी फिल्मों के साथ उनके साथ को एक्ट्रेस के तौर पर काम करने वाली करीना कपूर का नाम इस फिल्म में जोड़ा जा रहा है। तो भाई वैसे तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, सलमान खान और करीना कपूर खान की जोड़ी तो जबरदस्त दिखती ही दिखती है। फिलहाल अभी हम सुनते हैं बजरंगी भाईजान, जिसमें एक्चुअल में वो एक सुपर हीरो थे एक बच्ची के लिए, उसका गाना।

बजरंगी भाईजान से आप सुन रहे थे ये गाना और जुबिन नौटियाल की आवाज थी। और इसके अलावा आप और भी बेहतरीन बेहतरीन गाने सुनते रहेंगे, लेकिन उसके अलावा आपको बॉलीवुड की बातें भी सुनने को मिलती रहेंगी। वैसे धुरंधर की चर्चाएं बहुत आम हैं, क्योंकि धुरंधर अभी भी बहुत जबरदस्त कमाई कर रही है और 1000 करोड़ से भी ऊपर इस फिल्म ने कमाई कर ली है अभी तक। और अभी भी सिनेमा थिएटर में जो इस फिल्म के चाहने वाले हैं वो जा ही रहे। लेकिन बात धुरंधर में एक ट्विस्ट की थी। जी हाँ, वो ट्विस्ट राकेश बेदी के किरदार ने निभाई। जी हाँ, जमील जमाली का किरदार निभाया था इन्होंने और जबरदस्त ट्विस्ट के साथ इस फिल्म की एंडिंग होती है और यही लोगों को बहुत भा गया। अब हम बात कर लेते हैं राकेश बेदी जी की। भाई, धुरंधर के बाद अभिनय में सुर्खियां बटोरने के बाद राकेश बेदी क्या कर रहे हैं? राकेश बेदी अपने आगामी प्रोजेक्ट्स पर व्यस्त हैं, और क्या व्यस्त है हम आपको बताते हैं। भाई, ट्विस्ट की बात ये है कि जब एक्टिंग की बात आती है तो राकेश बेदी की टाइमिंग यानी कि कॉमिक टाइमिंग की कोई जवाबदारी नहीं है। बिल्कुल ज़बरदस्त वो अपनी कॉमिक टाइमिंग करते हैं। और अब राकेश जो बेदी हैं वो करने वाले हैं डांस। हाँ, बता रहे हैं ना, किसके साथ कर रहे हैं? नौरा फतेही के साथ एक गाने की शूटिंग कर रहे हैं और जबरदस्त झलक दिखाई उन्होंने सोशल मीडिया पर। वहीं नौरा फतेही ने राकेश बेदी को डांस करते हुए बहुत ही जबरदस्त कहा है। जी हाँ, उनकी बहुत तारीफें की हैं और कहा है कि उनके साथ मैच करना थोड़ा सा उनको मुश्किल हो रहा है। तो यानी कि राकेश बेदी को हम आने वाले समय में डांस करते हुए देखेंगे। और कौन सी फिल्म होगी ये तो अभी आपको पता चलेगा बाद में। सुनते रहिए हमारे साथ बॉलीवुड ट्रेल्स। आगे आगे देखिए होता है क्या।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। बॉलीवुड ट्रेल्स प्रोग्राम है आपके साथ और साथ ही साथ वक्त हो चला है आपसे पूछने का बॉलीवुड सरताज का क्विज। और बॉलीवुड सरताज का क्विज बहुत ही आसान है आज का, आपने बहुत ध्यान से सुनी है मेरी बातें, तो अभी तक की उन बातों में छुपा हुआ है उस क्विज का आंसर, तो बताते चलें। क्वेश्चन है अमारा दस्तूर के बारे में, आज हमने बात की, आज उनका बर्थडे है। तो अमारा दस्तूर और इमरान हाशमी ने कौन सी फिल्म में एक साथ काम किया है? जी हाँ, आप बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, अमायरा दस्तूर और इमरान हाशमी ने कौन सी फिल्म में एक साथ काम किया है? 9868107070 पर आप दे सकते हैं इस क्विज का आंसर और साथ ही साथ अपने नाम और अपने पते के साथ। अगर जैसे ही आप ये आंसर देते हैं तो सबसे पहले जो आंसर देगा वो बनेगा आज का हमारा बॉलीवुड सरताज। तो हो जाइए शुरू 9868107070 पर अपना आंसर जल्दी से भेज दीजिए।

बावरिया तो सब लोग हो जाते हैं जब अपने अपने फेवरेट्स स्टार्स को देखते हैं। और जब बात आती है बॉलीवुड की, तो आजकल बॉलीवुड के हीरो तो वैसे चर्चा में है ही हैं। वैसे भी अगर साउथ इंडियन हीरोज की बात की जाए तो वो भी चर्चा में हैं, क्योंकि उनकी कई फिल्में हैं जो हमारे नॉर्थ इंडिया के जो ऑडियंस हैं, या हमारी जो नॉर्थ इंडिया की जो जितने भी लोग दर्शक हैं, उनको बहुत पसंद आ रही है। और अब बताते चले कि रामचरण जानवी कपूर की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म पेडी, जिसका गाना बहुत जल्दी रिलीज हो गया था और जबरदस्त रिलीज हुआ था, और सोशल मीडिया पर उसकी तो कॉपीज भी की जा रही थी। हाँ, बता रहे हैं ना उसके बारे में, कब होने वाली है रिलीज। ये फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, उसके बाद इसकी डेट थोड़ी सी पोस्टपोन कर दी गई। हाँ, लेकिन अब क्या किया जाए, थोड़ा सा काम रह गया था, तो इसलिए फाइनली ऐसा कहा जा रहा है कि ये फिल्म 4 जून को रिलीज हो जाएगी। जी हाँ, रामचरण और जानवी कपूर की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है पेडी, और ये फिल्म 4 जून 2026 को आ जाएगी सिनेमा घरों में। निर्देशक बुच्ची बाबू सना, कलाकार कौन कौन है इसमें, रामचरण, जानवी कपूर, शिवा राजकुमार और दिव्येंदु शर्मा, ये कलाकार हैं इसमें। साथ ही साथ आपको बताया एक स्पेशल सॉन्ग है जिसमें श्रुति हासन एक हाई एनर्जी स्पेशल डांस लेकर आने वाली हैं, और एक्शन थ्रिलर है, स्पोर्ट्स है, बहुत कुछ है, एक बड़े बजट की फिल्म है, जरूर देखिएगा। और क्योंकि जानवी कपूर है तो हम तो जरूर जाएंगे, और जानवी कपूर के बारे में एक और बात बताऊंगी मैं आपको। सुनते रहिए मेरे साथ बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ।

हाँ यही वाला सॉन्ग है पिद्दी का, जिसने सोशल मीडिया में धमाल मचाया. और अब ये फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है 4 तारीख को जून में, और जल्द धमाल मचाएगी. साथ ही साथ जैसे हमने बताया था आपको, जाह्नवी कपूर इस फिल्म में उनके साथ को एक्ट्रेस है. और जाह्नवी कपूर इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्ट्रेसेस के साथ काम कर रही हैं. और रिसेंटली ऐसा सुनने में आया है कि बॉलीवुड में एक नई फ्रेश जोड़ी बनने की खबर दौड़ रही है. और भाई बता दे वो फ्रेश जोड़ी कौन सी होगी. ये बता दे कि दो ऐसी अलग अलग जनरेशन है जिन्होंने आपस में स्क्रीन शेयर करने की बात कही जा रही है. ये है हमारे शाहिद कपूर और जाह्नवी कपूर. जी हाँ, शाहिद कपूर और शाहिद कपूर के साथ जाह्नवी कपूर की जो जोड़ी है, इसकी बात और इसकी चर्चा बॉलीवुड में जोर शोर से है. और एक साथ ये फिल्म में नजर आ सकते हैं. फिल्म का तो अभी नाम क्लियर नहीं है, लेकिन मशहूर डायरेक्टर अमित शर्मा इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं. और ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी. और फिल्म की कहानी क्या होगी भाई, मॉडर्न रिश्ते होंगे, इमोशन होंगे, हल्के फुल्के अंदाज में से पेश किया जाएगा. और प्रोजेक्ट हालांकि फाइनल होते ही सबसे पहले नाम इस फिल्म का नजर आ सकता है. लेकिन ये तो पक्का है कि अगर जाह्नवी और शाहिद कपूर की जोड़ी पर्दे पर नजर आई तो थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट तो हो गई, लेकिन अब देखना यह है कि लोग इन्हें कितना पसंद करते हैं. फिलहाल जो भी जाह्नवी कपूर रोल कर रही हैं इस वक्त, जिन जिन एक्टर एक्ट्रेसेस का, उनके साथ उनकी जोड़ी अच्छी लगती है ना. चलिए गाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं उन्हीं की फिल्म का. जी हाँ, कौन सी फिल्म है ये, आप भी समझ गए होंगे. इस फिल्म का नाम है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का गाना.

बहुत सारी बिजुरिया गिराने वाली आने वाली हैं कई फिल्में, और 2027 में उनका लिस्ट एक तैयार हो चुकी है। और कौन कौन सी फिल्में हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहली फिल्म का नाम है स्पिरिट। जी हाँ, प्रभास और तृप्ति डिमरी की ये फिल्म 5 मार्च 2027 को रिलीज होने वाली है, जो संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। हालांकि इस फिल्म का थोड़ा सा रिलीज की डेट का थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है, क्योंकि इसी समय रिलीज होने की बात कही जा रही है सलमान खान की एक फिल्म का। और जब सलमान खान आते हैं तो भाई कहीं ना कहीं मैदान थोड़ा साफ करना पड़ता है। पर अब देखना यह है कि ये फिल्म फ्लोर पर आती है सलमान की, और जैसे ही ये फिल्म आएगी और ये फिल्म स्पिरिट को आगे बढ़ाती है, या इस फिल्म की स्पिरिट की वजह से सलमान खान की फिल्म आगे रिलीज होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म 11 जून 2027 को जी रिलीज होने वाली है। इसके अलावा कैप्टन इंडिया कार्तिक आर्यन स्टार फिल्म 13 अगस्त 2027 को होगी रिलीज इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष में। और जी हाँ, बहुत अच्छा समय होता है फिल्म को रिलीज करने का। जब भी कोई एक लंबा वीकेंड आता है, एक अच्छी सी छुट्टी आती है, तो लोग एंजॉय करते हैं इन फिल्मों को। रामायण पार्ट 2, नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित रणबीर कपूर की इस फिल्म का दूसरा भाग 2027 में आने की उम्मीद है, और उम्मीद है तो कब आएगी ये नहीं कहा जा सकता। वाराणसी, महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा स्टारर ये फिल्म एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है, और 7 अप्रैल 2027 को इस फिल्म के रिलीज होने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग भी चल रही है। नाग जिला कार्तिक आर्यन की ये फिल्म है, और 12 फरवरी 2027 वैलेंटाइन डे वीकेंड पर रिलीज होगी। इसके अलावा 4-3 जॉन अब्राहम की एक्शन फिल्म है, 19 मार्च को रिलीज हो सकती है। तुम्बा 2 सोहम शाह की बहुप्रतीक्षित फिल्म है और सीक्वल है, और 3 दिसंबर 2027 को रिलीज होने की उम्मीद की जा रही है, जिसमें आलिया भट्ट का भी नाम आ रहा है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की इस फैंटेसी फिल्म में तीसरा पार्ट अक्टूबर 2027

0: बॉलीवुड रील्स प्रोग्राम है, मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ और वक्त है इस वक्त हमारे बॉलीवुड सरताज से मिलने का। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
1: हेलो,
0: हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक?
1: जी हाँ मैम, थोड़ी कम आई मैम।
0: अच्छा, हमारे साथ शिव हैं मेरठ से और आज इन्होंने सबसे पहले जवाब दिया है और प्रश्न था हमारा कि अमारा दस्तूर और इमरान हाशमी ने कौन सी फिल्म है जो साथ साथ की है, तो आप आंसर बता दे।
1: मिस्टर एक्स।
0: मिस्टर एक्स, और आपने ये फिल्म देखी है?
1: जी मैम देखी तो नहीं है मैंने, आप भी बता रहे थे ना तो मैंने इसमें सुना था।
0: देखिए कितने ध्यान से सुना है इन्होंने, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है, किसी ने गलत भी दिया है, किसी ने सही दिया है, लेकिन इनका जवाब सबसे पहले आया है और बिल्कुल सही सही जवाब आया है। तो शिव जी आप करते क्या है?
1: मैम ऑटो पार्ट्स का काम करता हूँ मैम।
0: अच्छा, और आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस का नाम बता सकते हैं आप?
1: मैम अजय देवगन है।
0: अजय देवगन, ओके। तो आप बताइए कि आपकी अजय देवगन की कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको सबसे अच्छी लगी?
1: मैम वैसे जो अभी फूल और कांटे देखी थी मैंने, मुझे तो वो सबसे ज्यादा अच्छी लगी।
0: फूल और कांटे, और बिल्कुल डिफरेंट अंदाज था उनका और
1: जी जी
0: सभी को वो उस फिल्म में बहुत पसंद आए थे। बहुत ही सीरियस एक्टिंग करी थी उन्होंने। एक पार्ट जिसमें उन्होंने एज अ स्टूडेंट काम किया बहुत ही जबरदस्त रहा, उसके बाद उन्होंने एक सीरियस एक्टिंग करी और बहुत ही अच्छा काम किया उस फिल्म में, और उसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं।
1: कॉमेडी में भी अच्छे लगे, कॉमेडी अच्छी कर लेते
0: हैं एक्शन के साथ साथ, वो कॉमेडी में भी अच्छा। तो कॉमेडी फिल्म की कोई आप बता सकते, कोई कॉमेडी फिल्म देखी है उनकी? तो
1: मैम गोलमाल में जितनी सीरीज है मैंने सब देखी है लोगों।
0: अच्छा, और अभी रिसेंटली उनकी सन ऑफ सरदार 2 रिलीज हुई, तो क्या वो देखी?
1: जी मैम वो देख नहीं पाया, जो टाइम का थोड़ा मैटर था।
0: वो भी देखिएगा, अच्छी कॉमेडी, अच्छी टाइमिंग है उनकी। और
1: जी,
0: बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आज आप बने हैं हमारे बॉलीवुड सरताज।
1: धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए।
1: इससे पहले मैं प्रियंका मैम ने बनाया था, मैं प्रोग्राम आया था ना
0: जी जी,
1: तो उसमें एक बार पहले ही बन चुका हूँ।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको।
1: धन्यवाद मैम, धन्यवाद।
0: तो बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने, आशीष बने हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। और जब बात आती है बॉलीवुड सरताज की तो हर कोई बनना चाहता है बॉलीवुड सरताज, पर क्या करें, एक ही व्यक्ति को हम बना सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों ने जिन्होंने हमें जवाब दिया है, आप सभी लोग हमारी तरफ से बने हैं आज के बॉलीवुड सरताज। मोहित शिकारपुर हिसार हरियाणा से इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसके अलावा आंसर किसका आया है ये भाई, इतना लंबा लंबा नाम देते हैं आप लोग, समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत की जाए। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से बिल्कुल सही जवाब देते हैं। इसके अलावा आता है विनीत कुमार बनायूं उत्तर प्रदेश से, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और इसके अलावा कौन है भाई, बहुत जवाब दे रहे हैं लेकिन नाम ही नाम लिखते हैं अपने। हाँ, राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। खान आबिद इन्होंने मेरठ से बिल्कुल सही जवाब दिया है। और आठ से मोहम्मद फुरकान इन्होंने भी बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। और इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर, लेकिन क्या करें, यहाँ पर नाम प्रभात सुप्रभात, जी हाँ ये सूरज है, इन्होंने लिखा कहाँ से है ये नहीं इन्होंने सही बताया है, लेकिन हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका। उमेश कुमार खयाला से बिल्कुल सही जवाब देते हैं। इसके अलावा नौशाद चौधरी मंडोली दिल्ली 93 से बिल्कुल सही सही जवाब देते हैं। और इसके अलावा कौन कौन है यहाँ पर हमारे साथ, दर्श अग्रवाल गोनियाना मंडी भटिंडा से बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। रवि जोशी मेरठ से सही जवाब देते हैं। ऋषु कटारिया पवन कटारिया गिद्दड़बाह पंजाब से बिल्कुल सही जवाब देते हैं। तो ये सारे जवाब हमारे पास जो आज आए हैं बिल्कुल सही सही आए हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि हमारे साथ यूं ही जुड़े रहे आप, हम यूं, क्योंकि अगला प्रोग्राम जो मैं लेकर आऊंगी आपके लिए वो तो आपसे हमसे जुड़ने का एक बड़ा माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट पूरी होती है, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग, और मेरा वाला सॉन्ग में हम बहुत सारे गीत बजाते हैं आपकी पसंद के। और मुझे मजबूर कर दीजिएगा आज कि मैं आज का आपका जो फेवरेट सॉन्ग है या जो आपने हमसे इल्तिजा की है बजाने की, हम बजा दें। अगला प्रोग्राम जो आपके लिए आने वाला है, निहारिका लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक का मैचलेस म्यूजिक आर, जुड़े रहिए इनके साथ। मैं लेती हूँ अभी फिलहाल इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। एक रिपोर्ट।
1: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प

संकल्प पर अडिग है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिवसीय सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। ये पहल व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और देश के कार्यबल के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे सब कभी तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे नहीं झुके। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्रिपद की शपथ लेने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। प्रवर्तन निदेशालय पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये कार्रवाई ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण GMADA से भूमि उपयोग परिवर्तन लाइसेंस प्राप्त करने में हुई धोखाधड़ी और जनता से करोड़ों रुपए की ठगी के सिलसिले में की जा रही है। निदेशालय नितिन गोहल की तलाश कर रही है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: vacations for that matter. Hence the petition, you know, that as adults, we need summer vacations as well. Summer breaks and winter breaks, because we also need to relax, maybe more so than children, right? So, yeah, thank you so much for writing to us and sharing your summer vacation memories. In case you have a memory or you have something to share about your summer vacations, write to us on 9868107070. A commercial break coming your way, followed by music for sure.
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉग इन करें।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरे छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
5: पता का चाय गजब का स्वाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। एक रिपोर्ट।
1: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने पटना के गांधी मैदान में

0: नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसमें श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, निशांत कुमार और लेसी सिंह सहित कई अन्य मंत्रियों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो कर रहे हैं। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। तमिलनाडु में टीवीके प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। कल भी विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और पार्टी विधायकों की सूची तथा कांग्रेस का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसीके नेता थिरु मावलन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के दो विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का और हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे कभी तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे नहीं झुके। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। ये पहल व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और देश के कार्यबल के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। राष्ट्रपति तो लाम आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 345 अंक बढ़कर 78,304 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो।
1: This is आकाश।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं बबीता रावत। आपके साथ प्रोग्राम शुरू हो चुका है मेरा वाला सॉन्ग, जहां पर आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट और हम करेंगे प्ले यहां पर आपके फरमाइशी गीत। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भेज दीजिए अपनी रिक्वेस्ट और हम प्ले करेंगे यहां पर आपका पसंदीदा गीत। यहां पर पहला जो सॉन्ग हम प्ले करने वाले हैं, जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है ये गाना। और कौन सा गाना होगा वो जरूर बताएंगे, क्योंकि ये है राजा हिंदुस्तानी का गीत। और किसने कहा है, किसने फरमाइश की है ये भी बता देते हैं। बागेश्वर निषाद जी ने हमें रिक्वेस्ट की है राजा हिंदुस्तानी के इस गीत की। और सुनिए और एंजॉय कीजिए, अपनी रिक्वेस्ट भेजिए 9868107070 पर।

हैप्पी न्यू ईयर का ये गाना उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश की फरमाइश।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग और मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ 9868 1070 पर 7070 पर, यानी कि 9868 1070 7070 पर आप भेज सकते हैं अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट। और एक से बढ़कर एक सॉन्ग रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है और हम मजबूर हो रहे हैं उन सॉन्ग रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए। तो आप भी भेज दीजिए ऐसी सॉन्ग रिक्वेस्ट जो बिल्कुल यूनिक हो और हम कोशिश करेंगे उसे प्ले करने की। अभी जो गाना हम प्ले करने वाले हैं

भाई प्यार तो हम आप सभी से करते हैं और कोशिश यही हमारी होती है कि हम हर किसी की सॉन्ग रिक्वेस्ट प्ले करें। और यहाँ पर मोहम्मद इम्तियाज और सलमा बेगम जवाहर कैंप कीर्ति नगर से फिल्म आरजू का ये गीत आप सभी लोगों के लिए और खास तौर से मोहम्मद इम्तियाज और सलमा बेगम के लिए।

झूठ तो हम बोलते नहीं क्योंकि हम चाहते हैं सबकी सॉन्ग रिक्वेस्ट पूरी करना। और अब मन फिल्म का ये गाना सीमा मेरठ से इन्होंने रिक्वेस्ट की है और ये गाना स्पेशली इनके लिए। और साथ ही साथ हमारे कुछ और भी लिसनर्स हैं जो चाहते हैं कि उनका नाम पुकारा जाए। राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से इन्होंने लिखा है, किसी भी गीत के साथ मेरा नाम ले लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है सप्रेम, नमस्कार रेडियो सखी जी, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, किसी भी गाने में हमारा नाम शामिल कर लीजिए। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, तो आप सभी के लिए ये गाना मन फिल्म से।

आपका हमारा मन जुड़ा हुआ है रेनबो के थ्रू, और रेनबो से ही हम और आप इतने प्यार से जुड़े हुए हैं कि कोशिश यही करते हैं कि हम हर किसी की मन की बात समझ जाएं। और अभी फिलहाल जिनके मन का गाना बजने वाला है, उपदेश शर्मा किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर से, इन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट की है मूवी हमको दीवाना कर गए का, ये गीत इनके लिए।

और हंसते हंसते इस गाने को मैं प्ले करने के लिए मजबूर हो गई हूँ। मोहम्मद अजीज की आवाज में मर्द फिल्म से है ये गाना, और किसने की है इसकी रिक्वेस्ट? नौशाद चौधरी मंडोली 93 दिल्ली से इनकी रिक्वेस्ट आई है। सुनिए और एंजॉय कीजिए इस गाने को।

मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला ए मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला ओ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर।

टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।

क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, तुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग और मेरा वाला सॉन्ग में आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट हमें फटाफट मिल रही है। और जब तक कि एक गाने की डिमांड इज मेरा वाला सॉन्ग में ना हो, ना एक फिल्म का गाना है, जी हाँ, DDLJ यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तब तक ये शो पूरा नहीं होता। तो चलिए ये गाना जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है हम उनका नाम भी बताएंगे और कौन है वो खुशनसीब जिनका आज नाम यहाँ पुकारे जाने वाला है और उनकी पसंद का ये गाना भी। इनका नाम कौन है? रमेश कुमार विश्वकर्मा, ग्राम मेहंदीगंज, मड़ई पोस्ट, राजा तालाब, जिला वाराणसी से हैं। और इनको उनका ये पसंदीदा गीत जो है हम सुनाने वाले हैं।

उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार, सुनीत कुमार, खयाला से इन्होंने रिक्वेस्ट की है इस गीत की। और साथ ही साथ कुट्टू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले से लिखते हैं कि मैं बेडावन गांव से बोल रहा हूँ, यानी कि लिख रहा हूँ, और प्लीज किसी भी गाने पर मेरा नाम पुकार लीजिएगा क्योंकि सारे गाने ही उन्हें पसंद आ रहे हैं। तो लीजिए, हमने आपका नाम भी पुकार लिया।

बहुत सारे रत्नों से जड़ित गाने यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन भाई समय का तकाजा है और अब लास्ट सॉन्ग जो हम प्ले करने वाले हैं अजय, कालू पोली, अमर कॉलोनी, गोकलपुरी, दिल्ली से इन्होंने रिक्वेस्ट की है और इस गाने को जरूर हम पूरा करेंगे। लेकिन लेकिन लेकिन एक कोई है जो गुस्सा बैठे हुए हैं, उनका जन्मदिन है और कहते हैं हम सभी के प्यारे भाई गर्वित गुप्ता का आज, जिसको हम प्यार से नोनू कहते हैं, उनके लिए कोई भी अपना पसंदीदा सॉन्ग प्ले कर दीजिए। खुशी, हंसी, चिन्नू, चीकू, अनाया और विधि मेरठ से लिखते हैं। तो लीजिए, आपके लिए लास्ट सॉन्ग मैं प्ले करने वाली हूँ और आपको हैप्पी वाला बर्थडे गर्वित गुप्ता जी, और साथ ही साथ अगले प्रोग्राम को जरूर से सुनिएगा। अगला जो प्रोग्राम होने वाला है आशियाना अक्षय वट में, आज कुछ खास है। जी हाँ, मुनीश जौली लेकर आ रहे हैं आकाशवाणी 90 साल बेमिसाल, और आज अतिथि है हमारे साथ शुभ्रा मोजुमदार। उनके साथ रहिएगा, जुड़िएगा और मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर किसी दिन किसी रोज कहाँ मिलेंगे, आकाशवाणी रेनबो के इसी जगह पर, इसी फ्रिक्वेंसी पर।

0: broadcasters like us?
1: Well, I wouldn't say for the broadcasters, but in general, I think the general public was aware of this medium through even children like us. Because when we were children, the children's program was something where everybody was welcome. And that was one place, you know. Elders at home were always saying, chup raho, ye karo, wo karo, aise nahi karte hain, waise nahi karte hain, theek se bolo. But here, nobody said anything. We could say what we want. We could laugh. We could whisper. We could appreciate something. We could clap out of turn. There were no holds barred. So it was a wonderful place to come for the children's program. And of course, there were Sunday afternoons when after lunch there used to be a children's program over AIR Kolkata,
0: yeah,
1: which was a great hit. So Sunday lunch was eaten in jolly quick time to be in time for this AIR program. And it started with birthday wishes for a whole lot of children, I remember.
0: Yeah, there was a time jahan radio birthday wish karta tha sabko, sabki chittiyan aati thi ki mera birthday aa raha hai, to aap us din hamara birthday wish karna, us era ki hum log baat kar rahe hain.
1: Haan, bilkul.
0: Kitni positivity leke aati hain aap. Aapse mila main, aapne kaha ki, oh, were you hoping that you'll meet somebody young, beautiful? No, I thought that I'll meet somebody who has got a lot of energies. Young, beautiful, kam reh gaya. You are exceptional. I'm very fond of you. Jab se aap se baat shuru ki hai, I was looking forward to meeting you. Aur aaj hamare jo listeners hain, I think wo bhi bahut khush honge aapse milkar. Dosto, hamare saath.
1: Chaar chand laga diya aapne ye sab keh ke. Aur sachi, aapne to sahi kaha.
0: जी.
1: Well, it is the feeling is mutual. आपसे मिलके भी मुझे यही feelings हो रही है. क्यों ना जो भी हो, you know, the older I get, the younger I feel, and the more young men who come my way, the more I feel pleased. And I.
0: All right. So that gives me a lot of confidence.
1: I don't mix with the old people. Not worth it. उनका कुछ कुछ है ही नहीं उनके पास भैया. जवानी जवानी होती है.
0: Absolutely. I think मैं किसी को old कहूँगा तो somebody who doesn't have that courage to hold himself or herself. गरीब वो होता है, old वो होता है, जिसको जिसके अंदर करने का जज्बा चले जाता है. और आप तो आकाशवाणी के उस बहाव में, यू द पार्ट ऑफ दैट फ्लो years
1: well,
0: back.
1: Well, you people have carried me on your shoulders. मैं तो I'm ever grateful to the various editors, to the various program organizers, and who, you know, came forward and took me on and encouraged me to speak. And mind you, I made 1001 mistakes. मुझे पहली बार याद है प्रोफेसर रूपर्ट स्नेल, वो हिंदी के चेयर पे थे लंदन यूनिवर्सिटी में. करीब 30 साल उन्होंने वहीं रहे हैं. उसके बाद वो टेक्सास यूनिवर्सिटी यूएसए में चले गए ऑन एन इनवाइट, वापस आए. फिर खैर फिलहाल वो उनका फोर्टे है रामचरितमानस, और ना जाने कितनी किताबें वो लिखे हैं इस पे, और इतनी स्पष्ट और सुंदर हिंदी बोलते हैं कि मैं क्या कहूँ
0: आपकी
1: आपको?
0: तरह
1: मेरी हिंदी तो खैर बिल्कुल ही टूटी फूटी है. तो यू नो वी कॉल आवरसेल्व्स बाइलिंगुअल. I think we are no lingual at all because I neither speak Hindi well nor English well. But anyway, the other side understands me, and that's my satisfaction.
0: Okay.
1: So talking of Rupert Snell, I was called by a very, very grateful program officer from AIR to come and do this interview, so to speak, with one Rupert Snell. Gora, maine socha, dull old man, pata nahi kya bolega, nahi bolega, aur isse kya poochna karna. Anyway, I went with a lot of misgivings.
0: Okay.
1: So I started the usual भी भारतवर्ष में आके आपको द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस क्या महसूस होता है ये वो. थोड़ी देर बाद मैंने देखा ये तुलसी रामायण ये सब पे बातें हो रहे हैं. मैंने कहा ये शायद रात को कुछ पढ़ के आया होगा. एंड हाफ वे थ्रू ही सेज आई एम ऑन द हिंदी चेयर आई एम द प्रोफेसर देयर लंदन यूनिवर्सिटी and I my teaching is with Tulsi and I have that is what I am I have come here for an international conference etc. Then you know I wish I could have you know like Sita Maiya the earth had parted and I had gone in because I had made such a blunder of that talk by not asking him on his expertise. So I quickly changed it and I overspent the time. I said, well, the editing will do the rest. And it was such a pleasure afterwards. The whole world and his wife arrived afterwards and I took the liberty to take him to the station director to meet him, etc. So that was a great feeling and a great day. As we say, all's well that ends well. शुरुआत जैसा भी हो आखिर का जो है वो अच्छा होना चाहिए.
0: तो आप अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हैं तो हम अपने लिसनर्स को बता दें कि आज आशियाना में आप जिनसे मुलाकात कर रहे हैं वो हैं मिस शुभ्रा मौजूमदार, वन ऑफ द स्टॉलवर्ट्स एस ब्रॉडकास्टर हमारी आकाशवाणी की. और आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम ये खास पेशकश आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं. शुभ्रा मजुमदार जी से हम उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे आकाशवाणी के. तो आपने मिस्टर रूपर्ट स्नेल के बारे में बताया और रामचरितमानस की उनकी जो नॉलेज थी वो दैट वाज व्हाट मेस्मराइजिंग एंड
1: ओ एब्सोल्युटली. और फिलहाल अभी भी वो लिख रहे हैं. उनकी कई किताबें निकल चुकी हैं.
0: अच्छा.
1: और इसी टॉपिक पे
0: तो ये खास जो आप लोग आपने इंटरेक्शंस किए इंटरव्यूज किए खास पर्सनालिटी से जो आपकी किताब में द मोस्ट मेमोरेबल इंटरेक्शंस विद आकाशवाणी फॉर आकाशवाणी विद पीपल हम उसकी चर्चा कर रहे हैं. तो ये कौन से साल की बात है जब आपने मिस्टर रूपर्ट स्नेल को
1: ये मेरे ख्याल से 97-98 की बात होगी. वो इंडिया आए थे ऑन द इनविटेशन ऑफ ICCR. कोई रामायण के ऊपर कॉन्फ्रेंस था
0: जी.
1: उसी में आए हुए थे वो.
0: वंडरफुल.
1: तो तभी मेरी मुलाकात हुई उनसे. पर इफ यू आस्क मी ऑन एन इंटरनेशनल लेवल एंड बीइंग अ वुमन आई मस्ट मेक अ मेंशन ऑफ द फर्स्ट इट वाज नॉट द फर्स्ट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वुमेन्स कॉन्फ्रेंस व्हिच वाज हेल्ड इन बीजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद एन ऑडियंस ऑफ 45,000 वुमेन.
0: यस.
1: And the Secretary General of that council, that conference, was, if I can remember her name, Gertrude Mongela, Tanzanian.
0: It was sounding very African.
1: Yes, yeah. She was. And she had just been the ambassador from Tanzania to India. Madam had come over and I had the good fortune to interview her. And as usual, I started out with asking her about India memories, etc. But before long, I found she had quickly diverted the conversation towards women, women's rights, etc.
0: Okay.
1: And the focus was on advancement. And she was the one, this conference laid the blueprint for women's rights UN headquarters.
0: And we हम बात कर रहे हैं पहली इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस की जो बीजिंग में हुई थी और उनको हेड किया था तंजानिया की तब अम्बेसडर जो बन के आई थी उनका आपने नाम लिया. मैं चाहता हूँ नाम दोबारा ले लें आप.
1: जी बिल्कुल. गर्ट्रूड मंगेला.
0: Gertrude Mongela. Okay.
1: जी उनका यही नाम था. She was the Secretary General of the conference. और उस कॉन्फ्रेंस में naturally focus was gender equality, women's rights, जिसके लिए आज भी औरतें पूरी दुनिया में लड़ रही हैं. और बार बार इसको दोहराना पड़ता है हम औरतों के लिए.
0: तो आप जब उनसे मिली कैसी पर्सनालिटी आपको लगी बिकॉज आप इंडिया के पब्लिक ब्रॉडकास्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं
1: वहां पे. एक तो भाई वो जब आ रही थी मेरी ओर
0: जी,
1: तो क्या कहूँ, जैसे लग रहा था कोई पहाड़ मेरी ओर आ रहा है। मैं छोटी नाटी सिकुड़ी सी कोने में खड़ी हुई, घबराती हुई कि पता नहीं क्या बोलेंगी,
0: जी,
1: क्या
0: जी,
1: मैं बोलूं इनसे, और वो आ रही हैं बिल्कुल। एक तो उनके पोशाक भी जो होते हैं अपने

0: देश की वो पहने हुए बिल्कुल रंग बिरंगे बहुत ही
1: अच्छा।
0: खूबसूरत लग रही थी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरी वो राह रही थी।
1: ओके
0: तो फिर आते आते जब वो नजदीक आई और हम दोनों मिले तो मेरी सारी भय भी जो भी था वो तो पिघल गया। हमें
1: ओके
0: लगा देखो हम औरतें एक ही एक हैं, चाहे वो तंजानिया की हो या भारतवर्ष की हो या कहीं की
1: या
0: भी हो,
1: एब्सोल्युटली।
0: अ वुमन विल नेचुरली काइंड ऑफ यू नो रिलेट टू अनदर वुमन फ्रॉम
1: जी
0: एनी
1: जी
0: पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज
1: जी
0: आर कंसर्न्स आर सो इंटीमेट, आर सो पार्ट एंड
1: जी
0: पार्सल ऑफ आर सेल्व्स।
1: या
0: सो दैट वॉज अ वंडरफुल मीटिंग। एंड देन ऑफ कोर्स दे हैव बीन फ्रॉम द म्यूजिक साइड आई विल नेवर फॉरगेट माई इंटरव्यू विथ द लेट भूपेन हजारिका जी।
1: वाह।
0: दैट वॉज अ वंडरफुल मीटिंग।
1: भूपेन हजारिका जी का हम नाम लेते हैं तो ना एक अलग सा ही जैसे कहते हैं हमारे की वो खलबली सी मच जाती है।
0: जी बिल्कुल।
1: गूजबम्स आ रहे हैं मुझे उनका नाम सुन के। मतलब उनकी उनके गीत से ही एक बदलाव सा हो सकता है,
0: हाँ
1: संगीतज्ञ में
0: बिल्कुल।
1: वो बात होती है। तो आप तो खुद म्यूजिक से जुड़ी रही हैं, मैं सही कह रहा हूं?
0: मैं तो क्या कहूँ, उनके
1: जी
0: सामने तो हम चीटी हैं बिल्कुल। पर उसके साथ भी एक मजेदार इंसिडेंट हो गया
1: वाह
0: वैसे कि मैं खूब सारा तैयारी करके गई
1: जी जी
0: भूपेन हजारिका,
1: जी
0: और उन दिनों वे संगीत नाटक अकादमी के साथ बहुत ही करीब से जुड़े हुए थे।
1: जी
0: तो जब मैं मिली तो मैंने अपने क्वेश्चनेयर उनको दिए कि सर ये क्वेश्चंस मैं पूछने वाली हूँ
1: जी जी
0: एट्सेट्रा। सो ही रेड देम एंड ही स्टार्टेड ऑफ एंड वन आफ्टर द अदर ही वॉज आंसरिंग दोज क्वेश्चंस, गिविंग मी नो टाइम टू आस्क हिम दोज क्वेश्चंस। वेन यू नो द पर्सन हु वॉज द टेक्निकल टीम
1: जी
0: हेड,
1: जी
0: शी लुक्ड एट मी एंड आई लुक्ड एट हर फ्लैबरकास्टेड एंड आई रियलाइज्ड आई हैव टू स्टॉप हिम एंड टेल हिम दैट सर द टेक्निकल टीम हैव देयर रिक्वायरमेंट्स, वी विल आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर इट। ओ इज दैट इट, हम ह्यूमिलिटी टू द कोर। ही सच अच्छा ठीक है शुरू करते हैं दोबारा। ही हैड नो क्वॉम्स नो टेंट्रम्स नथिंग एंड सो आई आस्क्ड हिम एंड देन ही कैरीड ऑन एंड आई हैड टोल्ड हिम दिस प्रोग्राम इज फॉर एक्स नंबर ऑफ मिनट्स। So I don't know if he registered or otherwise. When we it was an hour, it carried on, and I looked at the technical team, and the technical team kind of told me, "Let him speak
1: जी
0: on. We will
1: जी
0: not
1: जी
0: stop him." And they ran out of tape,
1: ओह गॉड।
0: and he hadn't finished. So they put him on directly on so that they could record everything
1: जी
0: of
1: जी
0: his. And in the end, I think he was quite satisfied, extremely pleased and grateful that we had come, etc. But the two of us were sweating with
1: ये
0: this
1: कहाँ कहाँ हुआ
0: exercise.
1: था ये इंटरेक्शन भूपेन हजारिका जी का आपका?
0: ये तो दिल्ली में ही हुआ था।
1: तो आपको क्या ऐसी चीज, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हम ब्रॉडकास्टर्स हैं और आप तो हमारी ये इस ब्रॉडकास्टर हैं,
0: जी
1: मिस
0: नहीं
1: शुभ्रा
0: थैंक
1: मजुमदार
0: यू।
1: की आवाज दोस्तों आप सुन रहे हैं। तो ऐसा क्या भूपेन हजारिका जी के बारे में आपको उस इंटरेक्शन में पता लगा जो आपको पहले नहीं पता था? और शायद होता है ना कई बार जब हम,
0: जी जी
1: जैसे मुझे
0: बिल्कुल
1: बहुत सारी
0: बिल्कुल।
1: चीजें आपके बारे में नहीं
0: यू
1: पती
0: नो
1: थी।
0: आई वी बिल्ड काइंड ऑफ अ फॉल्स आइडिया दैट अ वीआईपी हैज वन हु हैज द राइट टू थ्रो टेंट्रम्स और अ वीआईपी इज वन हु विल कॉल द शॉट्स एंड यू एंड आई कॉमनर्स वी हैव टू फॉलो इन स्टेप विद देम। हियर वाज अ मैन humble to the core, we had interrupted him, told him, look here, it's not like this, you have to follow the rules as we dictate. And there was not a single regret, nothing of the kind. He went out of the way to oblige us. He made us feel that we were the VIPs and he was one who was serving us.
1: Wow.
0: And, you know, I had a lot to learn from that. So That was one, it was a learning lesson for us. There was so much humor because at the end of it, we, the team and I, we were totally exhausted, but so satisfied with what we had, learned and experienced.
1: तो इसी बात पे जब हम भूपेन दा की बात कर रहे हैं तो उन्हीं की आवाज में सुना हुआ एक गीत सुने सब कुछ
0: जी सुने। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए
1: ये फिल्म रुदाली का है और वन ऑफ दी वेरी पॉपुलर ट्रैक्स ऑफ द लेजेंडरी भूपेन हजारिका जी
0: ये जो मैं इंसिडेंट बता रही हूँ ये रुदाली के थोड़ी देर के बाद ही ये हुआ था इनफैक्ट मेरे ख्याल से वो शूट खत्म होते ही ये आए हुए थे दिल्ली किसी कारण से जब हम इनसे मिले तो इट वाज रुदाली ओनली
1: आइए सुनते हैं।

आशियाना सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ एक मैं कहूंगा भगवान ने जिसे हीरे की तरह तराशा है वैसी ब्रॉडकास्टर बैठी हैं, जिनका नाम है मिस शुभ्रा मजूमदार। और आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम आकाशवाणी के उन खास लोगों को आपसे मिलवा रहे हैं जिन्होंने उस गुजरे हुए ज़माने में, कहते हुए ठीक तो नहीं लगता, ज़माना ज़माना होता है, गुजरा क्या और आने वाला, लेकिन उस ज़माने में जहां नींव रखी गई थी प्रेजेंटेशन की, प्रोग्रामिंग की, इंटरैक्शंस की, इंटरव्यू की, तो वहां उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी, जिनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं। मिस शुभ्रा मजूमदार के साथ हम ये वार्ता यहां जारी रखेंगे। छोटा सा मुझे एक कमर्शियल ब्रेक लेना है और जल्द

0: के साथ की आशा कर रहा हूं मैं यहां पर।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: और आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना। मेरा नाम है मुनीश जौली और जैसे मैंने आपसे कहा कि मिस शुभ्रा मजूमदार हमारे साथ मौजूद हैं, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे मुलाकात कर पाया हूं और परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, धन्यवाद कह रहा हूं कि आपसे मुलाकात करवाई। और जब हम रेडियो में आए तो हमें लगा कि एक स्टार कलाकार बनना है, हमने एक बहुत स्टार प्रेजेंटर बनना है। तो जब आपसे मिलता हूं तो लगता है कि बहुत कमियां हैं और आपसे मिलकर उन कमियों को हम भी दूर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी में आपका आगमन कैसे हो, आप कैसे, हाउ डिड यू स्टार्ट डूइंग प्रोग्राम्स फॉर द रेडियो?
1: अरे दैट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, टू कट इट शॉर्ट।
0: जी,
1: माय फादर वाज अ कैजुअल ब्रॉडकास्टर, तो ही वुड डू द ओकेशनल टॉक्स एंड वन डे ही वाज रिवाइजिंग हिज टॉक, लास्ट मिनट रिविजन।
0: ओके।
1: The car was standing in the porch and he was about to go. So, and we children, my friends and I, we were playing Machli Pani, the typical game that little girls play, hopping off a step and onto the ground and then hopping back when we were chased and making a bit of a ruckus. So he was a very lenient parent and he came out, looking serious and glum. We were flabbergasted. But when we learnt the seriousness of it all, that he was going to the radio, I was somehow curious, what is this radio business that he's so concerned about? And then lo and behold, somehow I entered the children's program. And that's how my first association has been, well, with the very early stage of my life.
0: And where was this? Where was, what city was it? Was it Delhi?
1: No, it was in Patna.
0: Patna.
1: So, it had a very, very vibrant radio station.
0: Okay.
1: And a very vibrant station director. Now that I look back, it must have been him who had encouraged people from all walks of life, like my father and the others, to come over and share their views, their talents, etc., over the air. Otherwise, one always thought it was a place only where artists were welcomed. But that is what we learnt about the universality of approach in the broadcasting service of our country, where it kind of touches the lives and hearts of every Indian in the city and in our towns, from small to big. So that was my first association.
0: And were you very excited to be a part of the radio and air conditioned studios?
1: I think I was
0: and
1: too young. It was very, I was very happy to be there.
0: Okay.
1: I didn't even understand that I was being recorded.
0: Oh.
1: But the excitement and then somebody, an elder, speaking to us and telling us to do this.
0: The
1: usual children's program. So if we got a chance to even raise our hands and say a yes, that was excitement enough for the day and onwards.
0: So मैं अपने listeners को याद दिला दूं कि दोस्तों आप मिस शुभ्रा मजूमदार की आवाज सुन रही हैं, one of the ace broadcasters of आकाशवाणी, और आकाशवाणी के 90 साल के उपलक्ष्य में हमारे जो stalwarts हैं, हम उनकी मुलाकात आपसे इस प्रोग्राम के जरिए करवा रहे हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में कुछ लिखना है, कुछ अपना सुझाव या आप अपने कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, तो मैं एक नंबर दे रहा हूं, वहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस नंबर पे आप अपने भाव और अपनी बातें कुछ मैडम शुभ्रा मजूमदार से पूछना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो हमारा नंबर है 9868107070 9868107070। व्हाट्सएप कीजिए इसमें, और स्टूडियो में मेरी बाई तरफ कंप्यूटर है और वहां पे एक फोल्डर खुला हुआ है व्हाट्सएप का, वहां पे आपके मैसेजेस आ जाएंगे, आपकी बातें सुनते हैं, क्योंकि जो जो सुनने को मिलेगा मेरे को सीखने को मिलेगा। शुभ्रा मैम,
1: वेल पता नहीं कौन कितना सीखता है नहीं सीखता है, पर ये मौका बहुत अच्छा है और ये प्लेटफॉर्म, तो मैं कहती हूँ इसकी आउटरीच जो है इससे और ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है कि हम डायरेक्ट अपने श्रोताओं के साथ मेल मिलाप करें, उनके विचारधारा जाने, उनके साथ हम अपनी राय शेयर कर सकें, तो इससे अच्छा तो कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं मेरे ख्याल से।
0: आपने कुछ देर पहले संडे का जिक्र किया, क्योंकि जब हम भी बच्चे होते थे तो ये होता था कि सिंस आई एम हाफ बंगाली हाफ पंजाबी, तो हमारे दोनों कल्चर्स घर पे चलते थे. तो संडे के दिन ये होता था कि हैवी लंच इज द रॉयल लंच, डिनर भले ही लाइट हो जाए. और उस दिन खाने पीने के साथ रेडियो चलता रहता था. आप भी उस एरा से शायद वाकिफ होंगी कि हाँ, वाकई में आपने थोड़ी देर पहले कहा भी,
1: वक्त भी यही था कि हमारा ये था कि हमारे वक्त बुजुर्ग थोड़े अलग तरह के होते थे. कहते थे भाई खाना पहले खत्म करो उसके बाद रेडियो सुनो.
0: मांगशो भात ऑन संडेज,
1: आई डोंट रिमेम्बर क्या होता था.
0: Right then,
1: exactly, मांगशो भात होता था या कुछ और होता था. But whatever it was, we would finish it early because the children's program over AIR Calcutta used to begin at about 12:30 or so.
0: On Sundays?
1: On Sundays.
0: Wow.
1: And that was the time when we sat back and listened, because the start of the program was wishing everybody on their birthdays.
0: Oh.
1: So, and that was a great feeling that...
0: आपको बर्थडे विश किया रेडियो में किसी ने कभी?
1: वेल शायद याद नहीं है, पर किसी का भी हो, बर्थडे विशेस इज बर्थडे विशेस.
0: तो आपने तो बहुत तरह के प्रोग्राम्स किए. इससे पहले कि हम आपके कुछ एक्सपीरियंसेस जाने जो आकाशवाणी में रह के एज अ ब्रॉडकास्टर आपने किए, मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं, हमारे लिसनर्स को बताएं कि किस तरीके की यू डिड अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द रेडियो. Would you like to share some of them with us?
1: Yes, before I proceed further, I must say face-to-face interviews were the most rewarding. And one of the very enlightening ones was with Navtej Sarnaji.
0: Okay.
1: He is a prominent writer on Indian historical figures. And I had the privilege of interviewing him after he had finished his first historical account of Rani Jindan. This is Maharaj Duleep Singh, and I was interested because of the Duleep Singh had been robbed of his, I would say robbed of the Kohinoor diamond by the British, which was put in the, he was persuaded to grant it, give it over to Queen Victoria, and it now sits in the royal crown, etc. So to put it bluntly, it is something which was taken away from us in India, and it's there in the crown, etc. And Rani Jindan was his mother. Then the British made sure they had separated mother and son.
0: Oh.
1: And, yes, and brought him up in India first, then took him to England, etc. Well, that's a story by itself.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: So the poor Rani and her...

0: डॉक्टर शुभ्रा मजुमदार हमारे साथ आशियाना में आज हैं, क्योंकि घड़ी बड़ी तेजी से भाग रही है और मुझे पता भी नहीं लगा कि 40 मिनट का जो समय आपके साथ बीत गया। दैट्स व्हाट हैपेंस यू नो, जब एक बहुत ही मैं कहूँगा एक अट्रैक्टिव लेडी सामने बैठी हूँ, एक ग्रेट ब्रॉडकास्टर मेरे सामने बैठी हैं, वो लोग जिन्होंने नींव रखी आकाशवाणी की, आप तक उनकी आवाज़ पहुँच रही है, तो मैं कहूँगा कि बड़े किस्मत वाले हैं जो इनकी आवाज़ सुन रहे हैं। कुछ लोग हमें यहाँ व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं, शुभ्रा जी अगर आप कहें तो जल्दी जल्दी वो भी लेते रहें साथ
1: जी,
0: में
1: जी, बिल्कुल।
0: तो नितेश अरोड़ा हैं, वो लिख रहे हैं कि आई एम डिलाइटेड टू हेयर दिस प्रोग्राम, आप अभी भी क्या आकाशवाणी सुनती हैं और क्या आप मिस करती हैं? मैं एयर पे आजकल नहीं आ पाती।
1: सुनती तो हूँ, मिस करना तो खैर अगर मैं सच कहूँ तो हर रोज मिस करती हूँ। एक तो है ब्रॉडकास्ट करना, दूसरा है उसके आगे पीछे का जो हिस्सा होता है ना, व्हेन यू सिट इन द एंटी रूम सो टू स्पीक एंड डिस्कस योर प्रोग्राम, व्हाट यू आर गोइंग टू शेयर विथ योर लिसनर एटसेट्रा, दैट इज अ वंडरफुल फीलिंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हेन यू फिनिश विद इट। एक तो यू नो देयर इज अ काइंड ऑफ रिलीफ कि चलो खत्म हुआ, सही हुआ, और दूसरा ये है कि भाई सुनने को मिले कि बहुत ही अच्छा हुआ है। आखिर तक हम सब इंसान हैं, तो भाई कोई तारीफ करे तो उसका तो अलग ही मजा है।
0: अच्छा एक बात सच सच बताइएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर से जुड़ी एक बात कह रहा हूँ, जब आपको लोग कहते थे कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ तो आपका जवाब क्या होता था?
1: कई बार मैं विश्वास करती थी, कई बार नहीं। इसके साथ भी मैं एक कहानी सुनाऊं?
0: जी जी प्लीज।
1: एक बार एक प्रोग्राम हो रहा था, मेरे से पहले उनका था, तो वो लेडी जो थी थोड़ी सी हैवी थी, मतलब वैसे शक्ल सूरत से थोड़ी भारी सी थी, सूरत से नहीं वैसे। तो जी जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे
0: जी,
1: वो इतनी तारीफ करने लगे, मोहतरमा आप ऐसी हैं, मेरे सामने श्रोताएं, आप अगर इनको देख पाए। मैं मन ही मन सोचूं कि देखो कैसी मनगढ़ा बातें हैं, हाँ आवाज बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन शक्ल सूरत भाई थोड़ी तो सच्चाई होनी चाहिए, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए ये यार वालों की।
0: पर आप इशारा मेरी तरफ तो नहीं कर रही कुछ, मैंने सच
1: नहीं,
0: बोला
1: नहीं, भाई हम तो क्या कहें, कहना नहीं चाहिए सबके सामने, ये पब्लिक प्रोग्राम है। नहीं सच कह रही हूँ,
0: ये होता है जो आप बता रही है ना, ये होता है ब्रॉडकास्ट।
1: आवाज उनकी बहुत अच्छी थी सुनेला, और वो जो बोल रही थी उसका तो खैर काफी था, इम्पोर्टेंस था, गहराई थी, सब कुछ था, लेकिन अब शक्ल सूरत तो अपने हाथ में होता नहीं है, पर उसकी तारीफ अगर इस तरह कोई करे तो क्या कहें। पर
0: आपके साथ और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए आपकी ब्रॉडकास्टिंग करियर में, आपने
1: एक अचानक याद आया
0: जी,
1: मुझे
0: जी,
1: ये मुझे शेयर करना है इफ यू डोंट माइंड।
0: नो नो प्लीज, इट्स योर शो, आपका प्रोग्राम है
1: जी। ये थे एक वीआईपी, इनफैक्ट आई विल मेंशन हिम, ही वाज देन डीजी ऑफ द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो हमारे मॉडर्न आर्ट के सबसे बड़ा संस्था है। तो वो आए हुए थे मेरे साथ वार्तालाप करने, एंड वी वर सिटिंग टुगेदर। सो एआईआर इज अ वंडरफुल होस्ट, द मोमेंट यू हार्डली गेट टाइम टू सिट बैक इन योर चेयर प्रायर टू एंटरिंग द स्टूडियोज, व्हेन द टी ट्रे अराइव्स, टी और कॉफी और व्हाटएवर इट इज पाइपिंग हॉट, पुटिंग यू एट ईज। सो श्योर एनफ दिस हैड अराइव्ड and we were sipping away to glory and suddenly our the gentleman concerned, or he had stepped out for a minute, we were together, when the tea boy arrived, the one who had brought in the tea tray, and he says, ha abna itne paise hue dena jaldi. Not even to me, straight away to the guest speaker. Itne paise hue. So, you know, he must have faced several such situations, being a Sarkari Babu himself. तो
0: जी जी.
1: अच्छा देते हैं, अभी रुक जाओ थोड़ा, देते हैं. हाँ दे दो, हमें ले जाना है, खत्म हो गया ना चाय.
0: आपके क्या जादू है आपके अंदर, कितने दिनों के बाद हंसाया आपने, कितने दिनों के बाद हंस रहा हूँ मैं. वाह, ये होता है वैसे, ये तो आप कर्टन के पीछे जो होता है उनकी बात ही बता.
1: इट इज मोर इंटरेस्टिंग देन ऑन द एयर. तो ये टी बॉय वाली कहानी तो
0: जी, पर आकाशवाणी की चाय खास है ना.
1: बिल्कुल,
0: चाय पे चर्चा तभी तो होती है, और प्रधानमंत्री जी ने भी आकाशवाणी का अहमियत समझा, बिकॉज वो भी उस एरा के हैं, वो जानते हैं कि कितनी मेहनत आकाशवाणी ने की है 90 सालों में, तभी वो अपनी मन की बात कहने यहाँ पे आ गए. आपको हाँ, कैसा लगा जब आपको
1: तो
0: पता लगा कि
1: ये जो प्लेटफॉर्म है ना
0: जी जी,
1: इसकी आउटरीच तो किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता.
0: पर आपके एरा में कभी ऐसा हुआ कि कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी रेगुलरली आकाशवाणी में आके अपनी मन की बात करते हैं या कुछ ऐसा कुछ करते हैं?
1: देखिए वो जो नेशनल ब्रॉडकास्ट होते हैं ऑन रिपब्लिक डे वगैरह,
0: वो स्पीचेस होते हैं,
1: वो होता ही है. और खासकर जो ऑफिशियल डेज होते हैं तो वो डिपार्टमेंट से कंसर्न लोग आकर बोलते थे. और एक और है फौज के तरफ से भी लोग आते थे, अभी भी आते हैं. और ये तो पब्लिक तो जानना चाहती है. इनफैक्ट आई एम अ ग्रेट वन टू लिसन इन, इवन इफ देयर इज अ आर्मी वाइफ स्पीकिंग एटसेट्रा, आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू लिसन. आई एम एंड आई एम श्योर हंड्रेड्स ऑफ लिसनर्स लाइक दैट.
0: तो मैं आपको इसी स्टूडियो एक जल्दी से एक इनपुट दे देता हूँ आपको, हमारे जो श्रोता है उनके लिए भी, कि अभी आज 4 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारा एक स्पेशल शो जाता है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए, विच इज कॉल्ड संदेश टू सोल्जर्स. और आपको सुन के बहुत खुशी होगी क्योंकि आपने एक अरसे तक आकाशवाणी के साथ जो प्रसारण किए हैं, ब्रॉडकास्टिंग की है, तो जितने भी लिविंग पीवीसीज हैं वो हमारे शोज में आ चुके हैं, वॉर हीरोज यहाँ पे आ चुके हैं. एंड जी हाँ, एंड आई रिमेम्बर कि एक शो चल रहा था संदेश टू सोल्जर्स का, और उस शो में हमारे एक जाबाज एयर इंडियन एयरफोर्स के पायलट हु शॉट डाउन द फर्स्ट सेबर जेट अलॉन्ग विद हिज ब्रदर, कीलोर ब्रदर्स की बात होती थी. तो एयर मार्शल डेंजिल कीलोर भी शो में आ चुके हैं, तो वो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक वो खास शो होगा. और आज उस शो में मेजर एस के यादव हैं जो एनडीए गए, और उसके बाद जो हमारी टैंक रेजिमेंट है द डेकन हॉर्स उससे जुड़े हुए थे. सो दैट्स गोना बी एट 4 PM. बट वेरी क्विकली, क्योंकि हमारे पास समय निकलता जा रहा है, कुछ और इंटरेस्टिंग बताइए ना, कुछ और किस्सा आपके साथ हुआ हो आकाशवाणी में ड्यूरिंग अ ब्रॉडकास्ट, एनीथिंग विच इज मेमोरेबल ड्यूरिंग

0: I started off very
1: जी
0: enthusiastically.
1: जी
0: The first bite I took, then quickly went out, checked. Yes, the recording had come, it
1: जी
0: was proper, etc. I became overconfident,
1: वाह
0: as usual, after one victory. So,
1: जी
0: then I came again. And it carried on, and I moved from various venues. And
1: राइट
0: the last venue that I went to was a recital carrying on by being done by late Pandit Bhimsen Joshi. So I stopped to listen, and he was at the end of the program. So it was his usual signature bhajans that he would
1: जी
0: sing,
1: जी
0: one of them. I took a large chunk of it. And without checking or anything, I returned back to the studios with
1: ओके
0: that. And the next day, when it was about to be uploaded, the final checking was
1: जी
0: being done. Lo and behold, everything else was properly taken in, but this last one, Bhimsen Joshiji's recording, was like a whisper.
1: ओ
0: So I had somehow not done it properly.
1: जी
0: And I must say, the efficiency of AIR and its officials,
1: जी
0: they put it, I thought that is the end of the show. And now onwards, nobody will call me to AIR because I had created
1: फिर
0: such
1: से
0: a huge blunder. But then this gentleman put it on highest volume, something, he said, an abominable figure, say 500 or something counts. And he put it, and it was the same level as the
1: वाह
0: other. So
1: पर ये
0: that,
1: डर लगा रहता है ना,
0: oh,
1: सब प्रेजेंटर्स को
0: बहुत,
1: पता नहीं दोबारा बुलाएंगे या नहीं
0: हाँ
1: बुलाएंगे,
0: बिल्कुल
1: आपको भी
0: बिल्कुल,
1: लगता
0: बहुत डर था कि बस खत्म, यहाँ तो मेरी और होएगी नहीं, यहाँ दार निकलनी है.
1: ओके तो मैं जल्दी से मैसेजेस पढ़ लेता हूँ। सूरज दिल्ली से लिख रहे हैं, आपको विश करते हुए कह रहे हैं कि 90 साल हो रहे हैं आकाशवाणी के लिए, तो अपनी स्किल को इम्प्रूव करना हो तो क्या किया जाए, वो आपसे जानना चाह रहे हैं। साथ ही साथ दिनेश कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ सुन के उनको बहुत अच्छा लग रहा है और आपको प्रणाम कर रहे हैं और आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं।
0: ओहो,
1: शैलजा
0: ये
1: नीमराना से कह रही हैं कि आपने अब तक किया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का प्रोग्राम जो भी है वो, अगर कोई टॉप में अगर आप रखना चाहें तो वो कौन सा होगा। एक और मैसेज आया है, नाम इन्होंने लिखा नहीं है, बट बहुत खुश हैं आपकी आवाज सुन के। सिलचर आसाम से मीरा जी लिख रही हैं एंड शी सेइंग कि आकाशवाणी के बारे में आपसे जो पुरानी बातें सुनने को मिली हैं दैट इज लाइक रोशोगुल्ला, मिष्टी मिष्टी।
0: Oh, how nice to hear that.
1: या
0: Well, it was not mishti at that stage. At that stage, it was बहुत ही कड़वा, क्यों ना मैं बहुत टेंस रहती थी.
1: ओके
0: उस वक्त लगता था बस ये आखिरी बार बुला रहे हैं, ये पता नहीं क्या सुनने को मिलेगा. अभी ये कहेंगे चलिए, आप कान पकड़ के कहेंगे स्टेशन डायरेक्टर के कमरे में चलिए, वहां आपकी सुनवाई होगी.
1: ये तब भी होता था, यानी हम लोग को
0: तो
1: जो डर लगता है वो सही है।
0: हाँ, तो खैर ऐसा कुछ कभी भी नहीं हुआ, सपने में भी नहीं हुआ. और आप सबको बहुत ही धन्यवाद कि आप टाइम निकाल के सुन रहे थे और सब कुछ बताया आपने. तो ये प्रोत्साहन भी मेरे लिए बहुत बड़ी मायने रखती है. थैंक यू एवर सो मच, इट
1: सो
0: वाज
1: स्पोर्ट्स की
0: वंडरफुल.
1: कमेंट्री करता हूँ ना तो टाइम देखते रहना, मुझे 8 मिनट है, मैं कोई म्यूजिकल ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे आपकी बातें सुनना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताइए, जैसा एक हमारे कॉलर ने व्हाट्सएप मैसेज भेज के आपसे जानना चाहा, आई
0: जी
1: मीन आई बिकेम फॉन्ड ऑफ यू द मोमेंट आई स्टार्टेड लिसनिंग टू यू,
0: नो,
1: लेकिन यू नो यू नीड डू यू नीड अ गुड अकेडमिक बैकग्राउंड, बिकॉज लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रॉडकास्टिंग। आप भाषा के साथ खिलवाड़ प्रसारण में नहीं कर सकते, ब्रॉडकास्टिंग में, स्पेशली रेडियो में।
0: देखिए, भाषा तो है ही,
1: जी
0: पर वो नेचुरल होना चाहिए. आप लिख पढ़ के जैसे परीक्षा में सवाल जवाब कर रहे हैं,
1: जी
0: वो नहीं होना चाहिए. इट
1: ओके
0: मस्ट कम फ्रॉम विद इन यू, फ्रॉम योर हार्ट. बेशक आप लड़खड़ाएं बीच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट बी योर सेल्फ, स्पीक द लैंग्वेज एंड द वर्ड्स दैट यू आर यूज टू, नॉट समथिंग आर्टिफिशियल दैट यू आर पुटिंग ऑन.
1: ओके
0: एंड यस, अनदर थिंग, रिसर्च प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं।

0: Okay.
1: Do not take up a topic that you have not understood or that you are not familiar with, etc. But
0: Mehnat
1: at the same time, do not be proud that you know more than your listener.
0: Hmm.
1: Your listener will know more than you.
0: Yes.
1: It's unfortunate ki ye radio ke madhyam se hum aamne saamne ek dusre ki shakal nahi dekh sakte par ek dusre ki feeling to samajh sakte hain na.
0: Wah.
1: वो तो होगा ही.
0: क्या बात है. माफ कीजिएगा, आप बहुत बड़ी हैं पर फिर भी वाह निकल रहा है. मतलब मैं उस काबिल भी नहीं हूँ कि वाह वाह कर पाऊँ. मतलब आप
1: ये बात नहीं जी है, पर ये सिंसेरिटी बहुत जरूरी है. अगर ये हो किसी में और ये ह्यूमिलिटी भी हो
0: जी,
1: और आप अच्छी तरह अपने आप को तैयार करके
0: जी,
1: करें
0: जी,
1: और शेयर करें. जैसे कोई आपके सामने छोटा बड़ा कोई करीब
0: जी.
1: आपके साथ बैठा हुआ हो और उसके साथ आप बात कर रहे हैं, इस तरह से आप अपने लिसनर को अप्रोच कर रहे हैं तो दोनों को ही खुशी होगी.
0: पता है, आई एम अ डिवोटी ऑफ माँ. मैं भगवती की
1: जी
0: उनको अपने आप को समर्पण कर चुका हूँ
1: जी.
0: यू आर गॉड सेंट, यू आर सेंट बाय हर कि आपसे मुलाकात हो. कितनी अच्छी बातें आप बोल रही हैं.
1: फोल्डेड हैंड्स आई एम सेइंग इट वाज सो लवली टू स्पीक टू यू
0: एंड
1: टू गेट इन टच विद माय वैल्यूड लिसनर्स.
0: बट वी हैव 5 मोर मिनट्स, वी आर नॉट गोइंग अवे नाउ. आप कुछ और हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, कुछ और खास? आपने प्रोग्राम्स बहुत सारे किए हैं, रेसिपीज के ऊपर प्रोग्राम किए, आप लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, इंडिया टुडे के साथ आपने गुड हाउसकीपिंग्स पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं. मतलब वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स एक्सेप्ट स्पोर्ट्स. वी आर वेरी ग्लैड आप नहीं आई, नहीं तो हमारा पता कट जाता.
1: देखिए स्पोर्ट्स की तो आई एम नॉट अ फैन, आई एम सॉरी, पर ये मुझे स्वीकार करना पड़ेगा
0: जी.
1: कि रेडियो ने मेरे से स्पोर्ट्स भी करवाया. ये आई मस्ट टेल यू, एंड ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक कॉमनवेल्थ गेम्स.
0: ओह वंडरफुल, दिस वाज 2010.
1: यस.
0: ओह वंडरफुल, कुछ बताइए ना उसके बारे में.
1: हाँ, ये ऐसे था
0: हाँ.
1: कि देयर वाज अ स्लॉट फिक्स्ड 4-4 मिनट का, ज्यादा नहीं
0: जी, जी.
1: और उसमें किसी भी एक वेन्यू के बारे में
0: जी,
1: उसका जहाँ कुछ हो रहा हो
0: जी,
1: उसके बारे में बोलना था
0: जी.
1: तो एज यूजुअल आई स्पोक लाइक आई स्पीक नॉर्मल स्पीड एटसेट्रा. नाउ 4 मिनट्स इज अ वेरी वेरी कॉम्पैक्टेड टाइम लिमिट, एंड आई हैड टू स्पीक ऑन दैट स्पॉट कीपिंग द टॉपिकलिटी ऑफ इट. यू नो आई कुडंट डू की हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ समझा रहे उस वक्त, जस्ट टॉपिकलिटी एटसेट्रा वेन्यू के बारे में. So I remember the gentleman with me, halfway through he stopped me and was very irritated. I was also upset. I said, ek toh mere se sports karwa rahe hain, which is not my field, not that I want to do it.
0: Okay.
1: And second thing is, now he stopped me in between, so I will have to redo it.
0: Mm-hmm.
1: For me, it was like, kadvi dawai. किसी हालत में निकल लो और जाओ.
0: थैंक यू कॉम्प्लीमेंट देने के लिए स्पोर्ट्स कमेंटेटर को. थैंक यू जी जी.
1: आई एम सॉरी, आई एम बीइंग फ्रैंकली, आई डोंट मीन
0: एनी. वार्ता का यही तो मजा है ना. नहीं जी,
1: ऑफेंस स्पोर्ट्स कमेंटेटर तो सराखों पे
0: जी,
1: बिकॉज दिस इज समथिंग आई कैन नॉट डू
0: जी.
1: He said, so I thought I was making a mistake. शायद मैं कोई rules game का इधर उधर कर चुकी हूँ. He said, no, you're so slow, you're doing a sports commentary, thodi jaan laiye,
0: jaan laiye,
1: so do it fast
0: ji.
1: And I raced through the script, you know, at a speed almost breathlessly, and at the end of it he says, oh, that was very nice, bada speed acha tha sab kuch, you put in everything into it and all that. I thought, well, Commonwealth Games happens once in 4 years. Next Commonwealth Game and I will be far in between.
0: अगले महीने होता तो फिर तो.
1: So that is my only association with sports commentating.
0: Right. हमारे पास ना शुभ्रा जी समय बहुत कम है, लगभग 2 मिनट बचे. मैं चाहता हूँ कि आप चलते चलते इन अपने जो, वैसे बोलना तो अच्छा नहीं लगता क्लोजिंग कॉमेंट्स, बट देन एक प्यारा सा गीत मैं चला रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपकी इस मीठी आवाज से मैं चाहता हूँ कि आपके जितने भी सुनने वाले हैं हर एज ग्रुप के, आप उनको कुछ कह के जाइए जो उनकी जिंदगी संवार दे.
1: एक चीज मैं कहूंगी
0: जी.

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। बेहतर स्वास्थ्य के लिए यूं तो शरीर के हर अंग का सुचारू रूप से काम करना जरूरी है। बात अगर श्वसन प्रणाली की करें तो ये शरीर का वो हिस्सा है जिससे सांसों का सीधा संबंध है। और आज हम बात करेंगे खास विषय पर, अस्थमा, एलर्जी और इन्फेक्शन से संबंधित परेशानियों की। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर एस के छाबरा, जो हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्लोमोनोलॉजी स्लीप क्रिटिकल केयर प्राइमस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और फॉर्मर डायरेक्टर प्रोफेसर वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हमारा सबसे पहला सवाल है कि अस्थमा, एलर्जी और संक्रमण यानी इन्फेक्शन में क्या अंतर है, क्योंकि तीनों कहीं ना कहीं हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हैं।
3: जी, ये बहुत जरूरी है कि इनका हम अच्छी तरह से समझ लें कि ये तीन जो टर्म्स हैं और इकट्ठी आज क्यों ली गई हैं।
2: जी,
3: वैसे तो तीनों अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। जैसे अस्थमा है वो एक सांस की बीमारी है।
2: जी,
3: एलर्जी एक कारण है। जैसे हमारे शरीर में कोई भी कण जैसे हम सांस के जरिए लेते हैं, उससे अगर रिएक्शन हो जाए तो वो जो सिम्टम उत्पन्न होते हैं उसको एलर्जी कहते हैं। और इन्फेक्शन होता है जो कीटाणु होते हैं, जिसको हम बैक्टीरिया या वायरस, वो अगर संक्रमण करता है, हम उसको इनहेल करते हैं तो वो इन्फेक्शन होती है। अब अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि सांस कभी उभरता है कभी कम होता है, ये आजीवन रहने वाली बीमारी है। हालांकि इसका बहुत अच्छा उपचार अब हमारे पास है।
2: जी।
3: एलर्जी एक टेंडेंसी होती है, कभी लक्षण हो सकते हैं अगर वातावरण उस तरह का है। अगर वातावरण बिल्कुल साफ है व्यक्ति को कोई भी सिम्टम्स नहीं हो सकते। और इन्फेक्शन एक शॉर्ट टर्म इलनेस है, हफ्ते की, 10 दिन की, 15 दिन की, कुछ इन्फेक्शन थोड़ा लंबा चलते हैं। तो ये इनका जो नेचर है तीन टर्म्स का, ये हमने समझ लिया कि ये अलग है। एलर्जी से अस्थमा हो सकता है और अस्थमा के पेशेंट में भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये जुड़े हुए विषय हैं तीन।
2: जी, तो सुना श्रोताओं आपने कि कितने अहम विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस बेहद खास विषय पर हम आपसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे। पहले सुन लेते हैं ये गीत।
3: चलिए।

0: श्रोताओं, फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। और आज हम इस बेहद खास विषय को लेकर आए हैं आपके सामने, वो है अस्थमा, एलर्जी और इन्फेक्शन से संबंधित। और इस पर हमें बहुत खास जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एस के छाबरा। डॉक्टर साहब, बात अगर अस्थमा की करें तो अस्थमा क्या है और ये कितने प्रकार का होता है?
1: अस्थमा सांस की बीमारी है।

0: और इस बीमारी का शुरुआत
1: जी
0: बचपन में आमतौर पे होती है, लेकिन ये 2 साल 1 साल की उम्र से लेकर 80 साल तक कभी भी शुरुआत हो सकती है। ज्यादातर केस जो है बचपन में या मिडिल एज जिसे हम कहते हैं 20-25 साल तक हो जाती है। तो इसके लक्षण समझ लें, इसमें सांस की तकलीफ होती है, सांस में सीटी जैसी आवाज आती है। ये लक्षण खासकर जब मौसम बदलता है या कहीं धूल या धुआं हो
1: जी,
0: या भागने में या कभी जुकाम हो जाए उसके बाद, यानी कि ये ट्रिगर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 12 महीने एक जैसी तकलीफ नहीं होती, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, साथ में खांसी भी होती है कभी बेलकम आती है। तो ये जो लक्षण है कई साल का पैटर्न बन जाता है कि इस मौसम में तकलीफ ज्यादा होती है बाकी में कम होती है। कुछ मरीज हैं जिनको साल में 1-2 बार तकलीफ होती है, कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको कि रोज ही तकलीफ होती है। बहुत वाइड इसका स्पेक्ट्रम है और ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। बच्चों में हमने ये अनुमान लगाया है अध्ययन करके कि करीब 10% बच्चों को दमे की तकलीफ है, लेकिन हर 10वें बच्चे को।
1: डॉक्टर साहब, इसके कारण क्या होते हैं?
0: कारण एक तो इनहेरिटेंस है कि एलर्जी जिसको है उसमें दमा होने के चांस ज्यादा होते हैं। अब एलर्जी की भी बात कर ले, एलर्जी से जुकाम भी हो सकता है, एलर्जी से स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी से दमा हो सकता है। कुछ मरीज हैं जिनको ये तीनों ही लक्षण साथ साथ होते हैं, या कुछ में पहले जुकाम होता है फिर सांस की तकलीफ होती है, या पहले एलर्जी स्किन की होती है फिर सांस की तकलीफ हो जाती है। तो एलर्जी एक इसका मुख्य कारण है और जो फैमिलीज में चलता है। दूसरा, कोई इन्फेक्शन हो जाए किसी को, जैसे जुकाम हो, कॉमन कोल्ड जिसे हम कहते हैं, उसके बाद दमा उभर सकता है। फिर वातावरण अगर हमारा प्रदूषित है या उसमें कुछ ऐसे कीटाणु हैं जो कि माफिक नहीं आते हैं, उससे भी लक्षण उभर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में कारण का पता नहीं होता, तो बिना कारण जाने हुए भी इसका रिकॉग्निशन होता है, डायग्नोसिस होता है, इलाज होता है, और कारण मिलते हैं तो उसमें एक फायदा है कि हम उसको चीज को अवॉइड कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर है, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो,
2: ओम शांति
1: जी।
2: पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ
1: जी।
2: मुझे पूछना है कि ब्रोंकल अस्थमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या अंतर है और स्लीप एपनिया से इसका क्या रिलेशन है? ओम शांति।
0: अच्छा, आपने जो है सवाल तीन हो गए। दमा के बारे में तो हमने अभी जिक्र कर दिया कि दमा क्या होता है। जो ब्रोंकाइटिस है ना, वो जब खांसी और बलगम ये मुख्य लक्षण होते हैं उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं, और जब ये हर साल 2-3 महीने चलता रहता है तो उसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और ये ज्यादातर बहुत ज्यादा धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में देखा जाता है, लेकिन जो हमारी महिलाएं हैं खासकर ऐसे इलाकों में जहाँ पे कि गैस नहीं है और वो अभी भी चूल्हा जलाती हैं, उपले जलाती हैं, लकड़ी जलाते हैं, धुआं जो है वो सांस के जरिए जाता है, तो उनमें भी ब्रोंकाइटिस देखा जाता है। तीसरा, स्लीप एपनिया। ना, स्लीप एपनिया एक विशेष बीमारी है जो कि मोटापे के साथ जिसका एसोसिएशन है। ये व्यक्ति आमतौर पे 100 किलो, 125 से 150 किलो का वजन होता है, तो ये जब सोते हैं तो इनकी सांस की नली जो बंद हो जाती है। इन व्यक्तियों को खराटे बहुत आते हैं और अचानक खराटे थोड़े सेकंड के लिए बंद हो जाते हैं, फिर से होते हैं, तो मरीज की जो नींद है टूटती रहती है। इस तरह वो अच्छी तरह से सोता नहीं है, तो दिन में भी बैठे बैठे सोता जाता है। तो दिन में बहुत ज़्यादा सोना, कमजोरी महसूस करना, सुबह भी फ्रेश ना उठना और खराटे आना और मोटापा, ये लक्षण है स्लीप एपनिया के।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज पे, और अमित दिल्ली से लिख रहे हैं कि मुझे जुकाम बहुत रहता है, कुछ ठंडा खाते ही जुकाम हो जाता है, धूल मिट्टी से भी होता है, क्या करूं?
0: हाँ, तो जैसे हम एलर्जी की बात कर रहे थे कि एलर्जी से दमा भी होता है, एलर्जी से स्किन प्रॉब्लम भी होती है और जुकाम भी होता है, तो ये इनके लक्षण जो है एलर्जी के लक्षण लगते हैं। और जहाँ धूल होगा, धुआं होगी या मौसम बदलने में, तो अचानक छींकें आती हैं सबसे पहले, और छींकों के साथ साथ नाक से पानी आने शुरू हो जाता है। तो ये लक्षण बताते हैं कि एलर्जी का केस है, और आज की तिथि में इसका डायग्नोसिस भी हो जाता है और इलाज भी हो जाता है। इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है, आप निराश ना हो, डॉक्टर को दिखाएं, जरूर इलाज हो पाएगा।
1: डॉक्टर साहब, इसी बीच एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल भी। हेलो।
3: हेलो
1: जी।
3: जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार
3: मैम। अमित त्यागी बोल रहा हूँ आपपुर यूपी से
1: जी।
3: मेरा सवाल ये है मैम, जैसे कि अस्थमा के मरीज घर पे रहते हैं
1: जी,
3: तो उन्हें घर पे रहकर किन चीजों से बचना चाहिए ताकि उन्हें एलर्जी ना लगे?
0: घर पे जो प्रदूषण की चीजें होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो उसमें इंडोर कुकिंग है
1: जी।
0: खासकर अगर आपको पाइप्ड गैस या लिक्विड पेट्रोलियम

0: गैस नहीं है, तो जहाँ चूल्हे जलते हैं जिन घरों में और घर के अंदर ही किचन होती है, वहाँ ये प्रदूषण बहुत ज्यादा, बल्कि जो बाहर का जो हमारा प्रदूषण की मात्रा है ना, उससे कहीं अधिक होता है। तो वो एक धुआं जो है वो एक मुख्य कारण होता है लक्षण को उभारने का। दूसरा, हम कभी कभी ये मच्छर भगाने के लिए वो कॉयल जलाते हैं, उससे भी धुआं उत्पन्न होता है। तीसरा, अगर डस्टिंग होती है, जैसे घर में झाड़ू पोंछा लगता है, अगर ड्राई डस्टिंग होती है तो उसमें धूल काफी उठती है, तो उससे भी दमे के लक्षण उभरते हैं। कुछ मरीजों को एक हाउस डस्ट माइट, एक खास तरह का कीटाणु होता है जो कि हमारे जो मैट्रेस होती है उसके अंदर वो रहता है, खटमल की तरह ही वो होता है, तो उससे भी दमे की जो बीमारी है वो बढ़ने के रिस्क रहते हैं। घर में कॉकरोच, मक्खियां, इनसे भी दमा होने के रिस्क रहते हैं। तो ये कुछ पदार्थ, ये चीजें हैं जो हमारे वातावरण में, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हटा सकते हैं ताकि दमे के लक्षण ना उभरे।
1: जी डॉक्टर साहब, रिया लिख रही हैं उत्तराखंड से कि इनकी एज 23 साल है और ये लिखती हैं कि मुझे कभी कभी ब्रीदिंग नहीं आती बिल्कुल भी, ये ठंड में ज्यादा होता है बट गर्मी में भी होता है, कभी हाइट पे जब ये जाती हैं तब भी ऐसा इनके साथ होता है और कभी कभी एक नॉस्ट्रिल से सांस आती है और दूसरी से नहीं, और अगर ये बढ़ जाए तो इनको हेडेक होने लगता है, क्या कुछ प्रिकॉशन ये ले सकती हैं या क्या?
0: देखिए, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि जो इनके लक्षण हैं वो किस वजह से हैं उसका एक डायग्नोसिस होना चाहिए कि दमा है कि नहीं है।
1: जी।
0: और दमे के लिए खासकर जिस वक्त हमारे लक्षण चल रहे हों, जिन दिनों में, उन दिनों में सांस की एक प्रक्रिया होती है जिसे लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं।
1: जी।
0: वो किया जा सकता है और उसे कंफर्म हो जाता है कि इस व्यक्ति को दमे की तकलीफ है।
1: जी।
0: जब कंफर्म होता है तो उसके बाद हम इलाज प्लान कर लेते हैं। अब इनके लक्षण अगर किसी विशेष मौसम में होते हैं तो उस दौरान इलाज किया जाता है, अगर लक्षण सारे साल ही हैं तो एक अलग तरह से इलाज होगा। तो डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली सांस फूलना, सांस के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो हर सांस बीमारी जो है वो दमे की वजह से नहीं होती, हालांकि ज्यादातर केसेस दमे के होते हैं। तो डायग्नोसिस वो सबसे जरूरी है, उसके लिए लंग फंक्शन टेस्ट बहुत जरूरी है।
1: जी, तो सुना आपने कि डायग्नोसिस जरूरी है और उसके बाद जरूरी है टेस्ट। एक और कॉलर है सर, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: जी नमस्कार, मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी, सवाल पूछिए आप अपना।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर, मेरा पूछना ये है कि जो कार्डियक अस्थमा है ये होता क्या है और इसके लक्षण क्या है, उपचार और इसकी जांच किस तरह की जाए, विस्तार से बताने की कृपा करें।
0: आपने जो शब्द बताया कार्डियक अस्थमा, और अच्छा हुआ कि आपने पूछा, ये कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि जो दूसरा अभी तक हम बात कर रहे थे वो है ब्रोंकियल एस्थमा, तो वो है सांस की बीमारी। कार्डियक एस्थमा है हार्ट की बीमारी, कि जहां हमारा हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को पहले हार्ट अटैक हो चुका है या उसका कोई वाल्व में कुछ नुकसान है, तो खासकर जब वो लेटता है या रात को सो रहा होता है तो फेफड़ों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी इकट्ठा होना शुरू होता है, जिसकी वजह से सांस फूल जाता है। तो कार्डियक एस्थमा हमेशा रात को ही होता है, मरीज 2-2.5 बजे उठ के बैठ जाता है सांस की वजह से। दिन में मरीज काफी ठीक रहता है। जो ब्रोंकियल एस्थमा है उसके लक्षण भी लगभग ऐसे ही होते हैं कि वो भी रात को उठ सकते हैं, इसलिए एस्थमा वर्ड इस बीमारी में भी इस्तेमाल करते हैं, कार्डियक में और ब्रोंकियल। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो जांच में ये पता चल जाएगा कि हम ब्रोंकियल एस्थमा का मरीज है ये या कार्डियक एस्थमा है। कार्डियक एस्थमा में आमतौर पे पहले से ही एक हार्ट डिजीज होती है, शायद मरीज को पता भी होता है कि मुझे हार्ट डिजीज है, तो वो हेल्प करता है इस चीज में कि ये शायद कार्डियक एस्थमा है। लेकिन इलाज दोनों का बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग इलाज है। जो ब्रोंकियल एस्थमा की दवाइयां वो कार्डियक एस्थमा में नहीं दे सकते और कार्डियक एस्थमा वाली ब्रोंकियल एस्थमा में नहीं दे सकते, तो दोनों में फर्क करना बहुत बहुत जरूरी है।
1: जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से हमें मोहम्मद इम्तियाज और सलमा बेगम लिख रहे हैं कि कहना चाहते हैं कि ये बेहतर, बहुत ही अच्छा टॉपिक हमने लिया है और ये हमसे कहना चाहते हैं कि एस्थमा की शिकायत इन्हें है, सांस फूलने लगता है, पसली तेज चलने लगती है, लेकिन एलर्जी को कैसे पहचाने अगर है तो, और कितने प्रकार की होती है एलर्जी, क्या कारण हो सकते हैं इसके?
0: एलर्जी जो है जेनेटिक बेसिस है इसका, यानी कि परिवारों में चलती है। अगर आपके पेरेंट्स में एक तरफ से एलर्जी आ रही है, जैसे खाली मदर की साइड में है, तो 10% के करीब चांस है कि उनके पुत्र पुत्री को लक्षण होंगे एलर्जी के। अगर दोनों साइड से आ रही है तो करीब 25% तक चांस हो जाता है कि नेक्स्ट जनरेशन में ये तकलीफ उभरेगी। एलर्जी का जो मुख्य लक्षण है, खासकर जो जुकाम की एलर्जी होती है, तो छींकें बहुत आती हैं। जहां वातावरण खराब हुआ छींकें शुरू हो गए, आप नहा के निकले छींकें आ गई, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर छींकें आ गई, साथ में नाक से बिल्कुल पानी जैसा नाक बहता है कि आप टिश्यू या हैंकी इस्तेमाल करते रहते हैं। कुछ मरीजों को पहले जुकाम शुरू होता है, फिर बाद में सांस में सीटी जैसी आवाज आनी शुरू हो जाती है, वो दमे में परिवर्तन हो जाता है उसका। वातावरण से बहुत अच्छा लिंक है इसका। अगर 15-20 मिनट के अंदर आप कहीं जाते हैं और वहां लक्षण शुरू हो जाते हैं तो निश्चित वो एलर्जी की वजह से ही है। तो इस तरह से हम पहचानते हैं कि आपके लक्षण का जो पैटर्न क्या है, कि कैसे हालात में वो शुरू होते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, साक्षी हमें दिल्ली से लिख रही है कि इन्हें धूल मिट्टी से बहुत एलर्जी है, इनको हैंकी गीला करके फेस पर रखना पड़ता है अगर ऐसा प्रॉब्लम हो। इसका क्या कोई परमानेंट इलाज है? इनकी एज है 36 और वेट है 85।
0: तो ये अवॉइडेंस की एक प्रक्रिया होगी जो आप कर ही रही हैं कि आप एक गीला हैंकी यूज करते हैं। मास्क भी इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे हम कोविड के वक्त में करते थे ना, वो मास्क अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे वातावरण में जहाँ पे की धूल या धुआं होती है। आप किचन में काम कर रही हैं और वहां पे धुआं उठता है कभी कभी, जैसे तलने में तो या सब्जी पकाने में, तो वो भी लक्षण उभार सकता है। तो इनसे सबसे बचने का यही तरीका, एक तो या तो धुआं उठने ही ना दें, या अगर है वहां पे तो मास्क लगाएं।
1: क्या कोई टेस्ट करा सकती हैं?
0: अब टेस्ट पे आ जाएं तो ये तो हुए लक्षण। कंफर्म करने के लिए लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं। एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम एक IgE नापते हैं, और एक ब्लड में एक सेल होता है ईओसिनोफिल बोलते हैं जिसको। तो साधारण ब्लड टेस्ट और एलर्जी का टेस्ट IgE, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो आपके लक्षण हैं ये एलर्जी की वजह से हैं। अगर दमे की तकलीफ है तो उसके एक सांस की प्रक्रिया जो है, लंग फंक्शन टेस्ट, वो भी की जा सकती है ताकि पता चले कि अस्थमा है कि नहीं है। जहां डायग्नोसिस हमारा बन गया उसके बाद आती है इलाज की। तो आज बहुत अच्छी दवाएं हमारे पास है, जैसे जुकाम की बात करें तो टॉपिकल स्प्रे होते हैं जो नाक में डाले जाते हैं, दिन में एक दो बार डालने पड़ते हैं और उससे बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाए। उसके लिए टैबलेट्स भी होती हैं एलर्जी की। उसी तरह से दमे के लिए भी इनहेलर या नेबुलाइजर होते हैं जो कि मरीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिए जा सकते हैं। तो इसको लक्षणों के जरिए हम पहचानते हैं, टेस्ट से कन्फर्म करते हैं और इनका इलाज सही से करें तो बहुत आराम मिल जाता है।
1: जी तो आपने सुना श्रोताओं कि कितने खास विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, अस्थमा, एलर्जी और इन्फेक्शन जो जुड़ा है हमारे सांसों से, हमारे लंग से। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एलर्जी की, तो एलर्जी में जो पेशेंट होते हैं, क्या कई बार वो इनहेलर यूज करना उनको कारगर नहीं लगता, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इनहेलर यूज करना कितना सही है?
2: पिछले लगभग 2-3 दशकों से जो हमारा दमे का इलाज है उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है। पहले टैबलेट्स या सिरप या इंजेक्शन से इलाज होता था, अब लगभग सभी दवाएं जो हम दमे में इस्तेमाल करते हैं वो इनहेलर के जरिए दी जा सकती हैं। अब इनहेलर 2-3 प्रकार के होते हैं, एक तो जैसे हम मीटर डोज कहते हैं, उसको दबाकर सांस खींचते हैं, वो एक बार में चला जाता है। एक पाउडर आते हैं जिसको कि घुमा के कैप्सूल को तोड़ा जाता है और वो कैप्सूल से पाउडर को इनहेल किया जाता है। तीसरा लिक्विड दवाई होती है जो कि एक बिजली का यंत्र जिसे नेबुलाइजर कहते हैं, उसमें डाल के ली जाती है। अब इसके जो इस्तेमाल करने की विधि है ये सबसे जरूरी है। पहले तो अगर मरीज ठीक से लेगा तभी उसको फायदा होगा। तो सारी दवाइयां हमारे पास इस समय मौजूद है जो हम इन 3 प्रकार में से दे सकते हैं। नेबुलाइजर आमतौर पर इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है, मीटर डोज और कैप्सूल वो मरीज घर में कर सकता है। तो मरीज को हम ट्रेन करते हैं कि इसको कैसे लिया जाए। अब इसकी एडवांटेज क्या है कि ये 5-10 सेकेंड में आपके डोज ले ली और 5 मिनट के अंदर इसका असर आना शुरू हो जाता है। तो जो आपके लक्षण है वो 5 मिनट के अंदर कम होने शुरू हो जाते हैं। टैबलेट से ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुरंत आराम मिलता है। दूसरा, जो मात्रा देते हैं इनहेलर में वो टैबलेट के मुकाबले 20वां या 40वां हिस्सा होता है सिर्फ, तो इसलिए साइड इफेक्ट भी बहुत कम होती है। तो ज्यादा इफेक्ट, जल्दी इफेक्ट और कम साइड इफेक्ट, ये इनहेलर के फायदे हैं। इसलिए अब सारे मरीजों का इलाज इनहेलर के जरिए होता है। कौन सा इनहेलर इस्तेमाल करना है वो मरीज की चॉइस है, कौन सा वो ठीक से ले पाता है उसको एक बार ट्रेन किया जाता है और बहुत अच्छा असर। तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए कि हमें इनहेलर दिया गया है, इनहेलर ही सही इलाज है दमे की बीमारी
1: के लिए। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं कॉल लाइन पर। हेलो,
3: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार
3: सर को भी। नमस्कार जी।
2: नमस्कार
3: जी, मैं जामिन भाई रेडियो वाला किरोड़ी में हूँ।
2: जी
3: सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम कुछ लोगों को देखते हैं तब तब मौसम बदलता है, सर्दी से हम गर्मी की तरफ जाते हैं, गर्मी से बरसात की तरफ जाते हैं, तो कुछ लोगों को छींके आना, पानी आना, फिर उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, तो ये अस्थमा के लक्षण होते हैं क्या सर?
2: नहीं,
3: ये पसंद आऊ सर।
2: अब 2 तरह के मरीज हम देखते हैं, एक जिनको छींके आती हैं और नाक से पानी आता है, ये एलर्जी के लक्षण हैं मौसम बदलने पे या जहाँ धूल धुआं है, तो जैसे आजकल का मौसम है या दूसरी तरफ सितंबर अक्टूबर का, उस समय ये लक्षण बहुत उभरते हैं। कुछ मरीजों को साथ में सांस की तकलीफ भी हो जाती है, कुछ को सिर्फ छींके और नाक से पानी आता है वो राइनाइटिस या नाक की एलर्जी होगी। अगर शुरुआती ये लक्षण है उसके बाद सांस फूलना शुरू हो जाता है तो वो दमा शुरू हो गया, तो हम ये कहते हैं कि जो जुकाम है वो छाती में आ गया। तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, किसी को दोनों चीजें होते हैं, किसी को सिर्फ नाक के सिम्टम्स होते हैं कि छींके आते हैं और नाक से पानी आता है, दोनों ही एलर्जी की वजह से।
1: जी डॉक्टर साहब, आलोका हमें नोएडा से लिख रही हैं कि ये सेवरल एलर्जिक हैं, इनको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, डस्ट, स्मोक से बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और जबकि ये नोज

0: ब्लॉक की भी इनको प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी इनको रनी नोज की प्रॉब्लम होती है, उसके साथ साथ कोल्ड और ड्राई कफ भी इनको रहता है, ये क्या करें?
1: इनकी जो लक्षण का जो विवरण दिया है इन्होंने वो 100% एलर्जिक है
0: जी।
1: अवॉइडेंस सबसे जरूरी चीज है एलर्जी के लक्षणों से कंट्रोल करने के लिए, और जैसे ये बताते हैं कि अगर उसको अवॉइड करते हैं तो लक्षण कम होते हैं। अब कभी कभी होता है कि हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, जैसे वायु प्रदूषण है, अब आपने दिल्ली में रहना है तो प्रदूषित वायु को इनहेल करेंगे ही, या कोई तेज स्मेल है आसपास, या लोगों ने परफ्यूम लगाया हुआ ऑफिस में तो वो भी आप इनहेल करेंगे
0: जी।
1: तो वो अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में अगला तरीका ये है कि हम उसका इलाज करें, और जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे पास अब जो दवाएं मौजूद हैं, जैसे जुकाम के लिए भी स्प्रे होते हैं नाक में डालने वाले, तो वो मरीज दिन में एक बार या दो बार डालता है, तो डालने के बाद जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे लक्षण उभरते हैं, जैसे कि धुआं या कोई स्मोक या तेज स्मेल, फिर वो लक्षण नहीं उभरते। तो इलाज जो है वो बहुत सक्सेसफुल है इन लक्षणों का
0: जी।
1: तो डॉक्टर से बात करके सही आप दवाई लें और निश्चित आपको फायदा होगा
0: जी। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो
2: हेलो, नमस्कार दोनों को जी।
0: नमस्कार,
2: मैं विशित बेदी बोल रही हूँ पंचकुला हरियाणा से
0: जी। सवाल पूछिए आप अपना।
2: डॉक्टर साहब मेरे दो क्वेश्चन है, एक तो ईएसआर जो बड़े होते हैं ये किस चीज की इन्फेक्शन होती है? मेरी एक फ्रेंड है, उसका वेट लॉस भी हो रहा है और काफी ज्यादा है उसके वो
1: ईएसआर। अच्छा,
2: हाँ जी ईएसआर। और दूसरा मेरी जो मेड है एक, उसको एलर्जी है चावल राजमा काली दाल, मेन मेन चीजें जो सब लोग खाते हैं।
1: हाँ।
2: खाते ही उसको वॉमिटिंग हो जाती है और सिर भारी हो जाता है। ये मेरे दोनों क्वेश्चन आप बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा।
1: हाँ जी, सी पहला प्रश्न आपका ईएसआर के बारे में। ईएसआर एक ब्लड टेस्ट होता है, जैसे हम हीमोग्लोबिन करवाते हैं ना, उसी टेस्ट के साथ साथ ईएसआर भी नापा जाता है। अब ईएसआर से कौन सी बीमारी है ये पता नहीं चलता, लेकिन ये पता चलता है कि शायद कोई बीमारी, यानी कि उसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं कि वो कौन सी बीमारी है ये तो नहीं बताएगा, लेकिन इतना जरूर बताता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन ईएसआर बढ़ने के कुछ कारण इन्फेक्शन के बिना भी होते हैं, जैसे किसी को आर्थराइटिस होता है तो भी ईएसआर बढ़ जाता है। तो ईएसआर अगर बढ़ा है तो कारण पता लगाना होगा, तो इसलिए और भी टेस्ट करने जरूरी है, खाली ईएसआर से तो नहीं होगा। इतना जरूर है कि ईएसआर का मतलब बढ़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो है लक्षण।
2: तो डॉक्टर साहब और कौन से टेस्ट कराने पड़ेंगे?
1: नहीं, वो तो लक्षण पे डिपेंड करता है ना, जैसे अगर आपको जोड़ों की दर्द है तो आर्थराइटिस की जांच होएगी।
2: नहीं नहीं, उसको ऐसा कुछ नहीं है, टीचर है, रोज आती जाती है, ट्रेवल करती है, पर भूख नहीं लगती
1: है। या बुखार है साथ में?
2: नहीं,
1: तो
2: बस उसको खाना एक टाइम खाती है, वो भी बड़ी मुश्किल।
1: हाँ, तो ये थोड़ा फोन पे मुश्किल हो जाता है क्योंकि मरीज से बात करनी होती है। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि एक अच्छे डॉक्टर से मिल लें कि भाई ये क्यों हो रहा है, कि ये सर क्यों बढ़ा हुआ है, भूख क्यों नहीं लग रही है, तो कारण का पता चल जाएगा और एडिशनल टेस्ट करके। दूसरा जो खाने की वजह से आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मरीज कई तरह के खाने छोड़ देते हैं, बच्चों में छुड़वा देते हैं, केला छुड़वा देते हैं, दही छुड़वा देते हैं, चावल छुड़वा देते हैं
0: जी।
1: जरूरी नहीं है कि इन पदार्थों से दमा या एलर्जी के लक्षण उभरते हैं। कभी कभी होता है कि आपकी तकलीफ चल रही है, आपने केला खाया तो आप सोचते हैं कि शायद उसी की वजह से हुआ होगा। तो ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं फूड एलर्जी जो है ना वो एक वहम ज्यादा है, और एक्चुअल उसका जो है ना बहुत कम होता है। अगर किसी को होता है बार बार तब तो वो उसको अवॉइड करना है, उसका एक ही तरीका है अवॉइड करना, किसी को उसको फिश से हो जाती है, नट से हो जाती है, तो ऐसे केसेस में अवॉइड की। लेकिन इसके जो टेस्ट होते हैं ना उनसे कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है, स्किन टेस्ट भी करते हैं तो हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं कि मरीज खुद ही बताता है कि मैंने ये जब भी लिया मुझे हुआ और जब नहीं लिया तो ठीक हुआ, वो इस बात को शो करता है कि फूड एलर्जी है। तो इसकी पूरी तरह से प्रूव होने पे कि इस चीज की वजह से ही है तभी उस फूड को छोड़ना चाहिए, ऐसे वहम में हमको फूड नहीं छोड़ देना चाहिए
0: जी। डॉक्टर साहब अब बात करते हैं हम इन्फेक्शन की, तो सरल भाषा में अगर हम कहें तो इन्फेक्शन क्या है, कोई इससे कब और कैसे ग्रसित होता है?
1: सी इन्फेक्शन में दो चीजें बहुत जरूरी है, एक बग जिसको हम कहते हैं माइक्रोब
0: जी,
1: बैक्टीरिया या वायरस जो कि वातावरण में है,
0: फंगस
1: वो होना चाहिए। अब हम कोविड जैसे, कोविड भी इन्फेक्शन थी, टीबी भी इन्फेक्शन है, निमोनिया भी इन्फेक्शन है, इन सबके कीटाणु अलग अलग है। एलर्जी इन्फेक्शन नहीं है, एस्थमा इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन एस्थमा में इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये कीटाणु जो है ये वातावरण में है, ये आमतौर पर अगर पहले से मरीज आपके पास बैठा है, जैसे उसको जुकाम है

0: उसने वो छींका या खांसी की, तो जो बारीक बारीक कीटाणु के कण होते हैं वो हवा में आ जाते हैं और जो सामने बैठा व्यक्ति है वो उसे सांस के जरिए इनहेल कर लेता है, तो उधर वो ट्रांसफर हो जाता है। कोविड में तो सब जानते, तभी हम मास्क डालते थे उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो एक बार कीटाणु आपके शरीर में आ गया और जो अगर लंग की इन्फेक्शन है तो वहां पे वो पनपना शुरू हो जाता है और वहां फिर उसके लक्षण शुरू हो जाते हैं। जहां लक्षण शुरू हो जाते हैं वो इन्फेक्शन की बीमारी हो गई। आज के डिस्कशन में अगर हम देखें तो फ्लू, जिसे हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, निमोनिया जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये हमारी कॉमन चेस्ट इन्फेक्शन है, और एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तो फ्लू जो है एक जुकाम की तरह शुरू होता है लेकिन इसमें बुखार होता है। जो सिंपल एलर्जी होती है उसमें बुखार नहीं होता, दमे के मरीज को बुखार नहीं होगा। बुखार का मतलब है कि इन्फेक्शन है। तो जुकाम साथ में गला दर्द और शरीर टूटा टूटा रहना, हफ्ते 10 दिन की बात है ये इन्फेक्शन, तो वो पॉइंट करता है कि फ्लू है, जिसे हम वायरल कह देते हैं। तो उसका टेस्ट भी किया जा सकता है प्रूव करने के लिए, और इसका इलाज अच्छी तरह से किया जा सकता है, मौजूद है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो निमोनिया, उसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स से होता है। तो अगर निमोनिया तो उसके लक्षण भी बुखार, छाती में दर्द, बलगम आना, ये लक्षण होते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे को एक मैसेज मिला है मोहम्मद इम्तियाज का दिल्ली से। वो हमसे पूछ रहे हैं कि जिस तरह से अस्थमा का सिम्टम्स मालूम आसानी से हो जाते हैं, लेकिन एलर्जी की पहचान कैसे करें, और क्या ब्राउन शुगर, गुड़ खाने से क्या पॉल्यूशन में हमें फायदा करता है?
0: लक्षणों से पहचान होती है एलर्जी की, और जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, छींके आना
1: जी,
0: नाक से पानी बहना शुरू हो जाना, ये या आंखों से कभी कभी पानी आना या आंखें लाल हो जाना, ये लक्षण है एलर्जी के। और ये अगर वातावरण ऐसा है जहां आप गए और 10-15 मिनट में शुरू हो गया, तो निश्चित ये एलर्जी की वजह से ही है।
1: जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे इन्फेक्शंस की, तो दूषित खाना और जो पानी है उससे इन्फेक्टेड होने का खतरा कितना ज्यादा होता है?
0: अब इन्फेक्शन शरीर के किसी
1: भी, क्योंकि हम सब बाहर जाते हैं रोज, और जब बाहर जाते हैं तो खाना और पीना होता ही है।
0: अब इन्फेक्शन शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है। अभी हम पहले कॉलर के सवाल पे हमने बात की थी फ्लू और निमोनिया की, वो है चेस्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब खाने से जो इन्फेक्शन होती है ना, वो पेट की इन्फेक्शन है, जिसमें कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, वॉमिटिंग, ये लक्षण है। जो कि हम जैसे कोई ऐसी अपने पुरानी चीज खा ली जो कि बासी है, उसमें कीटाणु बनने शुरू हो गए, जैसे दूध फट गया था, दूध खराब था, दही खराब थी, खासकर इस मौसम में गर्मी में तो ये बहुत होता है कि खाना अगर एक दिन का भी पुराना है तो उसमें इन्फेक्शन होने के खतरे ज्यादा रहते हैं। तो इसके लक्षण मुख्यतः पेट से लिंक होते हैं कि पेट में दर्द, दस्त या लूज मोशंस, वॉमिटिंग और साथ में हल्का बुखार, तो ये सजेस्ट करते कि हमारे पेट में इन्फेक्शन हो गई है।
1: जी डॉक्टर साहब, घर से निकलने से पहले और घर लौटकर ऐसा क्या करें कि हम इन्फेक्शन से बच सकें?
0: सबसे जरूरी तो ये है कि पर्सनल हाइजीन, कि हम मुंह हाथ अच्छी तरह से धोएं जब भी हम वापस आते हैं, क्योंकि बहुत सारे कीटाणु जो हैं हम साथ लेके आते हैं।
1: जी।
0: जो भी वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा पेन हो गया किसी ने इस्तेमाल किया तो, या हमारा बैग है उसके ऊपर, या हमने जैसे मेट्रो या उसमें ट्रेवल किया, अपने रेल पकड़ी या सीढ़ी के ऊपर हाथ लगाया कहीं, तो वो सब ट्रेवल करते हैं। इसलिए अपनी पर्सनल हाइजीन की, हमको हाथ को हमेशा अच्छी तरह से धोना है जब भी हम खाना खाएं उसके बाद, या कोई खाना खाने से पहले भी उसको धोएं, तो इन्फेक्शन जो है पेट में जाने के चांसेस कम हो जाते हैं।
1: जी ये तो हो गया कि घर आकर, और घर से निकलते वक्त
0: बाहर जो है, अगेन मैं कोविड का एग्जांपल दूंगा, मास्क डालते थे क्योंकि हम
1: आज उसकी आदत थोड़ी कम हो गई है, मास्क है,
0: पर अभी भी दिखते हैं कुछ बहुत लोग जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो डालते हैं, और वो एक बहुत कारगर इफेक्टिव तरीका है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का।
1: जी साथियों, एलर्जी, अस्थमा और इन्फेक्शन, इस विषय पर हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद।
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health@gmail.com पर।

0: है।
1: आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात कर रहे हैं एस्मा, एलर्जी और इन्फेक्शन से संबंधित परेशानियों की, और इस खास विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एस के छाबरा। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़े इससे पहले एक कॉलर है कॉल लाइन पे, उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी।
2: हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब।
3: हाँ नमस्कार
2: डॉक्टर साहब। ये पूछना था कि सर्दी के दिनों में जैसे बेटे को होता है, जैसे बात करते समय, फोन में बात करते समय आवाज खांसी सी होती है, मतलब हल्की हल्की।
3: और कोई लक्षण
2: नहीं? और कुछ नहीं, कभी होता है बात करते समय जैसे आवाज खांसी सी हो जाती है बात करते करते।
3: तो अभी तक हम जो दमे की बात कर रहे थे, हमारा जो फोकस था वो सांस के ऊपर था, पर कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको सांस नहीं सिर्फ खांसी के लक्षण उठते हैं, और वो भी एलर्जी की वजह से हो सकता है। तो वही पैटर्न कि मौसम बदलने पे होता है या किसी खास चीज के संपर्क में आने से होता है, धूल धुएं से हो जाता है या भागने से होता है। और खांसी का पैटर्न क्या है कि एक बार शुरू हो तो एक डेढ़ मिनट तक चलती रहती है, अगर ऐसी खांसी है तो उसे भी हम दमे की तरह ही मानते हैं एलर्जी की वजह से। तो उसे जांच करनी जरूरी है कि खांसी का और कारण है या एलर्जी की वजह से है। तो आप जरूर संपर्क करिए डॉक्टर से, पता चले कि ये गले की कोई बीमारी है या एलर्जी की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर एलर्जी है तो उसका इलाज लगभग दमे की तरह ही होगा और फायदा होगा।
1: उम्मीद है कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, नरदेव सिंह चौहान उत्तराखंड से हमें लिख रहे हैं कि एस्मा में ऋतु का बड़ा रोल होता है, सर्दियों में मरीज को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कृपया सर्दियों में क्या सावधानी रखें इसके बारे में बताएं।
3: मौसम बदलने में भी तकलीफ होती है, कुछ मरीजों को ज्यादा गर्मी में, कुछ मरीजों को ज्यादा ठंड में तकलीफ होती है। तो बचाव वो सबसे जरूरी है, अवॉइडेंस। जैसे आप तो उत्तराखंड से हैं, अब कहीं ऐसे एरिया में जहाँ ठंड बहुत पड़ती है तो वहाँ अवॉइडेंस बड़ी मुश्किल है, लेकिन घर को जितना वार्म रख सकें, अपना पर्सनल वार्म्थ का ख्याल रखें कि कपड़े पूरे डालें हो सर्दियों में, ताकि सीधा एक्सपोजर जो ठंड का है ना वो ना हो। दूसरा, अवॉइडेंस के साथ साथ इलाज भी बहुत जरूरी है कि सब कुछ अवॉइडेंस से संभव नहीं हो सकता, अवॉइडेंस से कम हो सकते हैं लक्षण लेकिन जा नहीं सकते, तो उसका इलाज भी बहुत जरूरी है। और जो दवाइयाँ होती हैं दमे की, उसका एक फोकस प्रिवेंशन ही होता है कि हम लगातार दवाई एडवाइस करते हैं कि आप लेते रहें इसको, तो उससे शरीर की जो एक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, तो आप फिर ऐसे वातावरण को बर्दाश्त कर लेते हैं कि जिनकी वजह से लक्षण उभरते हैं, जैसे कि ठंड है
1: जी,
3: तो आप दवाई लेंगे तो वो सर्दी का मौसम भी बर्दाश्त हो जाएगा
1: जी। डॉक्टर साहब, रविंद्र पाठक और आशा पाठक नीदरलैंड से हमें लिख रहे हैं कि उन्हें कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है और बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है उन्हें हमारे इस कार्यक्रम से, धन्यवाद। और वो लिख रहे हैं साथ में कि कुछ प्लांट्स भी एलर्जी होती है उन्हें, हाथों में खारिश होने लगती है, इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है?
3: बिल्कुल, जैसे हम एलर्जी की बात कर रहे थे तो प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बड़ी मनमोहक और सबको अच्छी लगती है, किसी किसी के लिए बहुत खराब होती हैं। जिक्र फूलों का है, फूल बड़े प्यारे लगते हैं लेकिन कुछ मरीज हैं कि जैसे फूल सामने आया वो छींके शुरू हो जाती है, नाक से पानी हो जाता है। तो ये हिस्ट्री से पता चलता है कि मरीज बताता है कि जो ऐसे मौसम में वो फूल निकलते मेरे बाग में और मेरे को तकलीफ शुरू हो जाती है, या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ वो फूल रखे हुए थे मुझे तकलीफ शुरू हो गई। तो वहां पे अगेन बात आ जाती है अवॉइडेंस की कि आप ना जाए, और अगर जाना मजबूरी है, अवॉइड नहीं होता तो फिर दवाई ले, तो उससे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी और लक्षण नहीं उभरेंगे। अब एलर्जी स्किन में भी हो सकती है, जैसे आप बता रहे हैं कि खुजली होती है, तो स्किन एलर्जी, नोज एलर्जी, आई एलर्जी, सांस की एलर्जी, ये सब बेसिक जो प्रॉब्लम है वो एलर्जी का ही है
1: जी।
3: तो इसके लक्षण को पहचाने और इसका इलाज किया जाए
1: जी। डॉक्टर साहब, अजय हमें गाजियाबाद से लिख रहे हैं कि अगर बच्चों में एस्मा हो जाए तो क्या ये उम्र बढ़ने के साथ ठीक हो सकता है, और अगर बच्चा इनहेलर ले रहा है तो क्या ये शरीर के लिए नुकसानदेह तो नहीं
3: जी? बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल, और हर माता पिता पूछते हैं जब बच्चे को लेके आते
1: जी,
3: हैं
1: जी।
3: और आपका सवाल अगर कहें तो लगभग 50% चांस है कि बच्चे जैसे 12 से 18 साल की उम्र तक पहुंचेंगे लक्षण लगभग खत्म हो जाते हैं, अगर ठीक से उनका इलाज किया जाए। ये बहुत जरूरी है, हम इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि अपने आप ही चले जाएंगे, जब तक लक्षण है तब तक इलाज करना है, और अगर फेवरेबल केस रहता है तो वो पेशेंट रिकवर कर जाएगा। हालांकि कभी कभी देखा जाता है कि कुछ वर्षों के बाद लक्षण वापस लौट सकते हैं, तो सतर्क रहना चाहिए कि दोबारा तो नहीं हो जाते। लेकिन बच्चों में जो इसका प्रोग्नोसिस कहते हैं इसको कि रिकवरी के चांसेस कहते हैं, तो निश्चित बच्चों में हो जाता है, लगभग 50% रिकवर कर जाएंगे, लेकिन जब तक है तब तक इलाज करना बहुत जरूरी है।
1: जी डॉक्टर साहब, हम बात इन्फेक्शन की कर रहे हैं, तो कोई इंसान अगर बार बार इन्फेक्शन से ग्रसित हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है?
3: अब जहां तक चेस्ट इन्फेक्शन की बात है तो दो मेजर इसमें कारण है, एक तो वायरल इन्फेक्शन जिसे हम फ्लू कहते हैं, दूसरा निमोनिया जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और एक क्रॉनिक है ट्यूबरक्लोसिस जो कि एक अलग ही विषय है।
1: जी बिल्कुल।
3: अब फ्लू और निमोनिया, इसका बचाव के तरीके अब हमारे पास है
1: जी,
3: एडल्ट वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन से सब लोग जानते हैं कि बच्चे जैसे पैदा होके 5 साल तक 10 साल तक उनको वैक्सीन लगती है बीमारियों से बचने के, उसी तरह से वयस्कों में भी एडल्ट्स में भी वैक्सीन लगती है, फ्लू की वैक्सीन है, निमोनिया की वैक्सीन है। हेल्दी लोग भी लगवा सकते हैं, और जिनको किसी भी प्रकार की तकलीफ, जिसको डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, सांस की बीमारी है, उन्हें निश्चित फ्लू की वैक्सीन और निमोनिया की वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये कब लगनी है ये आपके चिकित्सक बता देंगे। फ्लू की वैक्सीन आमतौर पर हर साल लगती है, निमोनिया का एक अपना स्केड्यूल होता है, एक वैक्सीन जिंदगी में सिर्फ एक बार लगती है, एक 5 साल के गैप में लगती है, तो आपके जो चिकित्सक है वो एडवाइस करेंगे। लेकिन प्रिवेंशन पॉसिबल है इन्फेक्शन से वैक्सीनेशन के थ्रू, और बहुत जरूरी है।
1: और डॉक्टर साहब, टेस्ट कौन कौन से होते हैं अगर हम बात करें एस्थमा, एलर्जी और इन्फेक्शन तीनों के, अगर हम टेस्ट की बात करें तो कौन कौन से टेस्ट है जिनसे पता लगाया जा सकता है?
3: इसको हम एक एक करके ले लेते हैं। एलर्जी के लिए हमने जैसे बात की थी,

0: इन्फेक्शन की जांच है।
1: जी श्रोताओं, आपको हम बता दें कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं इस मेल आईडी पे। मेल आईडी नोट कर लीजिए, feedback@rainbow@gmail.com। डॉक्टर साहब, आपने बात की वैक्सीनेशन की, तो प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो तीनों के लिए प्रिवेंशन क्या क्या है?
0: अस्थमा की प्रिवेंशन के लिए वातावरण सबसे जरूरी है। अगर आपको पता चल जाता है कि ये फूल है या जहाँ धुआं है या कोई धूम्रपान कर रहा है या कुछ ऐसे दीवारों में सीलन है या कोई कभी कभी खाने की वस्तु है, इनसे लक्षण उभरते हैं तो वो अवॉइड किए जाने चाहिए निश्चित। और अगर अवॉइड नहीं हो सकते तो इलाज है, इलाज से आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी उसको बर्दाश्त करने के लिए। इन्फेक्शन की जो प्रिवेंशन है वो वैक्सीन के जरिए ही है। अगर कोई दूसरा कीटाणु जिससे इन्फेक्शन हुई है तो उसका इलाज होता है। हर चीज़ के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन निमोनिया की वैक्सीन और फ्लू की वैक्सीन अवेलेबल है जो कि लगानी चाहिए इससे बचने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, इन तीनों परेशानियों से निजात पाने के लिए या इन्हें कंट्रोल में करने के लिए लाइफस्टाइल का कितना बड़ा रोल है?
0: देखिए, अच्छा खाना और एक्सरसाइज, ये हमारी जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो कोई भी बीमारी हो, अगर हम बैलेंस खाना खाते हैं और नियमित एक्सरसाइज करते हैं तो खाली दमा या इन्फेक्शन नहीं, बहुत सारी बीमारियां जो हैं ये कम हो जाती हैं या इवन अवॉइड भी हो जाती हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। अब जैसे दमे का मरीज है, अगर उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो वजन की वजह से ही सांस फूलता रहेगा उसका। तो इसलिए एक आइडियल बॉडी वेट, एक बैलेंस्ड खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, इनके बहुत फायदे हैं और ये जरूर करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, ऐसा कोई विषय या ऐसा कोई सवाल हमसे छूट गया हो जिसके बारे में आप बताना चाहते हो तो आप बताइए, क्योंकि कार्यक्रम में अब समय कम रह गया है।
0: सबसे
1: तीनों उसके लिए
0: जी, तो एक तो हमारे देश में मैंने देखा है कि लोग अपने आप ही इलाज कर रहे थे केमिस्ट से लेके, ये बिल्कुल भी ना करें। बहुत बार गलत इलाज होता है, तो सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है, डॉक्टर से बात करके जांच करा के सही इलाज करें। और जहां तक दमे का प्रश्न है, इन्हेलर से बिल्कुल भी ना घबराएं। इन्हेलर बहुत अच्छी पद्धति है दवाई देने की और बहुत अच्छा उसका असर आता है। तो डॉक्टर की सलाह पे चलें और एलर्जी हो या इन्फेक्शन हो या दमा हो, इनका कंट्रोल संभव है।
1: जी तो श्रोताओं, हमने बात की डॉक्टर एस के छाबरा से, उन्होंने बताया कि अस्थमा, एलर्जी और इन्फेक्शन से जुड़ी परेशानियों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। डॉक्टर छाबरा जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है प्लमोनोलॉजी स्लीप एंड क्रिटिकल केयर प्राइमस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के, इसके साथ साथ वो हैं फॉर्मर डायरेक्टर प्रोफेसर वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमें बेहद खास जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: और साथियों, इसके साथ ही अपनी दोस्त पूजा को दीजिए इजाजत। आज के लिए नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

बहुत प्यार करते हैं ना आप अपने वतन से, अपने देश से। हम यहां सरहद से कोसों दूर बैठे हैं और बात कर रहे हैं अपने अपने देश प्रेम की। तो सोचिए, सरहदों पर बैठने वाला हर वो सिपाही, हर वो अफसर जो मां भारती की उस सरहद की रक्षा कर रहा है, आसमान में जमीन पर वो चांद सितारे हमारे, वो धरती मां का मिट्टी का वो लेप, और उसी लेप के बीच में वो भावनाएं तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। संदेश टू सोल्जर्स एक ऐसा शो है जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हिंदुस्तान की फौज के उन सितारों से, सुसज्जित अफसरों से, उन फौजी भाइयों से जो अपना परिवार पीछे छोड़ के आपके परिवार को सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे ही एक जाबाज अफसर मौजूद हैं, मेजर एस के यादव, जिन्होंने 15 साल की उम्र में एनडीए ज्वाइन की और उसके बाद 14 से ज्यादा साल उन तमाम जगहों पर भारत मां की रक्षा की सेवाएं दी अपनी। हमने कई जाबाज अफसरों और सिपाहियों के साथ आपकी मुलाकात कराई है, लेकिन आज हम टैंक रेजिमेंट की बात करेंगे। टैंक के अंदर की वो जिंदगी, टैंक का वो लोहा जो टक्कर लेता है दुश्मनों से, टैंक रेजिमेंट की तैयारी, उसका फौलाद आज हम सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स में।

0: आइए मुलाकात करते हैं यहां मेजर एस के यादव के साथ। स्वागत कर रहा हूं सर, और पूरे हिंदुस्तान का ये नमस्कार, ये सलूट स्वीकार कीजिए।
1: शुक्रिया, थैंक यू।
0: कैसे हैं सर आप?
1: एब्सोल्युटली फाइन, फर्स्ट क्लास।
0: आज हमने आपको सिविलियन ड्रेस में बुलाया है, लेकिन जज्बा वही है जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो ताकत है, भारत माँ की वो ड्रेस आपकी।
1: बिल्कुल, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, एज दे से, यू नेवर लीव द आर्मी। एक बार आप आर्मी ज्वाइन कर लें तो एक फैमिली बन जाती है
0: जी,
1: और आप चाहे रिटायर हो जाएं, सर्व कर रहे हो, वो पूरी फैमिली एक जैसी होती है। टिल यू रीच योर लास्ट स्टेज, द होल फैमिली, योर रेजिमेंट इज विद यू इन गुड एंड बैड टाइम्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटिफुल इंडियन आर्मी।
0: आप तो टीनेज में ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ जुड़ गए। इंडियन आर्मी,
1: मैं वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर्स था। फर्स्ट अटेम्प्ट एनडीए में चले जाएं आप हमारे टाइम पे, तो आप 15.5 साल की उम्र में आप एनडीए जाते हैं, आपकी दाढ़ी भी नहीं हुई होती, फर्स्ट टाइम शेव होता है वहां पे जाके। तो
0: रैगिंग हुई थी सर आपकी?
1: बहुत।
0: उसके बारे में
1: याद है।
0: 15 साल की उम्र में सर फौज में चले गए आप, और रैगिंग तो हुई होगी।
1: 15 रैगिंग की वजह से मैं कहूंगा आई शुड बी थैंकफुल ऑन द हाइंड साइट, क्योंकि वो रैगिंग नहीं, हमको वो स्ट्रेंथ, हमको वो ताकत, हमको वो निश्चय दिया है जो हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया। वो एक फाउंडेशन बन जाती है और वो फिर फॉर लाइफ टाइम आपके साथ रहती है। और वो बॉन्डिंग जो होती है नेशनल डिफेंस अकेडमी में, वो रगड़ा के साथ ही होती है। बेसिकली रगड़ा होता है, एंड देयर इज लॉट ऑफ एकेडमिक्स। ऑफ कोर्स वी हैव ए डिग्री फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन बीएससी एंड बीए। अदर देन दैट द सब्जेक्ट्स आर ऑल मिलिट्री साइंस, मिलिट्री ज्योग्राफी एंड देयर आर फील्ड एक्सरसाइजेस। लेकिन हम जो एनडीए से जो होते हैं, वी आर बॉन्डेड सो वेल। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी बॉन्डेड है। और अभी भी हम लोग रिटायर हो चुके हैं, पीपल माय कोर्समेट्स हैव बीन जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, बट वी स्टिल रिमेन एंड टॉक लाइक एज इफ वी वर इन एनडीए।
0: आपने व्हाट्सएप का नाम लिया, तो आज एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दूं कि हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है, आप उसके साथ, उसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070 9868107070। कोड वर्ड्स कुछ ऐसे होने चाहिए सर कि जल्दी समझ में आ जाए। आपको 15 साल की उम्र में किसने प्रेरित किया कि आप फौज में जाइए, एनडीए में जाइए?
1: देखिए, मेरे फादर एयरफोर्स में थे
0: जी,
1: और हम लोग एक फौजी फैमिली कह लीजिए आपको। मेरी सिस्टर आर्मी में डॉक्टर थी, वो उन्होंने शादी भी एक आर्मी ऑफिसर से की जो कि एज ए आर्मी कमांडर जनरल रिटायर हुए हैं। और हमारे टाइम पे फौज के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था हमारी फैमिली में।
0: फौज में ही जाना है,
1: शुरू से ही एनडीए की तैयारी करनी है और यूनिफॉर्म पहननी है, क्योंकि फादर को देखा था यूनिफॉर्म में। और कोई कुछ उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं।
0: मदर तैयार थी कि फौज में जाइए, इतने सारे फौजी घर में, बोला नहीं उन्होंने, ये बच्चा भी जाएगा वहां।
1: उनके हस्बैंड भी थे फौज में, उन्होंने फौज के बाहर फ्रेंकली कोई लाइफ ही नहीं देखी हमने। हमारा जो फौजी कंटोनमेंट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो ए क्लोज निट फैमिली, सारा सेल्फ सफिशिएंट होते हैं वहाँ पे, फ्रॉम ऑफिसर्स मेस टू टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, योर मूवी थिएटर, एवरीथिंग इज सेल्फ सफिशिएंट। यू डोंट रियली हैव टू गो आउट इन स्मॉल लिटिल स्टेशंस टू द सिविलियन एरिया।
0: सो इज दैट एडवांटेज, और You think you miss something अगर civilian area में नहीं जा रहे, कुछ ऐसा?
1: नहीं, ऐसी something? कोई बात नहीं है। Actually, most of the cantonments or army stations are in the field areas. So field area में तो you have to be self-sufficient, because आपको कुछ मिलता नहीं है इतना जो आपको चाहिए, चाहे राशन हो, चाहे जो एंटरटेनमेंट चाहिए, वो तुम्हारे आस पास ही होनी चाहिए।
0: जी,
1: मेट्रो सिटीज में दूसरी बात है।
0: ओके,
1: वी हैव ऑफ कोर्स अप्रोच टू मॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स एंड सो ऑन। कभी कभी आते हैं फील्ड में, अगर आप पोस्टिंग कर लें तो अगली पोस्टिंग मोस्ट प्रोबेबली टाउन में दे देते हैं उसको थोड़ा रेस्ट देने के लिए।
0: मुझे ये बताइए कि आपने अपने फादर के साथ, आपके फादर की तो पोस्टिंग होती रहती होगी, जब वो एयरफोर्स में थे तब आप ज्यादा स्टेशंस में गए, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग सिटी।

0: लाइफस्टाइल
1: यस
0: अलग, भाषा अलग,
1: यस
0: खान पीन अलग, पढ़ाई भी अलग हो गई होगी।
1: यस बिल्कुल सही बात है। ये एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी, बट आई टेक इट एज एन एडवांटेज बिकॉज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज
0: जी
1: दैट यू एक्चुअली कम टू सी सो मेनी प्लेसेस, ए न्यू
0: यस
1: प्लेस एवरी टू
0: यस
1: ईयर्स 3 ईयर्स,
0: जी
1: एंड आई रियली लव दैट। एंड एक्चुअली वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग आई स्टिल लव टू ट्रैवल बिकॉज ऑफ दैट, परहैप्स इन यू नो थिंग विच आईव गॉन थ्रू। एंड आफ्टर ए वाइल मेरे फादर ने सोचा भाई बहुत घूमना हो गया बच्चों को, तो मुझे हॉस्टल में डाल दिया, A4 स्कूल में, सुब्रोटो
0: ओके
1: पार्क दिल्ली में,
0: ओ
1: बोर्डिंग स्कूल,
0: टैप्स कहते थे उसे,
1: टैप्स। हाँ
0: टैप्स।
1: अब टैप्स हो गया,
0: आपका
1: पहले
0: और मेरा एक
1: पहले
0: कनेक्शन है एयरफोर्स
1: AFCS
0: का।
1: होता
0: ओके
1: था। सो उसमें बोर्डिंग स्कूल में डाला तो डिसिप्लिन और बढ़ जाता है, NDA की तैयारी हो गई, सो दैट इज हाउ द एकेडमिक्स वॉज। लकीली आई वेंट थ्रू द NDA एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट
0: जी,
1: एंड NDA चले गए।
0: और हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आप टैंक रेजिमेंट के साथ जुड़े, T-72 टैंक के बारे में हम बात करते हैं, अहमदनगर में। आपके आपकी पहली पोस्टिंग गुजरात में थी?
1: नहीं, पहली पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में होती है
0: जी।
1: सबसे पहले, उसके बाद वहाँ 6 महीने बिता के हम लोग एक यंग ऑफिसर्स कोर्स करते हैं,
0: ओके
1: जो हमारा टैंक्स का कोर्स अहमदनगर में होता है।
0: ओके
1: तो वहाँ पे हमको एक्चुअली रियली टैंक के बारे में पूरा पता चलता है, उसकी ट्रेनिंग, फायरिंग, उसका
0: वाह।
1: DNM जो होता है, ड्राइविंग मेंटेनेंस, गनरी, उसकी रेडियो कैसे चलती है।
0: ओके
1: और उस जमाने में जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारे पास विजंत होते थे,
0: या विजंत
1: T-55,
0: या
1: और उसके बाद देन T-55 से हम T-72 में ग्रेजुएट हुए,
0: जी।
1: जिस पर मैं इंस्ट्रक्टर भी था।
0: ओ
1: मैंने
0: वाह।
1: अहमदनगर में आई वॉज इंस्ट्रक्टर ऑन T-72 टैंक, एंड अब तो T-90s एंड अर्जुन आ गए हैं, उसके भी अपग्रेडेड वर्जन्स।
0: अपग्रेडेड वर्जन है सर। टैंक के बारे में मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं दे वुड ऑल्सो वॉन्ट टू लिसन, कि टैंक का पहला जब आप देखते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो फौलाद लगता है पूरा, है ना? सो यू वेंट देयर बाय चॉइस और?
1: माई फर्स्ट चॉइस इन द इंडियन मिलिट्री अकेडमी वॉज द टैंक रेजिमेंट
0: ओके
1: आर्मर को, एंड आई ज्वाइंट द रेजिमेंट कॉल्ड डेक्कन हॉर्स,
0: डेक्कन हॉर्स।
1: जो कि 1790 में रेज हुई थी एज द
0: वाह।
1: प्राइवेट आर्मी ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद, एंड
0: ऑलराइट।
1: देन इट वेंट थ्रू वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट बिकेम रॉयल डेक्कन हॉर्स एंड देन द डेक्कन हॉर्स आफ्टर 1947। एंड वी हैड ए मुस्लिम स्क्वाड्रन इन बिफोर 1947।
0: अच्छा।
1: आफ्टर पार्टीशन दैट स्क्वाड्रन वेंट इन टू पाकिस्तान इन ए रेजिमेंट कॉल्ड प्रोबिंस हॉर्स
0: ओके
1: फॉर क्वाइट सम टाइम। एक्चुअली स्ट्रेंजली वी यूज्ड टू हैव अ कॉमन न्यूज लेटर ऑल्सो, आई थिंक, वेयर प्रोबिंस हॉर्स सॉर्ट ऑफ बिकेम अ सिस्टर रेजिमेंट
0: ओके
1: दो इन ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर।
0: ओके
1: एंड वी हैड वन ऑफिसर ऑल्सो टिल क्वाइट लेट गोइंग टू लंडन UK टू अटेंड द ब्रिटिश ऑफिसर्स हूज टू होस्ट
0: जी।
1: देयर फादर्स और दे देमसेल्व सर्व्ड इन द रॉयल डेक्कन हॉर्स और द प्रोविंस हॉर्स। सो इट
0: सर,
1: वाज क्वाइट अ
0: डेकन हॉर्स के साथ जुड़ने के बाद वो जज्बा कैसा आया? कुछ वो अंदर की, आपके अंदर की भावना यू वांट टू शेयर विद अस?
1: यस आई वाज ऑलवेज ए कैवलरी मैन। हम ब्लैक बेरेज पहनते हैं, काली टोपी,
0: जी।
1: एंड हम लोग वन ऑफ द टू फाइटिंग आर्म्स हैं, एक इन्फेंट्री होती है, एक टैंक्स होते हैं। जो
0: ओके
1: इन्फेंट्री होती है वो
0: जी
1: बेसिकली जब लड़ाई होती है तो अगर पहाड़ों में है तो इन्फेंट्री आगे होती है, टैंक्स नहीं जा सकते, लेकिन पंजाब या राजस्थान जो प्लेन्स में होता है
0: जी
1: तो सबसे पहले जब लड़ाई शुरू होती है टैंक्स आगे जाते हैं,
0: ओके
1: वो लीड करते हैं,
0: ओके
1: दे ऑक्यूपाई ए पीस ऑफ लैंड एंड देन द इन्फेंट्री गोज एंड ऑक्यूपाइज इट,
0: जी
1: ये अब हमारा हुआ एंड यू गो फॉर योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। सो दैट इज वॉट द टैंक्स टू। इट्स ए टफ लाइफ, गर्मी होती है, अंदर बैठने की बहुत कम जगह होती है।
0: हाँ, वो थोड़ा हम जानना चाह रहे थे कितनी जगह होगी सर लगभग।
1: आपने पता नहीं वो अभी मूवी आई थी 21 करके,
0: जी
1: जो पूना हाउस की,
0: जी
1: अरुण खेतर पार्क
0: जी
1: पर,
0: जी जी
1: तो उसमें टैंक कमांडर की एक ही सीट होती है, ये ऊपर कपोला होता है, उसमें बैठ के ही जाना है, वहीं सोना है, अपने सब कुछ वहीं करना है।
0: ओके
1: एक स्ट्रेंज बात मैं आपको सीक्रेट
0: जी
1: बताता हूँ
0: जी
1: कि विजंत टैंक में बहुत जगह होती थी, तो
0: अच्छा।
1: हम लोग जो जवान, जब ड्राइवर एक्सरसाइज कर रहा होता तो आपने रेस्ट करना है, आप नीचे स्लीपिंग बैग लगा के सो भी सकते थे,
0: अच्छा
1: लेकिन जो रशियन टैंक है वो बड़ा कॉम्पैक्ट होता है,
0: which is T92
1: T72 T-

0: T-55, T-54 होते थे उसके पहले, अब T-90s. कॉम्पैक्ट टैंक, उसमें एक गनर होता है, एक कमांडर होता है, एक ड्राइवर होता है.
1: उसके पीछे भी कोई वजह है कि आप अंदर उतना स्पेस नहीं दे रहे?
0: नहीं, उसमें बिकॉज स्पेस इसलिए नहीं है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर गैजेट्स इन दैट. बहुत सारे गैजेट्स हैं, यू नो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, यू नो, गनरी के गैजेट्स हैं, रेडियो के गैजेट्स हैं, ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस के गैजेट्स हैं. सो यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम. देयर इज लॉट ऑफ एम्युनिशन स्पेस दैट इज केप्ट टू लोड एंड रीलोड द बैरल.
1: तो आज के टैंक्स भी डिजिटाइज हो गए हैं?
0: सॉर्ट ऑफ डिजिटाइज. तो कंप्यूटर तो नहीं है अंदर एज फार एज आई नो नाउ.
1: देखिए, बट सिविलियन हूँ, सिविलियन वाले सवाल पूछूंगा.
0: हाँ जी.
1: क्या पता आपके पास एक जीपीएस है, आपको अपनी लोकेशन, अपना रूट आप देख रहे हो, यू नेवर नो. अंदर आपके पास जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो शायद बदल गई हो. इट्स मोर टूवर्ड्स कुछ ऐसा जानना चाह रहे
0: हैं. के पास पहले एक नेविगेशन सिस्टम होता था, क्वाड्रात.
1: ओके.
0: वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम था, खाली कमांडिंग ऑफिसर्स के टैंक में लगा होता था.
1: जी.
0: लेकिन अब तो यू नो जीपीएस है तुम्हारे पास. इनफैक्ट आई थिंक एक्चुअल वॉर, टैंक्स की वॉर रियली स्पीकिंग हुई नहीं है.
1: ओके.
0: लेकिन नेविगेशन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम नाउ, एज यू नो, यू हैव इवन गूगल मैप्स.
1: वही मैं जानना चाह रहा था आपसे कि पर आप सोचिए, एक अगर मैं सिविलियंस के लिए थोड़ा समझना चाहूँ, सोचिए हमारे टैंक्स हैं, एक एक समय में अगर 10 टैंक्स अटैक के लिए जा रहे हैं, आपने सारा जो प्लान है, आपका जो मिशन है, वो सब कैलकुलेटेड है.
0: करेक्ट.
1: पर किसी वजह से आपको थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ा, चार टैंक्स इधर गए या उधर गए, या आप ऐसे माहौल में फंस गए जहां आपके यू नो व्हाट यू प्लान कुड नॉट हैपन, नाउ यू हैव टू फेस. सो हु गाइड्स द रूट, वहां आप कैसे वो गाइडेंस लेते हैं?
0: सी, देखिए ऐसा होता है, पहले तो ये सारी डिस्कशन सैंड मॉडल पे हो जाती है.
1: ओके.
0: कि क्या करना, कैसे करना, कहाँ जाना. देर इज, हमें मैप्स, हमारे जमाने के टाइम में मैप्स इशू होते थे, ग्रिड मैप्स, और उस पर हम लोकेशन कर देते अपने ऑब्जेक्टिव और कैलकुलेट कर लेते थे कितना टाइम है, किस स्पीड पे, कितने टाइम लगेगा वहां पहुंचने के लिए.
1: जी.
0: फिर हमारे ईच रेजिमेंट में एक तीन स्क्वाडन होते हैं, और हर स्क्वाडन में ट्रुप्स होते हैं, तीन ट्रुप्स.
1: ओके.
0: हर ट्रुप में तीन टैंक होते हैं. तो यू नो, सो बेसिकली यू हैव ए स्क्वाडन कमांडर, ए ट्रुप लीडर जो सबसे जूनियर होते हैं. देन यू हैव ए स्क्वाडन कमांडर एंड देन यू हैव द रेजिमेंटल सीओ. दे ऑल आर ऑन अ रेडियो नेट टुगेदर.
1: ओके.
0: सो जो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं वो आपको इंट्रा नेट पे सारी इंस्ट्रक्शन सेम मिल रही है. अल्फा स्क्वाडन आप लेफ्ट जाइए, चार्ली स्क्वाडन आप राइट जाइए, ब्रावो स्क्वाडन होल्ड करिए, यहाँ पे होल्ड फायर, ये सारी होती है. जो सीओ होता है वो एक दूसरे नेट पे होता है जो उसके बॉस के साथ होता है.
1: okay.
0: ब्रिगेड कमांडर है और जीओसी के नाम, उसको वहां से इंस्ट्रक्शन आ रही है. वो इंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिलती है.
1: ओके.
0: हम लोग अपने रेजिमेंटल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं जो सीओ ऑर्डर करता है कि ठीक है, राइट फ्लैंक से फायर आ रही है, चार्ली स्क्वाडन आप राइट फ्लैंक पकड़िए, अल्फा स्क्वाडन आप लेफ्ट फ्लैंक.
1: स्पोर्ट्स वाली लैंग्वेज आ रही है, राइट फ्लैंक लेफ्ट फ्लैंक, फुटबॉल वाली.
0: इनफैक्ट दैट इज द लैंग्वेज यूज्ड आल्सो इन द आर्मी.
1: अच्छा.
0: देयर फ्लैंक्स आर देयर. देखिए, बेसिक वॉर का टेक्निक होता है कि अगर एनिमी फायर कर रहा है तो आपको एनिमी का हेड डाउन कर रखना है.
1: ओके.
0: क्योंकि अगर आपने अटैक करना है उसके पहले एनिमी को बोलना है भाई यू मेक हिम बिजी एल्सवेयर, यू टेल योर आर्टिलरी कि वो गोले बरसाए उनके ऊपर, वो ट्रेंचेस में आए हैं जहां पर भी हैं, टैंक्स में, और यू टेल योर एयर फोर्स टू बम्बार्ड ए पर्टिकुलर टैंक सेक्शन.
1: ओके.
0: सो दैट द एनिमी इज बॉग डाउन एंड इट इज बिजी बिकॉज इट्स डाउन बिकॉज इट इज बीइंग बम्बार्डेड फ्रॉम ऑल ओवर एंड दैट इज द टाइम यू हैव योर ऑलरेडी सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस टू गो फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट और फ्रॉम द रेयर एंड अटैक द एनिमी. You don't want to face an enemy which is up and about and free to fire at you.
1: शायद यही guns जो हैं कारगिल में भी कुछ ऐसे ही हो रहा था.
0: हाँ.
1: उसके बारे में बात करेंगे सर. yes. क्योंकि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेने का मन कर रहा है. आप लोगों की तरफ से ये गीत हमारे सिविलियन भाइयों के लिए.

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जॉली और हमारे साथ आज के जो मेहमान है संदेश टू सोल्जर्स में वो है मेजर एस के यादव। आपका निकनेम मिकी है,
1: करेक्ट?
0: एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट?
1: क्लास टू में मेरी स्कूल टीचर ने मेरा नाम रख दिया था मिकी माउस और दैट नेम स्टक। वेरी फनीली आमड कोर में अगर आप किसी को बोलोगे डू यू नो मेजर स्वदेश कुमार यादव, दे विल लुक ए ब्लैंक, बट इफ यू टेल देम डू यू नो मेजर मिकी यादव, दे विल ऑल नो।
0: ओह वंडरफुल, रियल मेट्स आप लोग रहते हैं फौज में, है ना सर?
1: एब्सोल्युटली।
0: हम लोग टैंक्स के बारे में बात कर रहे थे, टैंक की लाइफ। आपने कहा कि अंदर की लाइफ लगता है कि टैंक जा रहा है, टैंक ने फायर किया, ये हुआ हुआ, लेकिन अंदर की लाइफ उतनी आसान नहीं होती, आप बिजी रहते हैं, है ना?
1: 55 डिग्रीज तक हीट में, समर्स में टेम्परेचर जाता है, उसके अंदर रहना पड़ता है। और एक्चुअल वॉर सिनेरियो में तो आपका कपोला ऊपर से बंद है, सीन है,
0: ओके,
1: एंड यू आर एक्चुअली लुकिंग थ्रू ए सॉर्ट ऑफ ए पेरिस्कोप,
0: या
1: उसमें से आप देख रहे हैं एनिमी को। सो इट्स ए वेरी टफ सॉर्ट ऑफ ऑपरेशनल लाइफ इन द टैंक, इनसाइड द टैंक।
0: ऑलराइट, हम जब 26 जनवरी की परेड में देखते हैं कि टैंक्स आ रहे हैं और जो भी कमांडर हैं वो सल्यूट ले रहे हैं माननीय राष्ट्रपति जी से, लेकिन टैंक चलाने वाले कोई और हैं, तो वो उसी पेरिस्कोप से रूट देख रहे हैं?
1: हाँ, इनफैक्ट आई मस्ट इन्फॉर्म यू दैट मैंने वन ऑफ दिस परेड्स कमांड की है।
0: ओह वाओ,
1: कॉम्बैट टीम एज ए यंग मेजर था तब मैं
0: जी,
1: तो मैंने रिपब्लिक डे परेड पे आई गेव द सल्यूट टू द प्रेसिडेंट।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बेसिकली एक गनर होता है और जब सल्यूटिंग डाइस पे जाते हैं तो गनर को इशारा मिल जाता है कब उसने गन को राइट टर्न करना है और डिप करना है, विच इज द सल्यूट, रेस करना है, सामने जाना है और कैरी ऑन करना है। तो दैट इज द ऑर्डर, दैट इज ऑल द गनर्स टेक्निक, द कमांडर हैज टू ओनली सल्यूट विद हिज हैंड।
0: सब बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना एक गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि 26 जनवरी की परेड पर मैं भी जो आंखों देखा हाल है वो हम लोग कमेंट्री कर चुके हैं वहां पे, बट जब आप लोग टैंक्स लेके वहां जाते हैं ना, हम लोग को बड़ा बहुत गौरवान्वित फील करते हैं।
1: हाँ,
0: कि हिंद की सेना जा रही है ये।
1: हाँ, टैंक एक सिंबल बन गया है सॉर्ट ऑफ आर्मर्ड आर्मी का, जो आर्मर्ड विंग है उसका, जो तोपखाना कह दीजिए
0: जी,
1: तो इट इज बिकम अ सॉर्ट ऑफ, यस इट इज डिवेस्टेटिंग एंड इट इज आई हैव हैड ए गुड टाइम इन माय टैंक रेजिमेंट, बिकॉज फील्ड फायरिंग होती है, हमारी प्रैक्टिसेस होती है रेंजेस पे, उसमें तो काफी कुछ ट्रेनिंग होती है उस पे, दैट इज हाउ यू सॉर्ट ऑफ टैंक वॉरफेयर इज ऑपरेटेड।
0: और वो जो आपकी ट्रेनिंग है दैट इज a tough training, it is not like chalo yaar aao practice karte hain, no, it's like that's the real war situation,
1: real life scenario, war situations create hoti hain
0: ji
1: Rajasthan deserts mein, aur wahan jaakar hum log practice karte
0: hain। Okay सर, मैंने कुछ मैसेजेस मंगाए हैं कुछ बहुत देश प्रेम के साथ, बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं वो मैसेज भेज रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि अहमदनगर से एक मैसेज आया है और वो कह रहा है मेरा नाम गजानन शिंदे है, गांव करजत जिला, और उसका नाम अभी अहिल्या नगर कर दिया गया है। सर ने अभी अहमदनगर की बात की तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। आप शायद इनको तो गजानन शिंदे जी को नोन टू यू?
1: Not known to me, but yes, there are a lot of Shinde in that region, and Ahmednagar का जो आमटको स्कूल सेंटर एंड स्कूल है
0: जी,
1: वो एक सेंट्रल पॉइंट है, मेनली उसी की वजह से वो टाउन ग्रो किया एक तरह से।
0: ओके,
1: जो सारी ट्रेनिंग जो हमारी होती है, चाहे रेडियो की, ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस की, गनरी की ट्रेनिंग, टैक्टिकल ट्रेनिंग, वो सारी जो बेसिक्स होती है वहीं पे हम लोग सीखते हैं,
0: एंड एवरीवन नोज अबाउट इट, देयर इज नो सीक्रेट इन इट। क्योंकि आप एयर पे बोल रहे हैं तो मैं अगर अहमदनगर के

0: स्टेशन भी बता दूं तो भी कोई दिक्कत
1: नहीं,
0: नहीं?
1: इट्स अ पीस स्टेशन
0: हाँ,
1: एंड इट इज बेसिकली ट्रेनिंग फॉर ट्रेनिंग हम लोग जाते हैं
0: शिरडी के पास जो अहमदनगर है, आप उसकी बात कर रहे हैं?
1: बिल्कुल।
0: ऑलराइट, आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे वहां सर, वो जो आप फायर करते हैं जब टैंक से, उसकी एक्यूरेसी पे तो बहुत काम करते होंगे आप लोग।
1: हाँ, तो उसी के लिए हम फील्ड फायरिंग ट्रेनिंग करते हैं
0: जी,
1: जो कि हमारे रेंजेस हैं वेरियस प्लेसेस पे, बबीना में है, झांसी के पास, तो वहां पर जाके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, गनरी देखते हैं पूरी। एंड उसमें एक चीज होती है, आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि जब मैं यंग ऑफिसर था तो एक एम ऑफ होता है, मैं एक एक्सरसाइज में था कॉल्ड ब्रास टैक्स,
0: ओके,
1: जो ऑपरेशनल था, ऑलमोस्ट वी हैड गॉन अक्रॉस
0: जी,
1: एंड आई वाज कमांडिंग अ स्क्वाड्रन।
0: ओह।
1: एंड वहां पे हम लोग चाय पी रहे थे सुबह सुबह, रात को हमें ट्रेवल, हम खाली रात को अपने कैमोफ्लाज नेट निकालकर रात को घूमते थे और अपनी लोकेशन चेंज करते थे एवरी नाइट, क्योंकि हम लोग स्पॉटेड हो जाते थे, और डे टाइम में अपने कैमोफ्लाज नेट लगा के चुप के बैठते थे। तो डे टाइम में हम सोते थे, रात को जगते थे।
0: ये कौन सी लोकेशन थी सर, अभी बताना ठीक है?
1: समवेयर इन द डेजर्ट बॉर्डर, उसके जैसलमेर के आगे आसपास,
0: ओके,
1: बॉर्डर के टाइम
0: जी।
1: तो वहां पे मुझे याद है सुंदर जी आर्मी चीफ थे, और मैं चाय वगैरह, चाय नहीं पी रहा था, सॉरी 11 बज गए थे, 10-11 बज गए थे। सो
0: मत बताइए क्या पी रहे थे रात के 10-11 बजे।
1: दो तीन हेलीकॉप्टर्स ऊपर घूम रहे थे, तो उस जमाने में ये जहरो वगैरह इतना, नेविगेशन की जो आप बात करें इतना नहीं था, जो पायलट्स होते थे वो अपने थाईस पर एक मैप रखते थे, और
0: आजकल भी रखते हैं।
1: हाँ, रखते हैं, वो
0: हम लोग रखते हैं।
1: डेजर्ट में बड़ी मुश्किल होती है नेविगेशन, कई बार खो जाते थे कि भाई कहाँ जाना है, तो हम लोग अपनी टोपी शोपी लाते थे, नीचे आ जाते थे, निकलते थे, एनडीए का ही निकला कोई कोस्ट हेलीकॉप्टर, तो एक हेलीकॉप्टर नीचे निकला, उसमें से निकले सुंदर जी एंड एक थे जो हमारे तब के अरुण सिंह जी, राज्य रक्षा मंत्री,
0: ओके,
1: तो वो आ गए, और सुंदर जी मुझे पहचान गए क्योंकि मैं एडीसी था आर्मी चीफ का, तो उसने बोला मिकी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मैंने कहा सर मैं आई एम कमांडिंग स्क्वाड्रन हियर, तो उन्होंने बोला आप इनको अरुण सिंह जी को ना टैंक के बारे में बताइए, तो मैं इंस्ट्रक्टर था तो मैं टैंक पे उनको ले गया ऊपर, बट आई वॉज सरप्राइज दैट ही हैड सो मच नॉलेज अबाउट दैट टैंक।
0: अच्छा,
1: तो अभी आपने एमिंग की बात की, तो उन्होंने मेरे से एक चीज पूछा कि आप अगर एम ले रहे हैं एनिमी के टैंक के ऊपर तो आप सीधा फायर करते हैं के थोड़ा, तो मैंने कहा नहीं सर, उनको मालूम था एक चीज होती है एम ऑफ,
0: ओके,
1: अगर यहां से आप फायर कर रहे हैं 1 किलोमीटर दूर
0: जी,
1: तो आप सीधा फायर करेंगे तब तक टैंक निकल जाएगा, तो आपको एक एम ऑफ लेना पड़ता है,
0: गॉट इट,
1: कि आपने उस पॉइंट पे लाना है और कैलकुलेट करना है कि वो टैंक उसी पॉइंट पे यूं ऐसे तभी आएगा,
0: मूविंग व्हीकल पे आपको कैसे स्ट्राइक करना है।
1: सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड वेरी टेक्निकल, एंड आई वुड कॉम्प्लीमेंट दैट टाइम आरआरएम, आई मीन ही हैड लॉट ऑफ नॉलेज।
0: कोई कॉम्बैट कभी मौका मिला?
1: हाँ, मुझे वैली शैली में, नॉर्थ ईस्ट में मौका मिला है। एक्चुअल लड़ाई तो 71 वॉर की देखी नहीं, हम तो बच्चे थे
0: जी,
1: कारगिल वॉर तक मैंने फौज छोड़ दी थी, शायद नॉट लेफ्ट एंड टेकन पार्ट, बट देन टैंक्स का इतना रोल नहीं था वहां पर।
0: पर पहाड़ों में हम लोग जब बात कर रहे थे कि जिस तरीके से शेलिंग हम लोग करते थे, आप अभी हम टैंक्स के जब आप बता रहे थे कि किस तरीके से आप आपका जो दुश्मन है उसका हेड डाउन करने पर मजबूर करते हैं, कैन वी कम बैक टू दैट?
1: यस, सो व्हाट हैपेंस इज दैट, लेट मी टेल यू अबाउट कारगिल ऑल्सो। कारगिल में भी जो लड़ाई हुई है ऊपर जो चढ़े हैं, जो सपोर्टिंग जो फायर्स दिए हैं वो आर्टिलरी गन्स ने दिए हैं, वो सॉफन करते हैं टारगेट को। सॉफन मतलब कि जो बंकर्स हैं ऊपर उनके ऊपर धड़ाधड़ बहुत हैवी फायरिंग होती है, और दैट इज द ओनली वे वेर जो इन्फेंट्री है उसको एक वर्टिकल क्लाइंब करनी है,
0: ओके,
1: तो ऊपर से तो वो शूट डाउन हो जाएंगे, तो उनका सिर नीचे रखना है, उनका ध्यान निकालना, उनको इतनी हैवी बम्बार्डमेंट करनी है कि वो खड़े होकर शूट भी ना कर पाए और हमारी फौज वहां तक पहुंच जाए,
0: ओके,
1: तो दैट इज एन अटेम्प्ट। उसमें मरते हैं और कुछ जांबाज जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं वहां जाके, और फिर हैंड टू हैंड फाइट होती है,
0: जो कि हुआ, मतलब हमने देखा वहां,
1: बिल्कुल हुआ,
0: हमारे पीवीसी जो है परमवीर चक्र से विजेता हमारे शो में भी आ चुके हैं,
1: यस यस एब्सोल्युटली,
0: संजय कुमार।
1: और यही चीज जब पंजाब साइड या प्लेन्स में होती है वहां टैंक्स का रोल,
0: वहां टैंक्स का रोल,
1: क्योंकि वहां पे कोई चढ़ाई नहीं करनी है, वहां पे बैटल फील्ड आ रही है, टैंक कॉलम्स आ रहे हैं, आरटी आ रही है, आपने टेक ओवर करना है, तो टैंक्स लीड करते हैं वहां पे.
0: ओके.
1: और आजकल तो बीएमपी आ गई है जिसमें, और टैंक्स पर भी इन्फेंट्री को हम अपने पीछे कैरी करते हैं.
0: राइट.
1: तो हम आगे तक जाते हैं और टैंक्स एक्चुअली गो एंड अटैक, टेक ओवर द प्लेस एंड कैरी ऑन फॉर द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. इन्फेंट्री जो पीछे आ रही होती है बीएमपी में, वो उतरती है और फिजिकली वहां पहुंच जाती है पॉइंट पे, अपने ट्रेंचेस डिग करती है और वो बैठ जाती है, ये हमारा हो गया एरिया.
0: बट सर, आज के टाइम में, जस्ट अ लेमैन क्वेश्चन, टैंक जहां पे हम मिसाइल की बात कर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स की बात कर रहे हैं, तो टैंक के लिए इट्स मोर डिफिकल्ट द रेजिमेंट, और इट्स लाइक दे हैव देयर ओन वेज टू हैंडल सच अटैक्स?
1: यू सी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है
0: जी,
1: दिस वॉज ए टोटली डिफरेंट ऑपरेशन. इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली डिड नॉट रियली क्रॉस द बॉर्डर and we had remote controlled drones. We set off missiles without crossing the border. The aircraft shot their targets without really crossing the border. It was a totally different game, and I would credit this war a lot to the Indian artillery, because artillery ka role bada heavy tha idhar. They have these long range guns and they had their own targets and they were doing it. Mauka nahi mila Operation Sindoor mein, shayad agar war 2-4 din aur chalti to armored aur infantry bhi andar jaake fir karna padta to wo dusri baat thi, lekin wo hua nahi.
0: Okay. Right sir, ek hamare listener hain and he's from Tamil Nadu, Sri Rangam Rajesh, Sri Rangam Tiruchirappalli, Tamil Nadu se likh rahe hain message. एंड आपको गुड इवनिंग कहते हो, कह रहे हैं कि बॉन्डेड मेजर एस के यादव सर, मिकी यादव सर, ग्रीटिंग्स टू योर बॉन्डेड द कंपनी है. एंड ऑफकोर्स हम यहां पर उनका जो मैसेज पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं मराठा ग्रीटिंग्स टू योर बॉन्डेड व्हाट्सएप टू एंड योर MH-16 अहमदनगर अहिल्या नगर मराठा बॉन्डेड रेजिमेंट टू एंड बॉन्डेड कैवलरी कैवले यादव सर टू. आई डोंट नो व्हाट ही मीन्स बाय दैट, बट समथिंग ही इज रिटन टिपिकल ऑफ महाराष्ट्र इज वणक्कम, एंड दैट इज समथिंग वेरी स्वीट. समबडी नोन टू यू?
1: यस, नो, नॉट नोन टू मी, बट यू नो वणक्कम आई थिंक इज नॉट अ महाराष्ट्रियन वर्ड, परहैप्स तमिल वर्ड.
0: तमिलनाडु से लिख रहे हैं और
1: ही हैज द स्पिरिट.
0: सारा किया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय तमिलनाडु, जय भारत, दैट्स द स्पिरिट दैट वी लिव विद, है ना.
1: कैवलरी रेजिमेंट को ऑफिसर्स को कई बार कैवलियर बोल जाते हैं. ओके, दैट इज व्हाट इज मेंट.
0: ओके, सूरज जी हमें दिल्ली से कह रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं 20 वर्ष का हूं और सिविलियन हूं, बहुत डिसिप्लिन रहना चाहता हूं, कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों की बातें सुन के प्रोत्साहन मिलता है. और साथ ही साथ हम आगे बढ़ रहे हैं सर, आपने ऑपरेशन सिंदूर की जब बात की तो मैं फिर से जानना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा, इफ इट्स अलाउड टू डिस्क्लोज, हमारी टैंक रेजिमेंट एक्टिव तो थी पर कितना, मतलब बहुत चौकन्नी भी थी, एंड इट्स लाइक
1: No, no. In entire Operation Sindoor, mein, all our fighting arms, whether the tanks, infantry, they were in operational stage.
0: Ji.
1: Chutti leave was all cancelled. One did not know which way the war would go.
0: Okay.
1: And initial war, jo shuru hua hai, that was all, as I said, an air force war, an artillery war.
0: Yeah.
1: The tanks and the infantry was not used, but they were operationally ready. To go in should the orders come, and they were absolutely ready to.
0: Okay. मैं सीधे tough questions पूछता हूँ सर आपसे, क्योंकि आप tank regiment, आप उसका अंग रह चुके हैं, you headed your own group. Has it become more difficult now to step into the enemy zone इस modern era में?
1: You see, देखिए ऐसी बात है कि technology जिसके पास है, I would say he has an upper hand.
0: Superior.
1: Yes.
0: Okay.
1: So, apparently, the Chinese did give them a lot of technology, due to which there were some early, they tried to do something here and there. Turkey intervened, gave them the drones and stuff like that.
0: Ji.
1: But we are, dekhiye, technically and otherwise, Pakistan is no match to the Indian Army at all. And I'm saying this on air. There's no match at all. In a live war, in a conventional war today, they would not last more than 72 hours at the most. Not at all. There's no match at all.
0: Sir, हमें news on AIR के माध्यम से हमारी सरहदों के पार फीजी आइलैंड से लेकर ब्राजील, कनाडा, यूरोप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट में सुना जा रहा है। दैट्स अ बोल्ड कॉमेंट।

0: statement that
1: No,
0: you've
1: I
0: given.
1: meant every word of it, and knowing the Indian Army, the capabilities, yes, it has not been tested fully in operational Sindoor, but should it be repeated ever, I think it will come to light what the Indian Army is about.
0: ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अफसोस की बात है ना सर, और एक तरीके से हम एनिवर्सरी मना रहे हैं, थोड़ा दुख है कि पहलगाम में वो चीज़ हुई और उसके
1: Absolutely.
0: बाद भारत ने जवाब दिया, दुख है कि हमारे को सिविलियन लाइव्स खोनी पड़ी, उसका तो दुख है। एक छोटी सी, अगर आप परमिशन दे तो एक छोटी सी झलकी ऑपरेशन सिंदूर की
1: Sure.
0: लेते हैं, और इस छोटे से किस्से में सब कुछ समझ में आ जाएगा, और आपका जो जज्बा मैं देख रहा हूँ सर आपकी आंखों में, आह लाजवाब है सर। इसे सुनते हैं सर।
2: मेरे बेटे को बचा लो।
3: हाँ बचा देगा, कोई बात नहीं। बेटे के क्या हुआ, इसको क्या हुआ?
2: प्लीज प्लीज प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड।
3: ओके, डोंट वरी, डोंट वरी, यू ओके, यू नीड अ वाटर सर? अपने आप बोले ना, मुझे
2: यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी।
3: यहाँ पे
2: उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी।
4: The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect.
5: I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backer.
6: Operation Sindoor 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था।
4: इट वॉज डीम्ड एसेंशियल दैट द परपेट्रेटर्स एंड प्लानर्स ऑफ द 22nd अप्रैल अटैक बी ब्रॉट टू जस्टिस।
7: 9 टेररिस्ट कैंप्स वर टारगेटेड एंड सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड।
8: दीज लोकेशंस आर लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, म्यानो, छोर एंड नियर कराची।
9: टू टारगेट सिविलियन पॉपुलेशन, इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट एंड इट्स वेरी वेरी
10: पॉइंट आउट।
11: वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्वड इन द मिडल ऑफ वॉर दैट्स फंडामेंटली नन ऑफ आवर बिजनेस।
12: द टेररिज्म एंड फंडिंग एंड बैकिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैज बीन एंड वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान्स हिस्ट्री।
4: दिस वाज टाइम टू कन्वे सम मैसेज टू आवर एडवर्सरीज।
13: वी वर ऑफ कोर्स प्रिपेयर्ड।
14: Few things have been said at the level of the Prime Minister.
5: भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
14: And this has never happened in the history of independence.

0: You were happy with the how the forces responded. I mean, I know it's a funny question, but आपके कुछ सुनना चाह रहे हैं ना आपसे, इसीलिए ऐसा सवाल पूछा. Were you also willing to go कि यार मुझे बुला लो, मैं भी आता हूँ.
1: There and serving at that time because बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया ने और उनके जो मारे हैं हमने एयरफील्ड्स पे ऑलमोस्ट नॉक knocking on the door of their nuclear capabilities. It's a big thing. It was a big signal given to them.
0: And that technology you are saying ki yehi superiority aap bata
1: rahe hain. Yes, okay. The Air Force has that. I mean, it was pinpoint sort of, you know, absolutely, they were knocking on the door of their nuclear storage facility, which is a big thing.
0: Okay. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारा डिफेंस भी अच्छा होना बहुत जरूरी है ना. वी डिफेंडेड वेल ऑल्सो. ऐसा तो नहीं है कि वहां से अटैक नहीं आया. अटैक्स तो बहुत आए लेकिन सारे विफल किए हमने.
1: एब्सोल्युटली उनके बेसिकली ड्रोन अटैक्स थे. अटैक तो क्या आया था उनका, मतलब एक आध कोई मिसाइल उन्होंने दिल्ली की तरफ भी डाला था जो कि मेरे ख्याल से मिडवे पंजाब में कहीं ऑलरेडी शूट डाउन कर दिया गया था.
0: बट हाउ डू यू नो कि वो दिल्ली की तरफ आ रहा था सर? हमारी टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल फायर होता है उसका रूट पता लग जाता है.
1: जब एनालाइज करते हैं जो मिसाइल को तो उसकी रेंज देख लेते हैं ना. अगर लाहौर से उस एरिया से जहां से अगर लॉन्च किया है, अगर वो दिल्ली रेंज में है तो ऑब्वियसली इट्स ए सिटी व्हिच इज बीइंग टारगेटेड. सो इट वाज डाउन्ड. इट वाज एब्सोल्युटली शॉट डाउन. So that's a big thing, and I think that was the only real thing which was threatening to the city, and I was very

0: आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और बहुत ही खास हमारे साथ यहाँ पे हमारे गेस्ट हैं आज के, और वो हैं मेजर एस के यादव। और बहुत सारे लोग आपको, आपके जो कॉलीग्स हैं वो आपको मेजर मिकी यादव भी कहते हैं। ओके, आप लोग का एक सॉलिड ग्रुप है, आपने कहा कि वी आर स्टिल बॉन्डेड टुगेदर। व्हाट्सएप का आपने कहा था कि ग्रुप है, तो इन ऑल कितने लोग होंगे उसमें?
1: एनडीए का ग्रुप है, हम लोग करीब 350 लोग थे जो पास आउट हुए थे एनडीए से। देखिए, एनडीए का ग्रुप अलग है, आईएमए का ग्रुप अलग होता है। जो एनडीए के थ्रू नहीं गए लेकिन डायरेक्ट एंट्री होते हैं, तो दो ग्रुप्स हैं।
0: ओके,
1: तो एनडीए को हम बॉन्डेड बोलते हैं, बॉन्डेड ग्रुप है।
0: सो वो जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तब आप लोग कैसी बातें कर रहे थे?
1: और डिस्कशन होती थी और डिबेट्स भी, क्योंकि इसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हम तीनों थे कोस्ट गार्ड। तो एयरफोर्स वाला अपना एक्सपर्ट बताता था, आर्मी वाला अपना, और नेवी वाला, वो जो देवर नेवी वाज ऑपरेशनली रेडी एक्चुअली फॉर द ब्लॉकेड।
0: मेरा अगला यही सवाल था कि सर आपको तो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट मिल रही होगी।
1: हाँ, ऑन द ग्रुप वॉट एवर दे आर ऑल्सो दे यूज टू प्रेडिक्ट, दे टू से वॉट शुड बी डन, वॉट वॉज नॉट डन राइटली, वॉट वॉज डन राइटली, एंड वी यूज टू डिबेट ऑल दैट।
0: एंड ऑफकोर्स एक जज्बा बॉलीवुड भी तो लेकर आता है ना आप लोगों के लिए। आई एम श्योर आप गीत सुनते हैं कभी, गीत सुन के भी एक जज्बा जोश आ जाता है। हम लोगों को तो आता है, आप लोगों को भी?
1: एब्सोल्युटली।
0: आकाशवाणी के साथ आपका कैसा लगाव रहा है?
1: पर्सनली मेरा फेवरेट है आपका रेनबो, बिकॉज इट गिव्स मी lot of retro music also, it gives me all sorts of music, so I like it, it's my favorite.
0: FM Gold भी है जिसमें,
1: FM Gold है, I like it.
0: तो आपने कब वास्ता कब पड़ा आपका रेडियो से?
1: देखिए, रेडियो तो ever since we were commissioned, हमारे पास तब ट्रांजिस्टर होता था, एक छोटा सा FM तो नहीं था, तब ऑल इंडिया रेडियो चलता था, चाहे बॉर्डर पे हो, कहीं भी हो। इनफैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एक ANPRC 25 रेडियो सेट होता था। हम लोग जब रास्ता एक्सरसाइज में थे और हम लोग ट्यूनिंग करते थे, कई बार हम पाकिस्तान बॉर्डर पे थे तो उनके गाने आ जाते थे उसमें।
0: अच्छा, उनके गाने उनके, हमारे भी जाते हैं सर,
1: हमारे भी जाते हैं
0: जी।
1: तो उसको लगा देते थे, शेव करते करते गाने सुन लेते थे
0: जी,
1: वो जमाना था। सो रेडियो हैज हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली।
0: ऑलराइट, तो कोई गीत अभी आप अगर बोले, कौन सा गीत प्ले करें?
1: हाँ, एक तेरी मिट्टी, दिस इज रिक्वेस्ट फ्रॉम नीति, नीति भल्ला।
0: ओके, आप ही के बॉन्डेड जो ग्रुप है उन्हीं की सदस्य हैं?
1: फ्रेंड्स हैं, में से बॉन्डेड तो नहीं है, बॉन्डेड तो एनडीए वाला ग्रुप है, ये लेडी।
0: ऑलराइट, तो नीति जी आपकी फरमाइश पूरी हो रही है आकाशवाणी में।

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ मेजर एसके यादव हैं और T-72 टैंक के इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, टैंक रेजिमेंट के साथ रह चुके हैं। आपके पूरे इस करियर में विद द यूनिफॉर्म ऑन कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें हमारे सिविलियंस के साथ जो बड़ा यादगार है, एक्शन के दौरान या कुछ एडवेंचर?
1: पर्सनली मैं डिसिप्लिन के बारे में बता देता हूँ आपको। जब मैं यंग ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया था तो मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर था रेजिमेंट का।
0: वाह। और मेरे शो में स्पोर्ट्स आ ही जाता है, लोग कहते हैं आप जानबूझ के लाते हो, बट इट्स वंडरफुल टू हियर। प्लीज गो।
1: एक एडजुटेंट होता है हमारे, टोनी बेन्स, ही इज इन द यूएस नाउ, आई डोंट नो इफ ही इज लिसनिंग दिस, बट मैं नया था, मेरी 2 महीने की सर्विस थी।
0: ओके।
1: तो उन्होंने बोला शो मी द फुटबॉल शूज, डिस्प्ले करो कैसे हैं। तो मैंने शूज निकाले, डिस्प्ले कराए सारे रेजिमेंट के, तो एक शू में लेसेस नहीं थे, तो उसने उसकी वजह से मुझे गार्ड ड्यूटी, एक राउंड द क्लॉक गार्ड ड्यूटी की पनिशमेंट दी थी। उसमें क्या होता है कि यंग ऑफिसर को हर 1 घंटे बाद गार्ड रूम, एक जो हमारा होता है जहाँ पे हमारा एमिनेशन रखा होता है, वहां जाके साइन करना पड़ता है एवरी 1 आवर, स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट 9 PM टू मॉर्निंग 6 AM, सो दैट यू डोंट स्लीप।
0: अच्छा।
1: सो दैट इज अ पनिशमेंट फॉर द यंग ऑफिसर इफ यू मेक ए मिस्टेक।
0: ओके।
1: सो माय मिस्टेक वाज दैट आई डिड नॉट इंश्योर दैट देयर वर लेसेस इन द फुटबॉल शूज
0: एवर,
1: सो दैट आई टू ऑलवेज रिमेंबर।
0: बट इट ग्रूम्ड यू इनटू अ गुड इंडिविजुअल।
1: यस यस एग्जैक्टली। एनडीए में आल्सो आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि अगर आपके पास टेबल मैनर्स नहीं है, दे टीच यू अदर देन दे टीच यू थिंग्स लाइक टेबल मैनर्स, कर्टसी, ओपनिंग द डोर फॉर द लेडी, टेबल के ऊपर आप एल्बो रख के नहीं खा सकते। अगर आपके सीनियर ने आपको देख लिया तो वो आपका पूरा नमक आपके अंडे में डाल देगा,
0: वो बोलेगा खाओ,
1: पूरा आप खाओ, या पूरा का पूरा आपको बोलेगा टेबल के नीचे जाओ, और वो सारे वहां से जो गलती कर देते थे नीचे से उसको बम्प्स पिक किक करते थे। तो ये चीजें आपको याद रहती है लाइफ पर, यू नो कि।
0: बट आपको प्रॉब्लम नहीं होती ये सब डिसिप्लिन लेके जब आप सिविलियन सोसाइटी में आप जाते हैं?
1: काफी फौजियों को होती है, बट एडजस्ट करना पड़ता है, बट इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट। इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट।
0: तो गुस्सा कैसे चबाते हैं फिर आप?
1: अंदर अंदर हम बोलते हैं दीज ब्लडी सिविलियंस, जोकिंग करते हैं, दिस इज ऑल जोक्स, बट यू नो अगर कोई मैनर्स वूनर्स का अगर हमारे जैसे होता है तो हम अपने मन में ही करते हैं।
0: आप जब आपने अपनी सर्विस पूरी कर ली उसके बाद एडवेंचर में आप चले गए? बिल्कुल। नेचर से बहुत प्यार करते हैं।
1: चला गया था
0: जी,
1: एंड माई कंपनी वॉज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग बंजी जंपिंग इन टू इंडिया, वी वर द सेकेंड कंपनी टू ब्रिंग हॉट एयर बलूनिंग इन टू इंडिया, एंड वी टू सेट अप एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर ट्रैक्स, माउंटेनियरिंग स्टफ लाइक दैट, विच वी स्टिल डू। कंपनी आई डोंट नो वेदर आई कैन टेक द नेम ऑफ द कंपनी, वंडरलस्ट, एंड इट्स अ वेल नोन कंपनी नाउ।
0: तो आप एडवेंचर में, मतलब आपका शुरू से ही शौक था?
1: हाँ, ऑलवेज, राइट फ्रॉम द आर्मी डेज।
0: जब तक पैशन नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते ना काम,
1: आर्मी डेज से। एंड इवन नाउ टूडे आई एम ए ट्रैकर, आई ट्रैक अ लॉट, वी आर गोइंग फॉर ए हरकी डून ट्रैक नेक्स्ट मंथ नाउ, एंड वी डिड द ग्रेट लेक्स ट्रैक।
0: और कोई सिविलियन आपके साथ जुड़ना चाहे जो डिसिप्लिन्ड है वो जुड़ सकता है?
1: नहीं नहीं, सिविलियंस आर ऑल्सो डिसिप्लिन्ड, दे आर गुड लॉट, एंड आई हैव लॉट ऑफ सिविलियन फ्रेंड्स, एंड वी ऑल गो टुगेदर इन माई ट्रैकिंग ग्रुप या अदर ग्रुप्स।
0: कुछ

0: मॉडर्न सोसाइटी के जो युवा हैं जो आपको सुन रहे हैं, कुछ शायद चाहेंगे कि फौज में आए, कुछ नहीं आ पा रहे होंगे, तो वो फौजी जैसी जिंदगी, वो डिसिप्लिन लाइफ कैसे जिए?
1: देखिए, मेरा कहना है, एंड इट्स ए पर्सनल ओपिनियन, दैट एवरीबडी शुड स्पेंड सम टाइम इफ दे कैन इन द आर्मी फॉर इवन इफ इट इज फॉर 5 years, लाइक द शॉर्ट सर्विस कमीशन. ये जो बेस बनता है ना, जो शुरू का, एंड वो जो डिसिप्लिन जो बेस होता है वो अर्ली डेज में ही हो सकता है. आप वो बेस 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में नहीं बना सकते.
0: ग्रेट पॉइंट.
1: यू हैव टू कैट देम यंग. एंड ये अगर हम बेस दे दें अपने यूथ को कि आपको पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं, कि कंपल्सरी आपको 5 years या 3 years की आर्मी ट्रेनिंग करनी है, देर विल बी ए होल लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट डिसिप्लिन,
0: यस.
1: टेल्स ऑफ पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, सो थिंग्स लाइक दैट विच द आर्मी टीचेज यू. एंड आई होप सम डे दिस हैपन्स.
0: आपको प्यार व्यार नहीं हुआ कभी? सर, आप बहुत सीरियस सीरियस बातें करो. टैंक की बात कर दी मैंने, फायर कर दिया हेलीकॉप्टर से, जनरल उतरे, उन्होंने बोला टैंक को इधर करो, कुछ
1: जब यंग
0: आपको?
1: ऑफिसर होते थे नाभा में, एक छोटा सा स्टेशन है पंजाब में,
0: अच्छा.
1: मुझे मालूम है कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर, नाम नहीं लूंगा, कोई भी सीओ की डॉटर्स होती थी, उनको इम्प्रेस करने के लिए हम लोग टेनिस बैडमिंटन खेलते थे
0: जोर जोर से
1: और
0: शॉटे
1: फिर
0: मारते थे. अच्छा.
1: कभी कभी कुछ लेटर्स एक्सचेंज होते थे, तो टेनिस कोर्ट के पास कहीं एक लेटर चला जाता था, वहां से दूसरे दिन लेटर आता था, तो बस वही होता था. दैट
0: बस.
1: इज द टाइप ऑफ रोमांस वी डिड इन दोज डेज.
0: अच्छा, एक रोमांटिक गाना चला देता हूँ सर. आप ही की
1: श्योर
0: प्लेलिस्ट से लिया हुआ है, कुछ
1: श्योर
0: इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किसकी फरमाइश चाहिए बताते हैं सर. ये गाना सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं जल्दी.

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं। मेरा नाम है मुनीश जौली और हमारे साथ मेजर एस के यादव मौजूद हैं। तो यादव साहब, अच्छा कि आपने थोड़ा बहुत बता दिया कि रोमांस है आपके दिल में और चिट्ठियां आप लिखते थे, तो फौजी की चिट्ठी भी वही होती है कि बम धड़ाके वाली या कुछ रोमांटिक बातें होती हैं उसमें?
1: फौजी भी आप जैसे ही हैं, हम और आप, और हमें भी वही फीलिंग है जो आप में है और वही जज्बा है, तो एब्सोल्युटली देयर इज नो डिफरेंस।
0: दिल्ली में अभी ये मौसम चल रहा है कि बोगनविलिया बहुत देखने को मिलता है, और उससे जुड़ी कोई खास बात आपसे जुड़ी हुई है?
1: बोगनविला मेरा एक पैशन था। एक माउंटेन्स भीमताल के पास एक मैंने फ्रूट ऑर्चर्ड बनाया है।
0: ओह वंडरफुल।
1: और उसमें करीब 500 फ्रूट ट्रीज लगाए हैं।
0: ओह।
1: एंड आई कॉल इट बोगनविला माउंटेन रिट्रीट। और 5 कॉटेजेस बनाई है, जो द गुड थिंग अबाउट दैट इज कि उसमें कोई RCC फुटप्रिंट नहीं है।
0: ओके।
1: खाली पाइन वुड, ग्लास और लोकल स्टोन का है।
0: अच्छा।
1: और उसमें खाली नेचर है, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, पहाड़ है। That is it.
0: आप बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है वहीं पहुंच गए।
1: मैं वहीं पहुंच जाता हूं ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड।
0: वहीं पहुंच जाता हूं। आप डॉग लवर भी हैं सर?
1: यस।
0: आपने बातों बातों में हमें बताया, और मैं भी डॉग लवर हूं। एंड अभी लगभग 2 दिन पहले दिल्ली कैंट एरिया में जो कैंट बोर्ड है उसके जरिए एक वेट हॉस्पिटल भी खोला गया और न्यू दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने उसका उद्घाटन किया, सुन के अच्छा लगा। तो ये
1: मेरे

0: मुझे याद नहीं है मेरी इंटायर लाइफ में एक्चुअली
1: जी
0: कि मेरी फैमिली में एक डॉग ना हो
1: अच्छा
0: एवर.
1: ओके
0: माय फादर वाज ए डॉग लवर एंड आई हैव हैड लैब्राडोर्स. अब मेरे पास एक गोल्डन रिट्रीवर है, शिफू है उसका नाम. और अभी एक मेरे दोस्त ने मुझे एक पहाड़ी शीप डॉग जो उसको रोड साइड पर मिला था उसको उसने रेस्क्यू किया.
1: रेस्क्यू किया ओके
0: एंड थैंक यू विवेक अगर आप सुन रहे हैं. और उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया कि अगर आप इसको रखना चाहें तो हम
1: विवेक
0: बघीरा उसका
1: हीरो है
0: नाम
1: सर
0: रखा है. और उसको हमने अभी 5-6 महीने का है एंड इज ए शीप डॉग. और बहुत मजा आता
1: मेरे पास
0: है.
1: फोन आते हैं, आईपीएल के मैचेस आ रहे हैं, पासेस मिलेंगे, पासेस मिलेंगे। विवेक ने अगर डॉग की जान बचाई तो एक पास उसको दूंगा आईपीएल का। मैं नहीं सर, मैं देके रहूंगा।
0: ओ वैस विवेक यू अर्न्ड ए पास आईपीएल पास इफ यू आर लिसनिंग.
1: टॉप टीयर
0: विवेक
1: होगा पर वो,
0: लैंडोर में रहते हैं मसूरी के
1: और
0: पास.
1: फिर तो बच गए। एनीवे सर, सर यू जस्ट मेंशन अबाउट योर डैड। आई थिंक हमारे प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता कि आपके एक तरीके से आइडल, आपके इंस्पिरेशन, आपके फादर फॉर्मर एयरफोर्स पायलट, हंटर जहाज उड़ाते थे और उसके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, जो फाइटर पायलट, यू नो, बिलोंग्स टू माई कम्युनिटी। टेल अस समथिंग अबाउट हिम सर।
0: माई डैड केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा
1: जी
0: एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट स्टीफन्स कॉलेज
1: वाह,
0: एंड देन जॉइन्ड द एयरफोर्स.
1: हरियाणा में कहाँ से सर?
0: एक गांव है रेवाड़ी के पास कॉल्ड दखोरा. इट्स नियर कोसली. अगर आपने सुना रेवाड़ी, रेवाड़ी तो सुना
1: वहां
0: है.
1: से और भी फाइटर पायलट्स आए?
0: कोसली इज ए विलेज बाय द वे इन हरियाणा जहाँ पे सारे ऑफिसर्स, यहाँ देयर इज ए ऑफिसर्स मेस इन दैट विलेज.
1: वाह,
0: तो
1: स्क्वाड्रन
0: फाइटर पायलट
1: लीडर
0: ही
1: मनीष
0: आर्मी
1: यादव
0: के काफी
1: जी
0: हैं, एयरफोर्स के भी हैं.
1: ओके
0: सो दैट इज हाउ ही दैट इज हिज रूट्स एंड देन ही
1: वाह।
0: ग्रू अप इनटू
1: एंड
0: दैट.
1: वाज ही पार्ट ऑफ द वॉर? हंटर उड़ाते
0: यस
1: थे
0: यस
1: तो।
0: ही वाज सीन द 71 वॉर, सीन द 65 वॉर. यस
1: ओके और क्या खास बात आपके फादर में आपको लगती थी जो आप उनको, हमारे डैड्स हीरोज तो होते हैं लेकिन सबके डैड के अंदर एक खास क्वालिटी होती है, तो आपको क्या लगता था उनके
0: सुबह
1: अंदर?
0: सुबह जब वो यूनिफॉर्म पहनते थे मैं
1: जी
0: देखता था छोटा बच्चा. और मैंने कहा यार मैं कब बड़ा होऊंगा और ये यूनिफॉर्म पहनूंगा. और ऊपर हवाई जहाज उड़ते थे देखते थे हम लोग. एंड मेरे फादर भी टॉल थे, नाइस एंड फॉलोड हिज फुटस्टेप्स.
1: पर आपने भी फ्लाइंग सीखी है
0: हाँ
1: एंड यू आर अ क्वालिफाइड पायलट।
0: यस आई हैव गॉट ए सीपीएल.
1: ऑल राइट, तो हाउ कम एयरफोर्स को छोड़कर, नॉट दैट टैंक में नहीं जाना चाहिए था लेकिन लड़ाकू टैंक, लड़ाकू विमान
0: आफ्टर आई लेफ्ट द आर्मी
1: जी
0: आई वेंट अवे टू यूके एंड
1: ओके
0: केंट से मैंने अपना फ्लाइंग लाइसेंस लिया था.
1: वाह
0: ओके
1: राइट सर, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम आगे और बढ़े। आपके जो बॉन्डेड ग्रुप है वहां से कोई और फरमाइश तो नहीं आई सर गाने की? अगर आई है तो हम
0: काफी
1: जाने से पहले उसे प्ले करेंगे सर।
0: है लेकिन आप अगर एक ये कर दो अभी ना जाओ छोड़ करके
1: हाँ हाँ
0: या
1: हाँ कि दिल अभी भरा नहीं सर, ये तो
0: दिल
1: हमें कहना चाहिए आपके लिए कि अभी ना जाओ छोड़कर। मोहम्मद रफी
0: यस
1: साहब की आवाज में ये गीत है तो इसको मैं चलाता हूँ ढूंढ के सर।

0: राइट देन सर, इट वाज अ शियर प्लेजर आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. एंड ये गीत तो मैं चला रहा हूँ, बट वी मीन इट एवरी लिरिक ऑफ दिस गोल्डन सॉन्ग. कुछ चलते चलते हमारे युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
1: थैंक यू सो मच गाइज. Play a lot of sports, play a lot of, whether it's tennis, swimming, outdoors, and see less of screen time. That's it.
0: Wo bahut zaruri hai sir. But it was a sheer pleasure hosting you, sir. And you please so look after yourself, and thank you so much.
1: Thank you.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत श्लोक शुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अडेरकर ने आज लोकभवन में तमिलगा वेत्री कड़गम तिविके के अध्यक्ष सी जोसफ विजय को आमंत्रित किया। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि बैठक के दौरान राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। उधर केरलम में कांग्रेस पार्टी नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अडेरकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि वर्तमान में भारत स्थिरता का अड़िग स्तंभ है और यह साझा जल क्षेत्रों में त्वरित संकटकालीन सहायता और सुरक्षा की गारंटी देता है। श्री सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में 10वें हिंद महासागर संवाद को संबोधित किया। श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र को सक्रिय रूप से आकार दे रहा है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा

व्यक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। बेंगलुरु अंक तालिका में तीसरे और लखनऊ अंतिम पायदान पर है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का किया। सेमीफाइनल में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 FM रेनबो पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मस्त मलंग आरजे श्वेता, आपके साथ प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ सिटी लाइट्स। जहाँ पर होंगे दिल्ली NCR में होने वाले क्या क्या इवेंट्स हैं उनके बारे में बातें, और कौन कौन सी चीजें आपके लिए हो सकती हैं बहुत खास, और बच्चों के लिए कौन सी हो सकती हैं वर्कशॉप, समर वर्कशॉप्स कहाँ कहाँ हो रही हैं छोटे बच्चों के लिए, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, वो भी आपको जरूर बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो।

और हम भी आ गए हैं आपके लिए लेके प्रोग्राम सिटी लाइट्स, जहां पर होने वाली है ढेर सारी बातें कि आखिर भाई दिल्ली एनसीआर में कहां क्या हैपनिंग हो रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो इग्नू ने असाइनमेंट जमा करने की डेट वो बढ़ा दी है। इग्नू ने जून टर्म एंड परीक्षा के लिए असाइनमेंट जमा करने की जो आखिरी तारीख है, जो डेट है, वो बढ़ा दी है। अब स्टूडेंट्स ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रमों के असाइनमेंट 31 मई तक जमा कर सकते हैं। और इससे ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इग्नू की वेबसाइट ignu.ac.in से वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताती हूँ कि समर कैंप, हाँ जी, ये जो समर कैंप्स लगते हैं ना गर्मियों में, ये बड़े मज़ेदार होते हैं और बहुत तरह के समर कैंप्स लगे हुए होते हैं। बच्चों के लिए होते हैं, बड़ों के लिए होते हैं, हर एज ग्रुप के लिए समर कैंप कहीं ना कहीं ज़रूर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ट्रैफिक पुलिस ने स्कूली स्टूडेंट्स के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन वो कर रही है। ये पंजाबी बाग में होगा, रोशन आरा बाग में होगा, बाल भवन और हरकोट बटलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, मंदिर मार्ग में जो स्थित ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क है उसमें 18 से 5 जून तक ये शिविर चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करें तो जरूर जरूर अपने बच्चों का नाम इसमें लिखवाइएगा। इससे क्या होगा ना, आपके बच्चों को ट्रैफिक की तो जानकारी अच्छे से हो ही जाएगी, इसमें सड़क सुरक्षा के साथ साथ आत्मरक्षा, उसके अलावा आपको साइबर सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और CPR प्रशासन, लैंगिक संवेदनशीलता और जागरूकता, टायर सुरक्षा, ये सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो 18 मई से 22 मई तक और फिर 25 मई से 29 मई तक, 1 जून से 5 जून तक ये बैच शुरू होने की डेट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये डेट्स आप ज़रा ध्यान से सुन के रखिएगा और फिर ये मत कहिएगा कि मैंने कुछ बताया नहीं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां आने वाली हैं, अभी से तैयारियां।

कर लीजिए। टाइम भी बता देती हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ये पूरा समर कैंप चलेगा और इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं।

0: जाए।
1: और अब वक्त है हमारे एक स्पेशल प्रोग्राम का, आकाशवाणी एट 90 एपिसोड 4।
2: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों को आपसे साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस विशेष स्मृतियों के सफर की श्रृंखला में, यानी आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओं, आपने जाना कि किस प्रकार से हवाओं में घुली हुई आवाजें, जिनके प्रसारण की नींव बॉम्बे में पड़ी, फिर आगे चलकर कलकत्ता पहुंची और उसके बाद पहुंची मद्रास। लेकिन संगठित रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत कब हुई, आइए जानते हैं इस अंक में। भारत में रेडियो का परिदृश्य तेजी से बदल रहा था। इसी बदलते दौर में 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन बॉम्बे में किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर का उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया और यहीं से भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत हुई। इसी दिन देश में पहली बार नियमित रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई, जिसमें गीतों और भाषणों का 15 मिनट तक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। भारत में इसी प्रथम प्रसारण की याद में हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ऐतिहासिक क्षण भारत में जनसंचार के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बनी। इसके कुछ ही हफ्तों बाद 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता में भी इसका दूसरा स्टेशन शुरू किया गया, जिसने इस नेटवर्क को और अधिक विस्तार दिया। धीरे धीरे रेडियो एक संगठित प्रणाली के रूप में विकसित होने लगा, जो देश भर में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। तो श्रोताओं, अगले अंक में हम जानेंगे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 1930 यानी सरकारी नियंत्रण के अधीन कैसे आया, जानेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: कोयल सी तेरी बोली,
5: हाय
4: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे।

0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
10: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स। मैं हूं आपके साथ आप ही की अपनी मस्त मलंग आरजे श्वेता। और फिलहाल आपको म्यूजिक की दुनिया में तो रेडियो के माध्यम से लेके जा ही रही हूं, और भी अगर आप संगीत सुनना चाहते हैं, संगीत प्रेमी हैं या कला प्रेमी हैं, तो कहां कहां आप जा सकते हैं प्रोग्राम देखने के लिए वो भी बताती हूँ। तो चलिए आपको लिए चलती हूँ त्रिवेणी कला संगम जो नई दिल्ली में है। और दिल्ली कॉलेज थिएटर फेस्टिवल 2026 चल रहा है, जहाँ पर डेली परफॉर्मेंसेस हो रही हैं अलग अलग कॉलेज के ड्रामेटिक सोसाइटीज की, जिसमें आईपी कॉलेज की अभिव्यक्ति भी शामिल है। तो आज और कल, हाँ जी, 11 से शाम सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक त्रिवेणी ऑडिटोरियम में आप जा सकते हैं। एंट्री है एकदम फ्री, बस ध्यान रखिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो अगर आप जल्दी जाएंगे तो आपको आगे की सीट या आपकी मनपसंद सीट मिल जाएगी।

और अगर आप संगीत सुनना चाहते हैं वो भी क्लासिकल म्यूजिक, तो घरानों की स्वर्णिम रागांजलि, रागांजलि ये एक ट्रिब्यूट है गोल्डन वॉइसेस ऑफ ख्याल गायकी प्रेजेंटेड बाय प्राचीन कला केंद्र। ये आप आराम से देख सकते हैं त्रिवेणी कला संगम में। ये भी फ्री एंट्री है, आपको बस पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप कहाँ क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए तो और भी बहुत सी समर कैंप है जो भारत सरकार के द्वारा भी आयोजित किए जा रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय के तहत सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी CCRT नई दिल्ली द्वारा 2026 में गर्मियों में बच्चों की, जो 16 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए विकसित भारत टॉपिक पर एक स्पेशल समर कैंप लग रहा है, जिसमें आप क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, जो पुतली कला होती है वो आप सीख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप सीख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप CCRT की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ज़रूर जाइए, और हो सकता है कि आपके बच्चे का अगर पहला प्यार संगीत है या फिर कठपुतली बनाना या उनसे खेलना या उनकी स्टोरी सुनाना है, तो बस इससे बेहतर समर वेकेशन और कुछ नहीं हो सकती उनके लिए।

0: है तो आपके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा इवेंट है। क्या बता दूं, अभी बता दूं या एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद बताऊं? चलिए एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद बताती हूं कि आखिर आप कहां पर फिल्म से रिलेटेड जहां इवेंट हो रहा है वहां जा सकते हैं और कौन कौन सी फिल्म्स देख सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को

0: सफल बनाए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो
2: स्टेशन ऑफ द नेशन FM रेनबो में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मस्त मलंग आरजे श्वेता आपके साथ। और मैंने आपको कहा था कि भाई एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आपको बताऊंगी कि आखिर कहाँ आप फिल्म देख सकते हैं। अगर आप में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, तो आपके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ आप जा सकते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 जो 4 मई से शुरू हो चुका है और कल यानी कि 8 मई तक ही चलेगा। वेन्यू जो है वो रहेगा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ये जनपथ में है। आप वहाँ पे जा सकते हैं। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आप जाइए। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो रहेगा जनपथ का गेट नंबर 4। एंट्री फ्री है, बस आपको पहले से रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने का फायदा ये हो जाता है कि आप अपनी सीट एक तरह से पक्की कर लेते हैं। ग्लोबल सिनेमा फिल्म स्क्रीनिंग हो रही है, लाइव सेशंस हैं, यहाँ पे क्रिएटिव डिस्कशंस हो रहे हैं। परफेक्ट प्लेस है हर एक मूवी लवर के लिए जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं सिनेमा को बहुत ही करीब से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी यहाँ जाएंगे और जो फिल्मों के दीवाने हैं वो जरूर यहाँ पर जाकर अपनी पसंद की जो फिल्में हैं वो जरूर देख पाएंगे, डिस्कशन में अपना अटेंड कर पाएंगे। उस डिस्कशन से हो सकता है आने वाले समय में वो एक बेहतरीन कलाकार बन सके, डायरेक्टर बन सके या एक्टर बन सके या कोई भी जो फिल्म से रिलेटेड कला हो।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स, मस्त मलंग आदि श्वेता के साथ। और फिलहाल जो है ना, सच में यहाँ पर सब आप ही के लिए होता है। और सिटी लाइट्स में आपको बताती हूँ कि दिल्ली एनसीआर में आखिर कहाँ क्या हो रहा है। तो चलिए अब आपको बता देती हूँ कि दिल्ली की कपास संस्कृति दिल्ली हाट पर थोड़ी सी हावी हो रही है। कैसे हो रही है जानना चाहते हैं तो बता देती हूँ। कॉटन फेस्ट में जो है भारत की समृद्ध

तो दिल्ली जो है ना वो होस्ट कर रहा है कॉटन फेस्ट। हां जी बिल्कुल सही सुना आपने, इंडियाज रिच हैंडलूम लेगेसी कम्स अलाइव एट दिल्ली हाट, और ये दिल्ली हाट में होने वाला है। ये टाइमलेस वीव्स जो है ये बहुत बहुत बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगने वाले हैं, लगभग 78 स्टॉल्स लगने वाले हैं जो सेलिब्रेट करेंगे इंडिया के कॉटन ट्रेडिशनल को ऑल इन वन वाइब्रेंट स्पेस में। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, ये दिल्ली हाट में होगा, लेकिन ये अभी नहीं, ये होने वाला है 16 तारीख से 30 तक। तो बस आप यहाँ पर जाएंगे और फिर देखिए किस तरह से आपको ये मज़ेदार स्टॉल्स देखने के लिए मिलेंगे, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें हैपनिंग होती रहती हैं दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में और पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। थोड़ी ही देर में आपको एक और मैं बताऊंगी कि आखिर कहाँ पर बच्चों के लिए एक और वर्कशॉप हो रही है, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि इसके अलावा और भारत में किस किस जगह जानना चाहते हैं। तो बस मेरे साथ गिलहरी की तरह यहीं परी फुदकते रहिए।

सतरंगी प्रोग्राम्स, और इसके साथ ही आप हमारे साथ 24/7 जुड़े रहते हैं, प्रोग्राम्स तो चलते रहते हैं, इसके साथ ही साथ आपको मिलती हैं बहुत सारी एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट यानी इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों। चलिए अब मैं आपको ना जल्दी से बता देती हूँ कि अगर आपके आसपास कहीं पर भी किसी भी तरह की धूल से जुड़ी कोई भी शिकायत आपको करनी है तो नगर निगम ने एक ऐप जो है वो लॉन्च करी है, वहाँ पर आप उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो धूल से संबंधित जो भी कोई भी प्रदूषण की समस्या को लेकर नागरिक निगम के ऐप 311 पर और हेल्पलाइन नंबर 155305 पर आप कॉल कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और जो अन्य नागरिक कार्यों से संबंधित समस्याओं को भी आप दर्ज करा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखिए मैं बता देती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके घर के आसपास या आप जहां अभी ट्रैवल कर रहे हैं वहां आसपास कहीं कूड़ा जलाया जा रहा है या पत्ते जलाए जा रहे हैं या फिर किसी तरह से कोई भी इतना धूल हो रही है या पॉल्यूशन हो रहा है, तो आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे एक तो हमारा एनवायरनमेंट सही होने लगेगा, अगर लोगों को पता चलेगा कि हाँ उनकी शिकायत हो रही है तो वो ऐसी गतिविधियां भी नहीं करेंगे, और वैसे भी हमें अपने आसपास अच्छी अच्छी चीज़ें रखनी चाहिए ना, क्यों आप खुद बताइए। अगर हम अपने पर्यावरण को खुद अच्छा रखेंगे तो वो हमारे लिए ही अच्छा है और हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा है, हमारे बुजुर्गों के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा है। फिलहाल मैं यहाँ से आप सबसे कहती हूँ टाटा बाय बाय, ये कहते हुए कि अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिए, अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखिए, क्यों, क्योंकि हो सकता है उसे देख के कोई और मुस्कुराना सीख जाए। फिलहाल ये लड़की यहाँ से जाती है, लेकिन अगला प्रोग्राम लेकर कौन आने वाला है वो जानने के लिए आप बस जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ।

हाँ जी, पुदक पुदक के इधर से उधर, उधर से इधर आ गए हैं, फिर से इधर है ना। मेरे साथ बने ही रहिए और आकाशवाणी के साथ बने रहिए, फिर रेनबो स्टेशन ऑफ द नेशन, जहां पर आपके लिए होते हैं

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश या कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने पटना में एक रोड शो भी किया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने आज लोकभवन में तमिलग वित्रे कड़गम टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय को आमंत्रित किया। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उधर केरलम में कांग्रेस पार्टी नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने आज नई दिल्ली में जनगणना जागरूकता के लिए 6 एलईडी मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान का हिस्सा है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। उधर भारतीय पुरुष रिकर्व टीम को पहले ही राउंड में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और 6:05 और पूरे 52 सेकंड हो चुके हैं और एमरीन आ चुकी है, दस्तक दे चुकी है आपके दिलों पर, क्योंकि जब दिलों पर दस्तक दी जाती है तो दिल से दिल जो है ना वो मिल जाते हैं और हमारा काम यही है कि दिल से दिल मिलाएं और अपनी बातों को जो है एक दूसरे तक पहुंचाएं। जब बातें एक दूसरे तक पहुंचती हैं तो जो दिल का हाल है वो सामने बयां हो जाता है और जब दिल का हाल बयां हो जाता है ना तो दिल जो है ना हल्का महसूस करता है। तो बस दिल को जो है सुकून देने के लिए और दिमाग को थोड़ा सा कई बार इधर उधर हो जाता ना ट्रैक पर लाने के लिए फिलहाल मैसेज मसाला मिक्स लेकर आ गई हूं मैं एमरीन। दिल तो हमने चुरा लिया है आपका क्योंकि यही वाला गाना तो हम बजाने जा रहे हैं, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ यानी आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

कितना प्यारा गाना, मजा आ गया सुनकर। जब ये गाने ऐसे सुने सुनते हैं ना हम लोग, तो दिल भी जो है ना बहुत सूदिंग से हो जाता है, क्योंकि गाने इतने सूदिंग है ना। फिलहाल मैसेज मसाला मिक्स एमडीन आपके साथ है ना, और देखिए ना इतने सारे मैसेज सबके आने शुरू हो गए हैं। भुवनेश का भी मैसेज आ चुका है अशोक विहार से, और पंकज का भी मैसेज आ चुका है। मतलब मैं अभी सिर्फ बता रही हूँ कि किस किस ने अपना पैगाम जो है ना वो भेज दिया है कि हम लोग जो है शो सुन रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, और आज किस बारे में जो है हम बात करेंगे। हेमलता का भी आ गया, हिना का भी आ गया है, और गोस्वामी का भी आ चुका है, खुशी का भी मैसेज आ चुका है, ओए होए अनिल का भी मैसेज आया है, उषा, मोहन, ये सब मैं बता रही हूँ। सब लोग कह रहे हैं कि हम सब बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। और ये स्वाति का भी, नीलम का भी, किशन का भी और स्वाति का भी, इन सब का मैसेज आ चुका है, सब कह रहे हैं बढ़िया। दानिश का भी मैसेज आ चुका है, गुलफाम का भी मैसेज है। जल्दी देखिए मैंने सारे ले लिए। लास्ट टाइम आप बोल रहे थे ना कि मेरा मैसेज शामिल नहीं किया, ऐसा नहीं होता है, मैं सबका मैसेज शामिल करना चाहती हूँ, लेकिन कई बार वक्त की कमी हो जाती है ना। प्रॉब्लम तो ये है क्योंकि 24 घंटे ये जो वक्त है, घड़ी है, चलती जा रही है, उसके साथ मुझे भी चलना है। तो अब फिलहाल सबके मैसेज में ही बता दिया कि हम सब बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। आप बताइए, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। जब आपसे बात होने लगती है ना तो अच्छा फील करती हूँ, महसूस करती हूँ ये कि है, ऐसा लगता है कि आप लोग सब मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपसे बिल्कुल जो है ना डायरेक्ट जिसे बोलते हैं बिल्कुल आपसे रूबरू हुई भी हूँ। और ऐसे ही होना चाहिए, दोस्त जब बात करते हैं और जब बातें होती हैं और दिल से बातें जब होती हैं तो ऐसी ही फील होना चाहिए। अब ये बताएं मुझे आप सब लोग, जो बात आ जाए कि क्या हमें मैसेज का जो जवाब है ना बहुत जो है छोटा सा देंगे, मतलब कम से कम शब्दों में, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज ले सकूं। क्या हमें अपनी इस लाइफ में जहाँ हमें फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं या हमारे जो भी मिलने वाले हैं, बहुत मुश्किल से हम उनसे अपने रिलेशंस को एक अच्छे तरीके से कायम कर पाते हैं, लेकिन कई बार नाराज़गी भी हो जाती है, क्या करें, ज़िंदगी है ना, हर चीज़ चलती रहती है, खुशी एंड गम आते रहते हैं, अप एंड डाउन चलता रहता है, किसी की बातें अच्छी लगती हैं, दिल के करीब आ जाती हैं, तो किसी की बातें तकलीफ़ भी देती हैं अपने अपनों की। तो जब कभी कोई बातें तकलीफ दे जाती हैं तो हम नाराज हो जाते हैं, है ना, नाराज। तो क्या नाराजगी बहुत लंबे वक्त तक ठीक रहती है या नहीं, मुझे बताना है कि क्या हमें नाराज बहुत लंबे टाइम तक किसी से रहना चाहिए, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे आपके रिलेटिव हों, चाहे आपके बहन भाई हों या जो भी हों, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मुझे सिर्फ हाँ और ना में जवाब दीजिए, और अपना मैसेज, अपना नाम जो है वो ज़रूर भेजें, नहीं तो जो है ना दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब नाम नहीं आता है तो फिर मैं सोचती हूँ कि ये मैसेज किसने भेजा है। पता तो है कि मेरे फ्रेंड्स भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी नाम से सर और अच्छा हो जाता है ना। फिलहाल 9868107070 पर जल्दी से अपना मैसेज भेजें और मुझे बताएं कि क्या बहुत देर तक नाराज़गी रखना क्या सही है या नहीं। सुनते रहें आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

किसी का जुनून जब सर पर हो जाता है, चाहे उसे पाने का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो जो कैफियत होती है ना, वो बड़ी अलग सी हो जाती है, बहुत अजीब सी हो जाती है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। ये तो चाहत का असर होता है क्या कर सकते हैं, चाहत का असर होता ही ऐसा है कि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, लेकिन माननी जो चाहिए ना, वो हमेशा दिमाग की माननी चाहिए, क्योंकि दिल जो है ना, कई बार बहक जाता है। फिलहाल हमने पूछा था कि क्या किसी से लंबे वक्त तक क्या नाराज़गी सही रहती है या नहीं रहती है, तो मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं सबके। वैसे तो मुझे पता है, लेकिन बीच बीच में मैसेज ऐसे भी हैं कि हाँ सही रहती है, ओ माय गॉड। चलिए खैर कोई बात नहीं, सबके अपने अपने व्यू हैं। फिलहाल तो जो मैसेज है ना, रंजीत का मैसेज है, कहते हैं कि नहीं, किसी से भी जो है ना नाराज़गी 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। इन्होंने 3 दिन का जो है वो दिया है। वैसे 3 दिन का रंजीत क्या वो है, मतलब 1 दिन भी नहीं दिया, 2 दिन भी नहीं, 3 दिन। 3 दिन तक रखो नाराज़गी, और 3 दिन के बाद नाराज़गी को दूर कर दो। तो मुझे ना इसके बारे में भी बताओ कि आपने 3 दिन ही क्यों, 2 दिन क्यों नहीं कहा। ठीक है, दानिश का भी मैसेज आ चुका है, कहते हैं कि मुझे लगता है कि दोस्ती ज़्यादा नाराज़गी नहीं, अच्छा दोस्ती ज़्यादा नाराज़गी नहीं चलती दोस्ती में, ये बात तो है। और एम्ब्रीन के बारे में क्या लिखा है दानिश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा क्लियर लिखो तो पता भी चले। अब मैं तो अपने आप से किसी चाहती हूँ कि कोई मुझसे नाराज़ ना हो, कोशिश रहती है कि नाराज़ अगर हो भी, मतलब नाराज़गी अगर हो भी जाए तो नाराज़गी को किस तरीके से दूर कर दूँ। कोशिश करती हूँ कि कहना मान लूँ, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कहना नहीं भी माना जाता है और फिर मना लेते हैं। चलिए खैर, ये मैसेज किसका है, ये है फुरकान का मैसेज है, कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना मिल गया मैसेज कि क्लियर नहीं हो पा रहा है। फुरकान, आप दोबारा से मैसेज भेजो कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपका मैसेज ये है। और सागर का भी मैसेज आ चुका है, लिखा है कि मेरा तो नेचर ही ऐसा है कि मैं किसी से भी मतलब जो ये नाराज़गी है खुद ही, मतलब अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, और वैसे गुस्सा रहना भी नहीं चाहिए ज़्यादा टाइम तक। ये तो बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है आपके अंदर कि कोई भी आपसे ज़्यादा देर तक जो है वो गुस्सा रहता ही नहीं है। क्या बात है, मतलब ये तो एक अच्छी, बहुत अच्छी बात है, आपका नेचर इतना अच्छा है कि कोई आपसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहता। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं वाकई में, और ये बहुत अच्छी बात है। और कोमल का भी मैसेज आ चुका है, कहते हैं नाराज़गी किस वजह से है, इस पर डिपेंड करता है। भाई नाराज़गी तो कोमल किसी भी चीज़ पर हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी सी भी वजह होती है और नाराज़गी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाती है। तो नाराज़गी जो है ये डिपेंड नहीं है, नाराज़गी है, वजह कुछ भी हो, कई वजहें बड़ी होती हैं, कई वजहें छोटी होती हैं, लेकिन क्या हमें ज़्यादा वक्त तक नाराज़ रहना चाहिए अपने दोस्तों से, क्या होगा उससे, नाराज़ रहने से क्या हो जाएगा, ये तो सभी जानते हैं, है ना। और ये आंशी शर्मा का है, कहती हैं कि हाय अमरीन, कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और इन्होंने कहा है कि ज़्यादा टाइम तक नाराज़ होना ठीक नहीं है, मैं किसी से भी ज़्यादा टाइम तक नाराज़ नहीं होती हूँ, मैं भी ज़्यादा टाइम तक नाराज़ नहीं होती हूँ, अगर हो भी जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ जल्दी से मना लूँ। देखो आज मैं अपना जो व्यू ना हैंड टू हैंड फौरन दे रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है मुझे, और भी मैसेज का इंतज़ार है, फटाफट भेजिए 9868107070 पर। एम्ब्रीन इंतज़ार कर रही है आपके मैसेज का, नाराज़गी दूर कर दीजिए, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, अगर कोई है भी ना तो जल्दी जल्दी नाराज़गी दूर करिए और फटाफट फ़ोन मिलाइए आप अपने अपनों को जिनसे आप नाराज़ होकर बैठे हैं। ज़्यादा देर तक नाराज़गी अच्छी बात नहीं है। रात का नशा, अभी फ़िलहाल ये वाला गाना मैं प्ले कर रही हूँ, बहुत टाइम हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंजॉय कीजिए इस गाने को और एफएम रेनबो, दिल से दिल तक सुनते रहिए।

तो पूरे 23 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक मैसेज मसाला मिक्स प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छे से, और मैसेज भी इतने सारे खूब बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, मजा आ गया। मतलब मैडम जी मत बोलिए, अमर आपसे बात कर रही हूँ मैं, और रमेश आपसे भी। अगर अमर रमेश एक नाम है तो एक से ही हो रही है, और अमर और रमेश अलग अलग है तो दोनों से बात हो रही है। ठीक है, तो एमरीन बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, जब नाम से हम एक दूसरे को मुखातिब करते हैं ना तो ऐसा लगता है ना, अपनेपन का एक एहसास होता है। और अगर मैं भी आपको सर बोल दूँ तो कैसा लगेगा, हर बार बोलती हूँ ना, तो अच्छा लगेगा कि एमरीन कॉल करें। अच्छा, लंबे अरसे तक नाराजगी जो है ना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही कही आपने बात कि लंबे वक्त तक नाराजगी को रखना ये कहाँ की अच्छी बात है, कहीं की अच्छी बात नहीं है। गुड, अच्छी बात कही आपने। और एमरीन जी, इसने मैं AMU ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, क्या बात है, और इस दौरान मैं आपका प्रोग्राम भी सुन रहा हूँ, मजा आ रहा है बहुत, मजा तो आ रहा है। लेकिन अच्छा लिख दिया आपने कि किसी जो कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है नेटवर्क की, इस एक और मैसेज आ गया, नाराजगी। बड़ी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी आपने सुना है, फटाफट फटाफट मैसेज किया है। देखिए आ गया ना, कहते हैं कि नाराजगी भी खूबसूरत एहसास है। ओए होए क्या बात है, मतलब नाराजगी भी एक अदा होती है, ये उसी से होती है जो दिल के सबके पास है। क्या बात है, आपने तो नाराजगी का यहाँ पर पूरा जो बोलते हैं ना टॉपिक वो ही चेंज कर दिया, मजा आ गया अनिल। ये तो मैसेज पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा कि नाराजगी भी एक खूबसूरत एहसास है, खूबसूरत अदा है, और ये उसी से होती है जो दिल के पास है। बिल्कुल सही, नाराजगी हमारी उन्हीं लोगों से हो जाती है कि वाकई में जिनसे हम बहुत उम्मीद रखते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और फिर वो अगर दिल तोड़ देता है तो नाराजगी हो जाती है। लेकिन आपकी इस बात से मुझे ये भी एहसास हो रहा है कि आपका जो जवाब होगा वो यही होगा कि नाराजगी ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं रखनी चाहिए, और हो भी नहीं सकती, क्योंकि जिनसे हम दिल से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, भला उनसे हम इतने वक्त तक नाराज कैसे रह सकते हैं। क्या बात है, मजा आ गया वही इस मैसेज में तो। और ये है मैसेज किसका, कासिम का मैसेज है, कहते हैं कि नाराजगी 3 दिन की होनी चाहिए, इन्होंने भी 3 दिन लिया। भैया ये 3 दिन का क्या मतलब सीन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके जो है ना ये ज्यादा नाराजगी नुकसान देती है। ये बात तो है, ज्यादा नाराजगी तो नुकसान ही देती है, उसमें फिर क्या होता है कि रिलेशंस कहीं ना कहीं टूटने लगते हैं, धुंधले होने लगते हैं, और वो दूर हो जाते हैं। अच्छा, ये मैसेज किसका है, नाम, हाँ शमसुल का मैसेज है, कहते हैं कि मैं कभी किसी से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहता, क्योंकि जिंदगी के अनमोल पल में हम किसी से दूर रहकर क्यों गुजारें। आय हाय क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही कि जिंदगी के इस अनमोल पल में हम किसी से दूर रहकर क्यों गुजारें, जो मजा आपसे प्यार और मोहब्बत से है जिंदगी गुजारने में है, वो मजा भला नाराज होकर कहाँ है। आय हाय क्या बात है, इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहना चाहिए। मजा आ गया भाई, ये अच्छी बात कही है, ये बहुत ही अच्छी बातें चल रही हैं आपकी नाराजगी के ऊपर। और हाय अमरीन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी रंजीत मस्ताना, बड़े टाइम के बाद मैसेज आया है आपका, मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए ना कैसे हैं, कहाँ हैं, और मैसेज का मेरा जवाब क्यों नहीं दिया रंजीत। गलत बात है, इतने टाइम के बाद एक तो पहले तो यही बताओ, देखा इसका जवाब दो, और उसके साथ साथ नीचे भी जवाब देना, अब हो जाओ नाराज आपसे बताइए। लेकिन फिर वही वाली बात आती है ना कि नाराज होकर जाएंगे कहाँ दोस्त, मनाना तो हमें भी आता है, मुझे आपके मैसेज का इंतजार है। रंजीत बताओ कहाँ थे, कैसे हो, और नाराजगी क्या ज्यादा मतलब लंबे वक्त तक रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। और किसका मैसेज है अगला, ये अशोक नागरा का है और सुनीता नागरा का है, इन्होंने कहा है चंडीगढ़ से, कहते हैं अपनों से नाराजगी को ज्यादा वक्त तक दिल में नहीं रखना चाहिए, रिश्ते बहुत ही कीमती होते हैं, इन्हें जो है एक घमंड या अपनी ईगो को लाके छोटी छोटी गलत फहमियों के आगे इनको जो है ना अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके फटाफट फटाफट इन जो ये प्रॉब्लम्स हैं और जो ये गलत फहमियां इन्हें दूर करें और नाराजगी को दूर करें। मेरे सभी दोस्त कितने अच्छे हैं ना, नाराजगी को दूर करने में यकीन रख रहे हैं, ज्यादा लंबे वक्त तक चलाना उन्हें भी किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बात है, चेतन शर्मा का भी आ गया है, नाराज होने पर थोड़ी नाराजगी, क्या क्या क्या, नाराज होने पर थोड़ी नाराजगी कर लेनी चाहिए, पर फिर 2 दिन बाद मना भी मान भी जाना चाहिए। अच्छा, नाराज होने पर थोड़ी नाराजगी कर लेनी चाहिए, ये कह रहे हैं कि नाराजगी अगर है तो दिखाना भी चाहिए कि हाँ भाई हम नाराज हैं, क्योंकि जब उसके बाद सामने वाला जब
मनाता है ना उस नाराज इंसान को, तो उसमें और भी मजा आता है। ओए होए चेतन, क्या बात है, क्या बात है, फरीदाबाद से इनका मैसेज है। अच्छा लग रहा है मुझे ये सारी बातें सुनकर कि नाराज भी हो लेकिन ज्यादा देर तक ना हो, और जब नाराजगी के बाद जो अपना जब मनाने के लिए आते हैं तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। चुपके चुपके जो ये काम होते रहते हैं, नाराजगी नाराजगी के बाद मनाना, कितना अच्छा लगता है। हाय बहुत अच्छा लगता है। चलिए तो लेकिन ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं, है ना, अपनी उस

या 2-3 दिन या 1 दिन या कुछ मिनटों में खत्म कर देनी चाहिए। 9868107070 पर एम्ब्रीन इंतजार कर रही है, बने रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: कोयल सी तेरी बोली तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
7: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
8: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
7: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
9: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
10: ठीक है,
9: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
8: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
7: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
11: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
7: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
8: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।

0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक मैसेज मसाला मिक्स प्रोग्राम चल रहे हैं। अमरीन आपके साथ है और मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी लो, ले रही हूँ। ये मैसेज आ चुका है सुदर्शन का है और अनीता का, सिमरन का है। ये कहते हैं कि हम मतलब इनके अकॉर्डिंगली ज़्यादा लंबे टाइम तक किसी से नाराज नहीं रहना चाहिए, किसी को माफ़ कर देना अभी जो है ना वो बहुत बड़ा मतलब बड़प्पन होता है। क्या बात है, ये भी बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि माफ़ कर देना भी जो है ना वो मतलब इग्नोर करना, माफ़ कर देना, कहते हैं ना कि दरकिनार कर देना, ये बहुत अच्छी बात है। ये वाकई में एक अच्छी कला बोलूँगी, अदा बोलूँगी, ये उन चीज़ों में शुमार होती है। क्योंकि माफ़ करने वाला जो होता है ना वाकई उसका दिल बहुत बड़ा होता है कि इतना कुछ सह के भी माफ़ कर दिया। अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ों का जो है हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं मतलब इतना इतने अच्छे अच्छे भी जो है वो ख्याल वो रखते हैं। दानिश मैसेज की मतलब पूरे शो की बहुत तारीफ़ की है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये भी तो बताओ ना कि नाराज़गी पे जो मैंने पूछा है कि क्या लंबे वक्त तक नाराज़ रहते हो या नहीं रहते हो किसी से, या माफ़ कर देते हो, या सोचते हो कि नाराज़गी अच्छी बात नहीं है, जल्दी से इस बात का जवाब दो। नाराज़ को मनाना चाहिए, खुद नाराज़ हो तो वक्त पर छोड़ देना चाहिए। क्या बात है, प्रवीण का मैसेज है, प्रवीण चौहान का, कहते हैं कि नाराज़ को मनाना चाहिए और खुद नाराज़ हो, अगर आप नाराज़ हो गए तो उसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब अपने आप को ही जिसे बोलते हैं ना कि खुद ही खुद कितना कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस, लेकिन कोई सामने वाला नाराज़ है तो उसको मना लेना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। और नाराज़गी भी एक खूबसूरत एहसास है, तो मैंने ले लिया है। अनिल का दोबारा से मैसेज आया और ये सरफराज का भी मैसेज आ चुका है, कहते कि मैं ज़्यादा देर तक मैं कभी कभी ज़्यादा देर तक नाराज़ रह जाता हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरी नज़र में जो रिश्तों की अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। जब कोई अपना ही दिल दुखा देता है तो वक्त लग जाता है भूलने में, थोड़ा सा जल्दी गुस्सा नहीं होता लेकिन वक्त लगाता हूँ, कोई बात नहीं, और कभी कभी खामोश भी हो जाता हूँ। देखिए, खामोशी तो बहुत अच्छी अदा है, क्योंकि जवाब देने से बेहतर है कि रिश्तों में जो है और रिलेशंस में जो है वो खटास आ जाए, उससे बेहतर है कि खामोशी अख्तियार कर ली जाए। क्योंकि खामोशी भी होती है कि 2-3 दिन के बाद जो है आप ठीक हो जाते हैं और दोबारा से अपने रिलेशन को जो है एक अच्छे तरीके से कायम रख लेते हैं। और संजय जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं, मेरठ से इनका मैसेज है, नाराज वही होता है जो अपना होता है। हाय हाय, अच्छा, जितना करीब होता है उससे उतना ही नाराज होने का भी अधिकार है। क्या बात है भाई, नाराजगी बस 24 घंटे तक रहनी चाहिए, नहीं तो वो जो है ना बड़ी उसमें दुश्मनी बदल जाती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि दुश्मनी में बदल जाती है, लेकिन हाँ ये अच्छा आपने कहा है कि 24 घंटे तक मतलब बस इतना ही वक्त देना चाहिए, उसके बाद जो है नाराजगी को दूर कर लेना चाहिए। गुड गुड गुड, मजा आ गया भाई, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। नीता, मुझे भी आपकी जो मैसेज का अंदाज है ना बड़ा अच्छा लगा है, बहुत ही मतलब अच्छा। खैर, अच्छी बात है, जितनी भी तारीफ की है। लिखा है, जीवन में किसके लिए कुछ मदद करें, बाद में कोई भी अपने साथ अच्छा भी। नाराज़गी तो रहनी मुझे मतलब बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि बहुत मैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। नाराज़गी तो रहती है लेकिन दिमाग से जल्दी जल्दी नहीं निकलती, सोचती हूँ कि अभी बहुत दिनों तक बातें नहीं करूंगी। अच्छा, इन्होंने अपने बारे में ऐसे बताया, तो इन्होंने लिखा है कि नाराज़गी होती है, सही में बुरा तो लगता है लेकिन क्या करें। तो कोई बात नहीं, बस ये करें अनीता की नाराज़गी अगर होती है, बुरा लग रहा है, उसको कोशिश करें कि उसको उस बुराई को निकालें और निकाल

एक बार सोचें कि नहीं भाई, इससे मेरा रिलेशन तो बहुत अच्छा है, और नाराजगी क्या है, मतलब नाराजगी करके करना क्या, यही तो होना है कि आपका रिलेशन ही खत्म हो जाएगा। तो हमें तो रिलेशन खत्म नहीं करने ना, हमें तो रिलेशंस को और आगे बढ़ाना है, अच्छे से करना है, मतलब अच्छे से बना कर रखना है। ठीक है, और ये किसका मैसेज है, BS हांडा का मैसेज है। कहते हैं नाराजगी 3 दिन तक, ठीक है, सबके ज्यादातर ना भाई 3 दिन आए, किसी का 2 दिन भी आया था, एक का 24 घंटे भी आया था। पहले दिन अपने मन को शांत करने के लिए, अच्छा इन्होंने 3 दिन का बताया, ये बड़ी अच्छी बात है, पहला दिन अपने मन को शांत करने के लिए, दूसरा दिन सामने वाले को मौका देने के लिए कि वो गलती सुधार सके, और तीसरा दिन दिल से नाराजगी मिटाने के लिए, क्योंकि रिश्ते नाराजगी से नहीं, समझदारी और माफी से चलते हैं। आय हाय, ये

दिल तक सुन रहे हैं आप, मैसेज आ रहे हैं और मुझे जल्दी से बताएं ना, क्योंकि अभी टाइम हुआ है, अभी तो टाइम है ना, 6:50 और पूरे 24 सेकंड हो गए हैं। मैसेज मसाला मिक्स, ये वाला गाना आया है, बहुत प्यारा गाना है।

6:54 और पूरे 3 सेकंड हो गए हैं। दिल का जो रिश्ता होता है ना वो बहुत प्यारा होता है और दिल का रिश्ता वाकई इतना खूबसूरत होता है कि अगर कोई सामने वाला गलती करता भी रहता है ना, तो जिसको मोहब्बत होती है, जिसके दिल में जो रिश्ता निभाने का जो जज्बा होता है, वो उसे बार बार बार बार माफ़ करता रहता है। मनीष ने कुछ पूछा था मुझसे, कहा था कि अगर कोई नाराज़ लगातार किए जाए तो कितनी बार माफ़ किया जाए, उसको इतनी बार माफ़ किया जाए जितना समंदर होता है। अब समंदर की तो कोई इम्तिहान नहीं होती है ना, और अपनों कोई जो होता है कि उसे माफ़ी दी जाए, है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। पता है माफ़ करने वाला कितना बड़ा होता है नाराज़ होने वाले से, और नाराज़ भी उन्हीं से हुआ जाता है जो आपके अपने होते हैं। तो बस नाराज़गी दूर करने का मौका सोचते रहना चाहिए कि कैसे नाराज़गी को दूर करें और हमारे जो रिश्ते हैं ना वो हमेशा कायम रहें। फ़िलहाल तो एफरीन अब इजाज़त चाहती है, क्योंकि जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे, आने के लिए आपसे यहाँ से जाना पड़ेगा। जब जाऊँगी फिर आऊँगी, और आपकी जो ऐसी बातें हैं जो दिलकश अंदाज से आज जो आप नाराज़गी पर जो आज बातें हुई हैं वो भी बड़ी अच्छी रहीं कि

नाराजगी पर कैसे, और खास तौर से एक मैसेज ये भी चेंज भी हो रहा था, फिलहाल अमरीन को दीजिए इजाजत क्योंकि आपसे ना 8 बजे मैं फिर मिलूंगी, आपसे फिर मुलाकात करूंगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का खास ख्याल रखिए और कभी भी किसी से लंबे वक्त तक नाराज मत रहिए, है ना। कुछ तो है ना रابطہ, इस रابطہ जो है ना हमेशा बना कर रखिए। सुनते रहें आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय ने बताया कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में एक रोड शो भी किया। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज लोकभवन में तमिलग वित्री कड़गम टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय को आमंत्रित किया। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उधर केरला में कांग्रेस पार्टी नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट जीती है। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफल से भेंट की। डॉ मांडविया ने बताया कि दोनों नेताओं ने श्रमिक कल्याण और रोजगार के लिए सशक्त डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए सहयोग पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि श्री रामफल ने भारत के राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के बारे में विशेष रुचि दिखाई है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कुमकुम मोहोत की टीम का सामना चीन से होगा। उधर आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। बेंगलुरु अंक तालिका में तीसरे और लखनऊ अंतिम पायदान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की

0: Thank you. That was Eric Clapton at his most personal. And it's time now for the first break of this session. But don't go anywhere, because you know we'll be right back.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: Welcome back, listeners. As promised, we are back, and that too as soon as possible. But now we slow things down. Yes, I'm talking about a song that defined love for an entire generation. Bryan Adams with Everything I Do, I Do It For You is the track that I'll be playing for you all next.

I'll never let you part.

पूरे 8 बज चुके हैं। जी हाँ, मैं आ गई हूँ एम्ब्रीन, और मैंने कहा था ना जब तक जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे, तो इसलिए आ गई हूँ। म्यूजिक मस्ती आपका अपना प्रोग्राम, सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी एमरीन। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक के बाद एक जो गाने प्ले हो रहे हैं ना, उसमें ना थी रखने का मन करे ना तो मेरा नाम एमरीन ही रहेगा और आपका नाम भी जो है वही रहेगा। कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ, यानी आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या

0: धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक, और म्यूजिक मस्ती। जी हाँ, पता है ना, एक के बाद एक गाने मैं कोशिश कर रही हूँ प्ले ऐसे कर रही हूँ कि जिसमें कहीं ना कहीं अगर सुस्ती चाहिए हुई ना तो वो जो है ना चुस्ती में बदल जाए, एक्टिव हो जाए। वैसे इस टाइम तो थकावट दूर करने का वक्त होता है क्योंकि सुबह से काम में लगे लगे लगे लगे लगे ये टाइम आ जाता है, लेकिन फिर भी जब घर में जाते हैं तो सबका, घर वालों का भी दिल होता है ना कि भई एक्टिव जो है बंदा यहाँ पर आए, तो एक्टिव जो वो पन है बनाए रखने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये वाले गाने मैं प्ले करूँ जिससे जो है ना दिमाग और दिल सारी चीज़ें जो है ना वो थिरकने को मजबूर हो जाएं। कहीं मजाए मने नए हमारे साथ आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिक मस्ती, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी एमरेन। फिलहाल ये वाला गाना सुनते हैं, पुकार मूवी का है, बहुत प्यारा, क्या जबरदस्त माधुरी दीक्षित ने इस पे परफॉर्म किया है ना, आ हा हा हा। चलिए एंजॉय करते हैं इस गाने को।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आठ बजकर 43 मिनट और पूरे 35 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती अमरीन के साथ और देखें ना कैसे कैसे वक्त ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी निकल गया है। लेकिन ये वाला जो गाना है ना आहा बेबो मैं बेबो मजा आ जाएगा सुन के। थिरकने का भी मन कर रहा है तो थिरक लीजिए। कहीं मत जाए, बने रहें हमारे साथ यानी आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

चलिए भाई, अब मेरे घर जाने का वक्त हो गया. मैं हमेशा कहती हूँ ना, जब तक जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे. तो फिलहाल हमेशा की तरह यही कहूंगी कि अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का और अपने आसपास का खास ख्याल रखें, और अपना तो खास तौर से. फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर। आइए यादों का दरीचा खोलते हैं और ठंडी हवाओं का एहसास करते हैं। तलाश करते हैं अपनी यादों के उन रंगों को जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर जिंदा है, हर एक उस रंग के साथ जिसे हम आज भी महसूस करते हैं।

और ये जो गुजरे हुए दिन होते हैं ना, ये होते हैं कमाल के रंगरेज। इनका रंग हम हमेशा महसूस करते हैं। प्रोग्राम आपकी याद आती रही आप सुन रहे हैं, और इसमें हम कुछ ऐसे ही पलों को याद करने की कोशिश करते हैं। मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल ना पाएंगे। जब गर्मी के दिन आएंगे, तपती दोपहरें लाएंगे, सन्नाटे शोर मचाएंगे, गलियों में धूल उड़ाएंगे। ये महज एक शायर की मौसम के हवाले से कल्पना मात्र ही नहीं है, बल्कि इस गर्मी के मौसम में छुपा हुआ वो आनंद है जिसकी अनुभूति मात्र से ही हम अतीत की मधुर यादों में कहीं गहराई में खो जाते हैं।

वाकई ये दिल तलाश तो करता है उन दिनों को। अब देखिए ना, दिन भर की तपिश के बाद जब शाम आती है तो मुझे कई बार याद आते हैं वो दिन, जब घर के आंगन में लगे मोगरे के फूल सितारों की तरह खिल जाया करते, रात की रानी की खुशबू हर सू बिखर जाया करती और चमेली की मदहोश कर देने वाली सुगंध यूं लगता कि जैसे रस घोल रही है। वाह, क्या दिन थे वो जब हम सभी भाई बहन एकजुट होकर शाम ढलते ही घर के आंगन में या फिर छत पर छिड़काव किया करते, रात को देर तक बतियाया करते और जानते हैं दूर कहीं कोई रेडियो सुन रहा होता था। और वाकई आपने देखा होगा कि अक्सर लोग पहले छतों पर रेडियो सुना करते थे और उनमें से शायद कोई ये गीत ये भी था जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं।

जून की छुट्टियां रहता था जिनका इंतजार हम सबको बहुत ही बेसब्री के साथ। इस पर न जाने क्यों कई बार वो दो पंक्तियां याद आ जाती हैं कि रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पर कहते थे जीते रहिए। अब तो सचमुच बुजुर्गों की सोहबत बहुत दुर्लभ हो गई है। बहरहाल इस पर फिर कभी बात करेंगे, फिलहाल तो हम अतीत के सफर पर बात करने की आपके साथ कोशिश कर रहे हैं और ये जो गर्मी का मौसम है ये बहुत कुछ याद दिला देता है। गर्मी का मौसम वाकई क्या कहना इसका, बहुत कुछ इस दिल में याद आ जाता है। चलिए जनाब बातें तो बहुत सारी हैं मेरे पास।

आस आपके साथ करने के लिए, लेकिन एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं। यकीन मानिए, हर मौसम अपने आप में खूबसूरत होता है। हर मौसम की एक बहुत ही खूबसूरत याद जुड़ी होती है हमारे साथ।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही। आज यादों की खिड़की खुली है, गर्मी के मौसम को हम याद कर रहे हैं। जरा विचार करके देखिए, शायद मैं गलत नहीं हूं, और वो ये कि मुझे लगता है कि हम संभवतः उस अंतिम पीढ़ी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाया करते थे, मामा के घर जाते और खूब धमा चौकड़ी मचाते। आज जब हम देखते हैं अपने चारों तरफ तो लगता है कि समर वेकेशन का मतलब है पहाड़ों की सैर या दूसरे प्रदेशों की ओर या फिर विदेश यात्रा। तो इसीलिए हम अक्सर याद करते हैं उन दिनों को जो वाकई हमारे अपने हुआ करते थे।

बंद करके झरोकों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए। वाकई जब भी हम यादों के दरीचे खोलते हैं, जब भी हम इन आंखों को बंद करके कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए कुछ याद नहीं आता, बल्कि एक जिंदगी हमारे साथ होती है। ऐसे बेशुमार लोग हमारे साथ होते हैं जिन्हें कभी हम बहुत करीब से महसूस करते थे, है ना। चलिए बातें और हैं आपके साथ करने के लिए। फिलहाल हम देख लेते हैं कि आप सब कौन कौन हमारे साथ हैं। तेरी यादों का दिया दिल में जलाए रखते हैं, भीड़ में रह के भी तन्हा से मुस्कुराए रखते हैं। वक्त बदल जाए मगर याद नहीं जाती कभी, कुछ रिश्ते रूह में बसकर उम्र भर साथ रहते हैं। सरफराज आलम साहब लिखते हैं जो कि हर दर्शना बाजार अररिया बिहार से। बहुत खूब, यादों को याद करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका आपने निकाल रखा है, बहुत ही शानदार। और इसके अलावा सौरभ अनेजा हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। और आपकी याद आती रही मैं, आपको प्यार भरा नमस्कार। आदाब, गुनौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, और लिखते हैं कि जहां प्यार नहीं होता वहां दर्द ही दर्द होता है। काफी हद तक आपने सही कहा है, लेकिन इस दर्द में जो एक हल्की सी चुभन होती है, यकीन मानिए वही इस मोहब्बत को, इस प्यार को आगे बढ़ाने के लिए काफी होती है।

जावेद आलम साहब मोहम्मद जयान जयपुर से लिखते हैं, मैंने सुना है गाने आपने बहुत ही सुकून मिलता है। बिल्कुल आपने सही सुना है, जब भी हम इस तरह के गीत सुनते हैं तो अच्छा लगता है। ख़ास तौर पर आपने लिखा है कि छत पर, बिल्कुल, क्योंकि जो छत हुआ करती है, टेरेस होता है, वो यकीनन एक सुकून की जगह होती है, और ऐसे में जब संगीत आपके साथ होता है तो यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चलिए, और पंकज हैं अमरावती महाराष्ट्र से, लिखते हैं गुड इवनिंग मैम, और मैंने आपका पिछला कार्यक्रम 29 अप्रैल 2026 को सुना था, आपकी याद आती रही, बहुत बढ़िया कार्यक्रम, प्रस्तुति और गीत भी बहुत पसंद आ रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, आप इतना रिकॉर्ड रखते हैं तो यकीन से मतलब आपको मैं आपको कहना चाहूँगी यकीन से कि हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इन मोहब्बतों को हमेशा हम अपने दिल में रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हम भी आपका शो सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, हम सभी ग्रामवासियों की ओर से आप नमस्ते स्वीकार कीजिएगा। बिल्कुल, आप सबकी नमस्ते हम तक पहुँच गई है। आगे लिखते हैं कि बूंदों की सरगम गिरी, मन दीवाना हो गया, पेड़ पंछी गा उठे, दिलकश तराना हो गया, धूप गर्मी और तपिश से बेपनाह राहत मिली, आप आए शो में तो मौसम सुहाना हो गया। ये लिखते हैं प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर बिजनौर से। भाई वाह, क्या लिखा है आपने मौसम को देखते हुए, और क्योंकि हम भी बात मौसम की ही कर रहे हैं, गुजरे हुए मौसम को हम याद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आगे लिखते हैं कि नाजुक से दिल पे चोट के जितने निशान थे, उससे भी सख्त सब्र के इम्तिहान थे, और वक्त ने उन मरहलों से मुझे गुजारा है उम्र भर, जहां हर सू किसी की यादों के आसमान थे। बहुत खूब प्रेमचंद जी, बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ और कौन है जल्दी से देख लेते हैं, और भी बहुत सारे हमारे लिसनर्स हमारे साथ हैं। ये गुड इवनिंग, ये हमारे साथ कौन है, वेलकम टू द शो, आपकी याद आती रही कार्यक्रम में, गीत और संगीत बेहद पसंद आ रहा है, नाइस प्रेजेंटेशन, किशन वंजानी नीलम स्वाति और किशोर रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए, प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। हम भी कोशिश करते हैं कि आपको कुछ अच्छा सुना सकें, कुछ सुकून भरा वक्त आप तक पहुँचा सकें। कुछ लोग आँखें बंद या खोल कैसी भी देखें, सब दूर ही होता है, एक बार दोस्त दिल से महसूस करने की बात है। और ये हमें मैसेज किया है किसने, मेघा सिंह ने। ठीक है मेघा, आपकी बात से भी हम काफ़ी हद तक इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन जो लोग आपके करीब होते हैं, चाहे आप आंखें बंद कीजिए चाहे खोलिए, वो आपके पास ही होते हैं। यहाँ सिर्फ बात महसूस करने की है कि आखिर हम उन्हें क्या दे पा रहे हैं, हमारी जानिब से क्या कुछ हो पा रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी तरफ से ही कोई कोताही हो रही हो। इसलिए हमें अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए कि और कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जानिब से किसी को भी कोई एहसास ना हो। सिर्फ और सिर्फ अगर आप किसी को दे सकते हैं तो प्रेम दीजिए, मोहब्बत दीजिए।

लेकिन जनाब कहीं भी जाइए, नानी सा वो प्यार कहाँ मिलेगा, मामा का वो दुलार कहाँ मिलेगा। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आपकी याद आती रही। आज न जाने क्यों मुझे याद आ रही है उस मौसम की जिसे हम जिया करते थे, और उसी में हम गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाते और नानी के घर में यादों के वो घरौंदे बनाते जो आज भी हमारे दिलो दिमाग में मधुर याद बनकर सांसें लेते हैं। नानी का वो प्यार, और ख़ास तौर से जब यूं होता कि लाइट चली जाती और जो बच्चे शहर से जाते जैसे हम सब, तो लगता था कि जैसे नानी न जाने क्या कुछ कर ले। और कोशिश करते हैं कि सारी जो जितने भी सहूलियात हैं वो हमें मिल जाएं, लेकिन फिर भी उनका वो जो घर था, वो जो एक ख़ास किस्म का एक बड़ा सा जो एक सहन हुआ करता था, उसमें जो फुलवारी हुआ करती थी, यकीन मानिए वो आज भी इस दिल में कहीं ना कहीं जिंदा है। और इन यादों को हम हमेशा अपने पास समेटने की कोशिश करते हैं, और यकीनन आपको भी अपनी नानी का घर याद तो आया होगा।

थोड़ा सा प्यार हुआ है और थोड़ा है बाकी, इसी तरह से थोड़ा ही प्रोग्राम बचा है और आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग आरजे, ये हमारे साथ कौन है? डॉक्टर खान और उनकी फैमिली निज़ामाबाद तेलंगाना से लिखते हैं कि मैनी पीपल्स आर टेक्स्टिंग ब्यूटिफुल लाइन्स, सो सूथिंग एंड योर, आगे लिखते हैं कि ओके थैंक यू सो मच, कोशिश करते हैं कि हम कुछ अच्छा और खूबसूरत आप तक पहुंचा सकें। और वाकई इसमें कोई शक की बात नहीं कि बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं। और गुड्डू धाकड़ है मध्य प्रदेश उज्जैन ज़िले के बेड़ावन गांव से, लिखते हैं कि गाने बहुत ही बढ़िया बज रहे हैं, मुझे तो मेरी नानी के घर की बैलगाड़ी वाले दिन याद आ गए हैं। बिल्कुल, अगर उस वक्त यकीनन अगर बैलगाड़ी चलती होगी तो आपको याद होगा। और मैं तो कहती हूँ कि जिन जिन को याद है वो कहीं कहीं एक कोई छोटी सी डायरी ऐसी बनाएं जिसमें कुछ लिख सके, और जो यादों का दरीचा है उसे आप भी कभी खोल के देखिएगा, बहुत सारे लोग याद आ जाएंगे। और कंचन हैं सोनिया विहार दिल्ली से, लिखते हैं गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी।

पर याद आता है आंगन, वो मिट्टी, वो प्यारा सफर याद आता है। ना मोबाइल था, ना दुनिया भर की कोई उलझन, बस हंसी आम और बचपन की असर याद आता है। बिल्कुल, ये हमें लिखकर भेजा है सरफराज आलम साहब ने, जो कि हार दर्शन बिहार से। बिल्कुल आपने सही अक्कासी की है अपने बचपन की, और वाकई ये बचपन बहुत ही खूबसूरत था। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर से हमारे साथ हैं, लिखते हैं कि सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं, अति उत्तम प्रस्तुति, थैंक यू सो मच, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है आपको और हमें क्या चाहिए, और इतनी बड़ी जो आपने हमें बधाई भेजी है, हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे टूटे फूटे शब्दों को अपनी मधुर आवाज़ और अंदाज में प्रस्तुत करने के लिए। प्रेमचंद प्रेमी जी लिखते हैं, प्रेमचंद जी आप यकीन मानिए बहुत अच्छा लिखते हैं और सभी लोग पसंद भी करते हैं, और इसीलिए हमें लगता है कि अच्छे जो हमारे जितने भी, वैसे तो हमारे सारे ही लिसनर्स अच्छे हैं, लेकिन जिनकी कलम भी अच्छी है उनके जो कलाम है वो हम अपने जो लिसनर्स हैं तक पहुंचाएं। और आने में काफ़ी देर हो गई, हमारे यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत है और इस मौसम में रेडियो का और प्रोग्राम आपकी याद आती रही का साथ हो तो फिर क्या कहने। गीत मुझे तुझे देखा तो बहुत पसंद आया, कस्बा गुनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहान और फरहान फारिया और ताहिरा लिखते हैं। वहाँ नानी के घर की बेशुमार यादें भी आपने ताज़ा कर दी हैं, वो दिन भी क्या दिन थे। फारूक अली खान साहब लिखते हैं, फिर कभी ज़रूर डिस्कस करेंगे आज ही की जो ढेर सारी बातें हैं। और इसके अलावा हमारे साथ गौतम हैं अररिया बिहार से, लिखते हैं तुम मेरे ख्वाबों में आती हो, तुम ही तो मेरी रातों की नींद चुराती हो, तुम ही हो जिसे मैं सपनों में देखता हूँ, तुम ही तो हो आकर मुझे सुबह को जगाती हो, तुम हो मेरी सुबह, तुम ही मेरी शाम, आपको सोचने के सिवा कोई नहीं कोई काम। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत आपने लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे साथ जावेद आलम, मोहम्मद जयान हैं, बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है। और आई एम रितु बत्रा फ्रॉम दिल्ली, और गोपाल पार्क, एवरी सॉन्ग इन ब्यूटीफुल, और थैंक्स फॉर लवली सॉन्ग, थैंक्स अ लॉट, आपको पसंद आया। और इकबाल राय गुलाटी हैं पीपली कुरुक्षेत्र से, आपकी याद आती रही प्रोग्राम, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे नानी के घर का मैंगो बहुत याद आता है, श्वेता ने हमें लिखकर भेजा है। बिल्कुल याद आता है नानी का घर, और वो उनका जो पीछे का हिस्सा हुआ करता था नानी के घर का, और उस हिस्से में नीम का वो पेड़ जिसके साए तले हमने कितने ही खेल खेले होंगे, जामुन के पेड़ से गिरते वो जामुन जिनका स्वाद आज भी याद है, या फिर दूसरे कोने पर खड़ा वो आम का पेड़ जिसकी कैरी तोड़ने के लिए हम बेताब रहा करते थे, और नानी क्या कहा करती थी, अभी मत तोड़ना, और हम कोशिश करते कि बस सारी कैरियां तोड़ लें। वाकई क्या वो खूबसूरत दिन थे, न जाने वो दिन कहाँ चले गए। और विनोद कुकरेजा हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से, लिखते हैं आज तो बहुत मधुर गीतों का आनंद आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद, चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। कोशिश हमारी विनोद जी यही रहती है कि हम कुछ अच्छा कह सकें, कुछ अच्छा सुना सकें, कुछ, क्योंकि प्रोग्राम है हमारा आपकी याद आती रही, और हम अक्सर इस प्रोग्राम में उन दिनों को याद करते हैं जो यकीनन हमारे लिए, हम सब के लिए, हम सब की ज़िंदगी का जो सरमाया है। वाकई वो गुजरे दिन जो कभी लौट के तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि हम उन्हें याद कर सकते हैं, इतना ज़रूर है कि हम उन्हें अक्सर सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और अगर आपको भी कभी ये लगता है कि आप उन्हें याद नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं उसे थोड़ा सा लिख लीजिए। फिलहाल मेरे जाने का वक्त बेहद नज़दीक आ गया है, लेकिन वादा रहा प्रोग्राम रंगे महफिल में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ खूबसूरत गज़लों और बेहतरीन शाहकारों के साथ। तब तक अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा, और हाँ मोहब्बतों की जो चिराग हैं उन्हें ऐसे ही आप रोशन रखिएगा, और यादों के सफ़र पर अक्सर आप ज़रूर जाया कीजिए, ख़ास तौर से जब आप टेरिस पर जाएं, या फिर कभी आप तन्हा हों तो याद कीजिएगा अपने बचपन को। यकीनन वो आप भी वही आखिरी पीढ़ी हैं जो यकीनन इन यादों के साथ आगे बढ़ रही हैं। चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, बाय बाय, टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अड़िग रुख का ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था। इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।

बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यमग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार का नंबर प्लेट इस्तेमाल किया था। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगम वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिनभर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया कि आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में AICC अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सिकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में JDU अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपकी वाणी आकाशवाणी। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू ऑल दैट जैज ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज। आई एम आरएस रघु, योर फ्रेंड एंड होस्ट फॉर द नाइट। जैज इज ऑफन कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। Musicians listening, responding and creating something new in the moment. So for the next hour, let us step into that world and we begin with the first song, literal first song by Abe Lincoln. So here it comes.

0: That was Abby Lincoln with the track First Song. It's time now for a short break, but don't go anywhere because we'll be right back.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए।

0: पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
1: विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल नॉर्वे के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री जॉर्ज ने भारत और नॉर्वे के बीच मजबूत और बहुआयामी साझेदारी पर बल दिया। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आर एन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वैत्री कड़गम टीवी के पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिनभर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने वर्ष 2026 में पराली जलाने की घटनाओं को खत्म करने की तैयारी की समीक्षा बैठक की। इसमें पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आकाशवाणी के 90 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी में आकाशवाणी एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन के गेट नंबर 3 से होगी। ये दौड़ कृषि भवन, रेल भवन और भारतीय रिजर्व बैंक बिल्डिंग से होते हुए आकाशवाणी के रंग भवन पर संपन्न होगी। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजन भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओ, इस वक्त बज रहे हैं रात्रि के 3:05 और हमारे मिडनाइट मेलोडीज कार्यक्रम का वक्त हुआ है। और इस कार्यक्रम में मैं दीक्षा आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओ, अब तो आधी रात बीत गई और अब हम मध्य रात्रि में हैं, तो चलिए कुछ आपको मेलोडियस गाने सुनाती हूँ जो आपको आपकी रात को और हसीन बनाए। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम की फिल्म अक्सर से, केके और सुनिधि चौहान की युगल सुरों में।

तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी।

0: テリボーリークククククククククククククク、
1: はいはい、
0: テリテリチナザルメヘジャドゥ。
1: あれベスレガネキョスナレヨムジェ。
0: あれ तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: सुन रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री

सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में

शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वैत्री कड़गम यानी टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी में आकाशवाणी एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन के गेट नंबर 3 से होगी। यह दौड़ कृषि भवन, रेल भवन और भारतीय रिजर्व बैंक RBI बिल्डिंग से होते हुए आकाशवाणी के रंग भवन पर संपन्न होगी। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजन भाग लेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशक जोखिम कम करने वाले प्लेटफॉर्म IRRA का उपयोग तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। सेबी ने कल जारी बयान में बताया कि शेयर बाजारों की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया क्योंकि प्लेटफॉर्म की संरचनात्मक रूप से आवश्यकता नहीं रह गई थी। ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इंग्लैंड में 136 परिषदों की करीब 5000 सीटों और 6 मेयर पदों के लिए वोट डाले गए। ये 2024 के आम चुनाव के बाद से सबसे बड़ा चुनावी आयोजन है। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बारिश से बाधित मुकाबले में 213 रनों के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। आज नई दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह के 4:11 वक्त हो चला है प्रोग्राम सारे गा माल गा आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए भी, डाउनलोड कीजिए अगर नहीं किया तो, और सर्च कीजिए आकाशवाणी रेनबो दिल्ली। मैं यानी रजत आपका कर रहा हूँ स्वागत प्रोग्राम सारे गामा, हमारा नियमित प्रोग्राम ठीक 4:05 पर होता है हाजिर, और रंग बिरंगे गानों से सजी होती है महफिल। आज भी वही सब होगा, वही सब आपके दस्तरखान पर सजाया है हमने सुबह के इस मधुर बेला में, जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं भी हैं, पवन के झोंके हैं, कुछ कुछ बदली भी है कहीं कहीं, लेकिन आसमान तकरीबन तकरीबन मिला जुला। इस दौरान आइए करते हैं नए दिन का भव्य स्वागत सूरज की पहली किरणों से भी पहले। मेरे यानी रजत के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिमी सिबी जॉर्ज ने कल नॉर्वे के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री जॉर्ज ने भारत और नॉर्वे के बीच सशक्त तथा बहुआयामी साझेदारी पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता की

नीति को दोहराया और आतंकवाद के खिलाफ नॉर्वे के सहयोग की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में स्थानीय तथा क्षेत्रीय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इंग्लैंड में 136 परिषदों की करीब 5000 सीटों और 6 मेयर पदों के लिए वोट डाले गए। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया है। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगा हर्ट्ज पर, और इस वक्त प्रातः के 5:05 हुए हैं और अब वक्त है हमारे कार्यक्रम आराधना का। श्रोताओ, इस कार्यक्रम में हम ईश्वर को याद करते हैं और सुनते हैं चंद भक्ति गीत। तो आइए शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का दिन शुभ हो।